0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे वरुण कुमार पाल का गिटार पर बजाया गया राग नट भैरव। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोस्का दावुका के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की, असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी और उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री की यात्रा से सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और पनामा आपसी साझेदारी प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि केवल 1 महीने में देश ने कई उपलब्धियां प्राप्त की हैं।
2: मॉनसून हो या मॉनसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले 1 महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। पुलिस ने कहा कि

झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में कल प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधि मंडल के साथ विस्तार से चर्चा हुई। श्री नड्डा ने सभी प्रदर्शनकारियों से धरना समाप्त करने और स्थिति सामान्य बनाने में प्रशासन का सहयोग करने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित हेराफेरी की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने की संभावना के बारे में जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को इस मुद्दे का राजनीतिकरण न करने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में मौसम विभाग द्वारा जारी रेड अलर्ट के मद्देनजर आज सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिलों में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के अनुसार मंडी जिले की 11 और चंबा जिले की 10 सड़कों सहित कुल 36 सड़कें बंद हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, कर्नाटक, तेलंगाना, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ तूफान आने की आशंका व्यक्त की है। इस बीच दिल्ली में हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। महिला सिंगल्स में सिंधु के साथ देविका सिहाग और उन्नति हुडा शामिल हैं। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और HS प्रणॉय टीम का हिस्सा हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री राम भक्त हनुमान जी की भक्ति में डूबा हुआ, आइए सुनते हैं एक और भजन हरिओम शरण की आवाज में।

बात 30 जनवरी 1948 की है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के देहावसान के बाद पूरे देश में शोक की लहर छा गई थी। पंडित रविशंकर उस समय मात्र 28 वर्ष के थे। इस दुखद घड़ी में उन्हें आकाशवाणी पर बिना तबले के कुछ शोकाकुल संगीत प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। पंडित रविशंकर को शुरू से ही प्रत्येक कार्य में कुछ नया करने की ललक रहती थी। ये प्रस्तुति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्मृति में थी, इसलिए ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके भीतर का कलाकार छटपटा रहा था। ऐसा क्या करें कि गांधी जी को संगीत में सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सके। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वे एक उदीयमान सितारे के रूप में जाने जाने लगे थे। उन्होंने इस चुनौती को दुखी मन से सहर्ष स्वीकार किया। आज की ही तरह उन दिनों आकाशवाणी पर कार्यक्रम प्रस्तुत करना किसी भी कलाकार के लिए सपना साकार होने जैसा होता था। कहा जाता है कि दबाव में ही प्रतिभा निखरती है। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। वे लगातार अपने आप से जूझते रहे, कई तरह से प्रयास किए, परंतु खुद ही संतुष्ट ना हुए। पंडित रविशंकर की यह खासियत थी कि जब तक वे खुद संतुष्ट न हो जाएं, प्रस्तुति नहीं दिया करते थे। इसी उहापोह में समय निकलता जा रहा था। अचानक उन्हें एक अनोखा विचार सूझा। उन्होंने गांधी शब्द के 3 अक्षरों के आधार पर सरगम के 7 सुरों में से 3रा स्वर गा, 7वां स्वर नी और 6ठा सुर धा लिया और तीनों को मिलाकर एक नए राग की रचना कर डाली। इस राग को उन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जोड़ते हुए मोहन कौंस नाम दिया। ये प्रसिद्ध राग मालकौस के समान था। अवसर हालांकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन का था, परंतु दुख की इस घड़ी में उन्हें अपने संगीत से बहुत खुशी मिल रही थी। पंडित रविशंकर ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में इस नए राग का स्थायी रूप में इस्तेमाल किया। कुशल राजनीतिज्ञ और कानूनविद धनी श्याम शंकर के 7 पुत्रों में

सबसे छोटे रविशंकर का जन्म 7 अप्रैल 1920 को बनारस में हुआ था। उनका बचपन का नाम रविंद्र शंकर चौधरी था। अपने बड़े भाई उदय शंकर के नृत्य दल के साथ वे 10 वर्ष की आयु में पेरिस गए। 13 वर्ष की आयु तक आते आते उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र और नृत्य का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था और फ्रेंच तथा पाश्चात्य संगीत की ओर भी उनकी रुचि जागृत हो गई थी। 1999 में भारत रत्न से अलंकृत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सितार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले पंडित रविशंकर ने अपने जीवन काल में भारतीय संगीत को तिलक श्याम, नट भैरव, बैरागी जैसे नए राग प्रदान किए। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता।

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित रविशंकर के जीवन से जुड़े प्रसंग को चिंतन में, और आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस में बाल कांड का भाग 33। लेकिन उसके पहले ये संदेश।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
0: लीजिए अब पेश है आपके लिए रामचरितमानस में बालकांड भाग 123।

राजा जनक के महल में बेटियों की विदा का करुण हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है। लगता है जैसे करुणा और विरह ने वहां डेरा डाल दिया है। सीता ने जिन पक्षियों को सोने के पिंजरों में पाल पोस कर सिखाया पढ़ाया था, वे मानो पूछ रहे हैं कि वैदेही कहां हैं। और यदि पशु पक्षी इस प्रकार विकल हैं, तो मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। राजा जनक परम वैराग्यवान पुरुष थे, किंतु इस अवसर पर सीता को देख उनका धैर्य भी साथ छोड़ गया। जानकी को हृदय से लगाकर वो फूट पड़े। भावना ने ज्ञान और वैराग्य के बांध तोड़ दिए। मंत्रीगण उन्हें धीरज बंधा रहे हैं। मुहूर्त देखकर सुंदर सजीव ही पालकियों में कन्याओं को बिठाया गया। पिता ने उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति की सीख दी। ब्राह्मणों की चरण धूलि माथे पर लेकर राजा दशरथ ने उनका आशीर्वाद प्राप्त किया और दल बल समेत अयोध्या के लिए चल पड़े। विदा के क्षणों में अधिक से अधिक समय तक उनके साथ रहने को आतुर राजा जनक उनके साथ हो लिए। विचित्र दृश्य है। देवता हर्षित हो पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अप्सराएं मंगल गीत गा रही हैं। कुशलपति दशरथ बार बार जनक जी से लौट जाने का आग्रह करते हैं, किंतु प्रेमवश वो लौटना नहीं चाहते।

0: भारतेन निन्दा कृता। विदेशमन्त्रालयः एकस्मिन् वक्तव्ये अवदत् यत् चत्वारः भारतीयाः नागरिकाः दुर्दैववशात् मृत्युमुपगताः, एकः गम्भीरावस्थायां चिकित्सालये उपचाराधीनः अस्ति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् उपलब्धसूचनानुसारं घटनासमये पञ्च भारतीय नागरिकैः सह सप्तदश चालकदलस्य सदस्याः आसन्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः नवदिल्ल्यां पनामादेशस्य विदेशमन्त्रिणा हेवियर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। ह्यः जाते उपवेशने डॉ जयशंकरः लैटिन अमेरिका कैरिबियन क्षेत्रयोः प्रवेशद्वाररूपेण पनामादेशेन सह भारतस्य सम्बन्धस्य गहनतायाः महत्वम् अधोरेखितवान्। व्यापारोद्योग विकास स्वास्थ्य कृषि शिक्षा आंकिकीय सहयोगादीनां प्रगति विषये उभौ विस्तृतं विमर्शं कृतवन्तौ। बहुपाक्षिक मञ्चेषु सहभागित्वस्य विषये अपि तौ अवदताम्। प्रशासनेन संसूचितं यत् अस्य वर्षस्य जून मास पर्यन्तं देशे प्रायः 51,55,55 कोटि उपयोक्तारः यूपीआई इत्यनेन सह सम्बद्धाः जाताः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमरीका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने व्यापार, कारोबार, विकास, समुद्री मामलों, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और डिजिटल सहयोग को आगे बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। इससे पहले विदेश मंत्री ने भरोसा जताया कि पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज की सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगी। पनामा के विदेश मंत्री के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देश आपसी साझेदारी को प्रगाढ़ करने के लिए उत्सुक हैं। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है और देशवासी गर्व से भर जाएं, इस प्रकार की सिद्धियों का सिलसिला चला है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन करने वालों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया, पुलिस और दूसरी सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की और हिंसा की। पुलिस ने कहा कि झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति, संयम और सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों से कल मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक में प्रतिनिधिमंडल के साथ विस्तार से चर्चा

अभी आप सुन रहे थे संगीतिका में अर्चना आचार्य के भजन, और इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:30 और 24 सेकंड हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: तो दोस्तों, सुबह की इस नई ताज़ा और मुस्कुराती हुई बेला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दुर्गेश सारस्वत और मेरे साथ हैं
1: मनीषा। तो आप सभी को हमारा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। और देखिए, सुबह की तरोताजगी की बात अभी मेरी साथी ने की, कोयल ने की, और स्फूर्ति से भरपूर आज का दिन जहां हम हाजिर हैं आपके लिए कुछ ऐसी बातों के साथ, कुछ ऐसे गीतों के साथ जिससे होगी आपके दिन की खूबसूरत शुरुआत।
0: दोस्तों, उम्मीद है कि आज की सुबह के आपके लिए नई उम्मीदें, नई ऊर्जा और ढेर सारी खुशियां लेकर आई होगी। अगर आप अपने दिन की शुरुआत चाय की पहली चुस्की के साथ कर रहे हैं, सफर पर निकल चुके हैं, घर के कामों में व्यस्त हैं, तो फिर जल्दी से अपना रेडियो ऑन कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: 21 जुलाई 2026 मंगलवार का दिन और ये खूबसूरत सुबह आपके नाम आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। तो साथियों, ओस की बूंदे फूलों को भिगो रही हैं, आज ठंडी हवाएं ताजगी के साथ जगा रही हैं आपको, तो शामिल हो जाइए इस खुशनुमा मौसम में, एक प्यारी सी सुबह जगा रही है आपको।
1: दोस्तों, अगर आप अपनी योजना बना रहे हैं आगे के कामों के लिए, तो अगले कुछ पल हमारे साथ बिताइए। हम लेकर आए हैं ऐसे सुरीले गीत जो सुबह की ताजगी को और भी खूबसूरत बना देंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए इस प्यारे से गीत के साथ।

0: और चलिए अब बात करते हैं उन तीन छोटी आदतों की जो आपकी सुबह को बनाती है बेहतर, क्योंकि उठते ही साथ आपको एक ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। और कोयल, कम से कम खुली धूप जो होती है उसमें, जो हल्की गुनगुनी धूप है, खुली
1: जी
0: हवा है,
1: जी
0: उसमें सुबह सुबह सैर करना शरीर के लिए बहुत अच्छा
1: जी
0: होता
1: जी
0: है।
1: बहुत अच्छी बात
0: और
1: है।
0: व्यायाम करने की बात है, उसको तो हम सभी जानते हैं कि ये हम सभी के शरीर के लिए, हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है ना?
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ऐसा लगता है कि आशा भरी नई सुबह के लिए ये एक अलार्म होता है जो हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र को, हमारे शरीर को जगा देता है। तो इन बातों के साथ आप अपनी सुबह की करें शुरुआत, हम यही आपसे कहते हैं।
1: और इसके साथ साथ अपना रेडियो भी ऑन रखें, क्योंकि हमारे गीत आपके दिल और दिमाग में जो जोश लेके आते हैं उसकी तो बात ही क्या है।

0: और दुर्गेश देखो, ये जो हमारी गीतों भरी गुड मॉर्निंग है, इसमें इस बात का जिक्र करना तो बहुत जरूरी होता है क्योंकि आज रिमझिम फुहारों का दिन है। आज की सुबह इतनी ताजी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। जब मैं ऑफिस पहुंच रही थी उस दौरान काले काले बादलों का इस तरह बरसना और
1: और वो
0: हमारी
1: धीरे
0: सुबह
1: धीरे
0: को,
1: छोटी छोटी बूंदों
0: हाँ
1: का जो गिरना है, जो मौसम में ठंडक जैसे आ गई है गर्मी
0: बिल्कुल।
1: की
0: देखो ना,
1: वो।
0: हम कितना इंतजार कर रहे थे, स्पेशली जो हम दिल्ली वाले हैं वो तो उमस से बहुत परेशान थे, और
1: बहुत
0: बारिश की
1: गर्मी भी हो
0: नन्ही
1: गई थी।
0: बूंदों का जो स्वागत आज हमारी सुबह में हुआ है, उसने हमारी सुबह को बड़ा खूबसूरत बना दिया है।
1: तो क्यों ना आज हम अपने गीत में भी इसी बारिश का इंतजार जो हमारा खत्म हुआ है उसको सेलिब्रेट कर लेते हैं,
0: सेलिब्रेट करते हैं और उनको
1: और
0: और निमंत्रण देते हैं,
1: हाँ
0: कैसा
1: कि
0: रहेगा?
1: मतलब थोड़ा सा और बरसाओ भगवान।

0: दोस्तों उम्मीद है कि ये गीत आपको भी बहुत पसंद आया होगा। अगर सुबह की शुरुआत ऐसे मीठे से गीतों से हो जाए तो अपने आप मन खिल उठता है ना दी।
1: बिल्कुल, और मैं तो यही कहना चाहूंगी अपने साथियों से कि देखिए सूरज की किरणें कहती हैं उठो अंधेरों से अब न डरना कभी, जो तू ठान ले अपनी जिद पर अगर झुकेगी ये दुनिया भी तेरे आगे अभी यहीं।
0: जी हाँ दोस्तों, हर नई सुबह हमें एक नया मौका देती है और कल की अधूरी बातें पीछे छूट जाती हैं। आज का दिन हमारे सामने खाली पन्ने की तरह होता है और उस पे क्या लिखना है ये फैसला हमारा होता है।

0: और साथियों, सुबह सिर्फ सूरज निकलने का नाम नहीं है, बल्कि सुबह उम्मीद का नाम है, सुबह विश्वास का नाम है, और एक अच्छे अवसर देने का नाम भी सुबह है। तो हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर हो सकता है ना दुर्गेश?
1: जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कहा दिया आपने। सुबह का समय जो होता है ना दोस्तों, अपने आप से मिलने का भी समय होता है। दिन जैसे जैसे आगे बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसीलिए सुबह के जो कुछ पल होते हैं ना, अपने लिए जरूर निकालने चाहिए। खुली हवा में टहलना, पौधों को देखना और एक गहरी मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करना,
0: बिल्कुल
1: बस इतनी सी बातें भी पूरे दिन का रंग बदल देती है ना दी।
0: बिल्कुल। और एक और खास बात कि जो आपको प्यारी सुबह मिली है, उसके लिए आप शुक्रिया कहना ना भूलें।

0: आशा की इस मधुर गीत भरी इस सरगम में, इस सरगम के साथ आप गीतों भरी गुड मॉर्निंग का ये आखिरी गीत सुन रहे हैं और इस सफर में हम यहीं तक हैं आपके साथ। तो मनीषा और दुर्गेश को दीजिए अनुमति,
1: नमस्ते,
0: फिर मुलाकात होगी, तब तक
1: के लिए नमस्कार।
0: जी हाँ।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपिये में उत्तरी मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ वार्ता करेंगी। यूक्रेन के ओडेशा बंदरगाह के पास एक व्यापारिक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीयों की मौत, 1 घायल। भारत ने हमले की निंदा की। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वरिष्ठ नागरिकों, विधवा और दिव्यांगों के लिए मासिक पेंशन बढ़ाई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जवाबी कार्रवाई की चेतावनी के बाद अमरीका ने ईरान पर घातक हमले किए। और पीवी सिंधु आज से शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व करेंगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक को संबोधित करेंगे। सत्र के दौरान ये बैठक पारंपरिक रूप से मंगलवार को आयोजित की जाती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता और समन्वय को प्रदर्शित करना है। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन की शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मानसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि महज एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं, और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। साथियों, पिछले एक महीने में देश ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की है, चाहे राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और अब तो अंतरिक्ष भी हो, भारत के लिए गर्व के पल रहे हैं।
1: तीन राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिल्यानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टिजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर आफ्रिम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
3: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा

0: छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
1: श्री जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर वहां के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे, जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। निर्वाचन आयोग आज कोलकाता में डाक मतपत्र प्रणाली को अधिक समावेशी, सुरक्षित और सुलभ बनाने पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी 24 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी, साथ ही भारत और कई अन्य देशों के चुनाव प्रशासक, नीति निर्माता, शिक्षाविद और चुनाव विशेषज्ञ शामिल होंगे। चर्चा का मुख्य विषय पोस्टल बैलेट और विशेष मतदान व्यवस्थाओं को ज्यादा समावेशी, सुलभ और सुरक्षित बनाने के तरीकों पर होगा। पश्चिम बंगाल की मुख्य चुनाव अधिकारी नीलम मीणा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम में पोस्टल बैलेट, चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने, धोखा धड़ी रोकना, ऑडिट सिस्टम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर आधारित विशेष वोटिंग सिस्टम और रिमोट वोटिंग के भविष्य जैसे विषयों पर सत्र होंगे। अंतर्राष्ट्रीय सत्र के दौरान नेपाल, अल्बानिया, बोस्निया और हर्जेगोविना और अन्य देशों के चुनाव विशेषज्ञ वर्चुअली अपने अनुभव साझा करेंगे। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय है और कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय मौसम विभाग ने आज राज्य के 5 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
3: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मानसूनी वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। भूस्खलन के कारण अनेक संपर्क सड़कें अवरुद्ध हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में बिजली और पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है। प्रभावित इलाकों में बहाली का कार्य जारी है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिलों में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर जिलों में सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों को आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने तथा नदियों, नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: उधर जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी नई घटनाओं में एक महिला और उसके 2 बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। इससे

0: पिछले 3 दिनों में मरने वालों की संख्या 23 हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। सिक्किम के नामची जिले के समरडुंग में एनएचपीसी जल विद्युत परियोजना की बन रही सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव अभियान जारी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: ये घटना कल दोपहर दक्षिण सिक्किम के समरडुंग में एनएचपीसी प्रोजेक्ट पर घटी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और दूसरी एजेंसियों को तुरंत ही बचाव कार्यों में लगाया गया है, लेकिन गैस लीक होने के कारण बचाव दल शुरुआत में घटना स्थल तक नहीं पहुंच पाए थे। हालांकि सभी की कोशिशों से अब तक 8 शव बरामद किए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि भूस्खलन के कारण बन रही सुरंग को नुकसान पहुंचा है, लेकिन असली वजह अब तक नहीं पता चल पाया है। बचाव दल फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिनमें मजदूर, एनएचपीसी के अधिकारी और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के कर्मचारी शामिल है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों में व्यापक सहयोग है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी देते हुए कहा है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाल ही में जॉर्डन में 2 अमरीकी सैनिकों और इराक में 1 सैनिक के मारे जाने के बाद उनकी ये चेतावनी आई है। इस बीच अमरीकी सेना ने आज ईरान के खिलाफ नए हमलों की शुरुआत की है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमताओं को और कमज़ोर करना है, जिनका इस्तेमाल होर्मूज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हमले के लिए किया जाता है। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा कि उसने ईरानी प्रांतों पर अमरीकी हमलों के जवाब में मिसाइल और ड्रोन हमलों के 3 दौर के जरिए बहरीन और कुवैत में अमरीकी संपत्तियों और ठिकानों पर तेज प्रहार किए हैं। चाइना ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अंश करुणन भारत के खिलाड़ी हैं। वहीं ओलंपियन तनिषा क्रेस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गड्डे मिक्स्ड डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। महिला डबल्स में भारत की कोई भी खिलाड़ी नहीं है। और हॉकी में FIH यूथ 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत की पुरुष और महिला सब जूनियर टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। ओमान के मस्कत में खेले गए मुकाबले में भारतीय महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया। भारतीय पुरुष टीम ने अपने पहले मैच में बांग्लादेश को 7-3 से शिकस्त दी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
2: राजधानी दिल्ली से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। अमर उजाला ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अपने मुख्य पृष्ठ पर लिखा है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर राजनीति ना हो, SIT के पुनर्गठन की संभावना तलाशें। हिंदुस्तान ने इसी खबर पर सुर्खी दी है, चढ़ावा चोरी की जांच नई SIT करे। दिल्ली में कल हुए प्रदर्शन को भी अधिकतर अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। नवभारत टाइम्स लिखता है, संसद मार्च में झड़प, सरकार से बात, आंदोलन जारी। राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और CJP प्रतिनिधियों की मुलाकात का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, सरकार से आश्वासन के बाद दीपके ने अनशन तोड़ा, 100 प्रदर्शनकारी घायल। अमर उजाला ने संपादकीय में इसी खबर का उल्लेख किया है, संसद के बाहर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनौती का संकेत है, जिसमें संवाद का स्थान धीरे धीरे टकराव लेता जा रहा है। ये निर्विवाद है कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने का अधिकार देता है। लोकतंत्र की मजबूती भी इसी में है कि असहमति को स्थान मिले और सरकारें जन भावनाओं के प्रति संवेदनशील हों, लेकिन ये भी उतना ही आवश्यक है कि प्रदर्शन संविधान और कानून की सीमाओं के भीतर हो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है, एथेनॉल से कार ही नहीं।

आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अपनी हमनसब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसी बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगझू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगे। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए की पार्लिमानी पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक हफ्तावार मीटिंग आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में होने वाली है जिसे अब मंगल मिलन कहा जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मीटिंग से खिताब करेंगे। इस तरह की मीटिंग पार्लियामेंटी इजलास के दौरान रिवायती तौर पर हर मंगल को हुआ करती है जिसका मकसद एनडीए के मुकम्मल इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। एनडीए इत्तेहाद में शामिल पार्टियां इस मीटिंग के दौरान सबसे तवील अरसे तक अपने ओहदे पर फाइज रहने वाले मुंतखब वज़ीर आज़म बनने पर जनाब मोदी की इज्जत अफजाई के लिए मुबारकबाद से मुतालिक एक तहरीक मंजूर करेंगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया की अपनी हमनसब गोर्डाना, सिलजानो, वस्का, दाउकोवा के साथ बातचीत करेंगी। मोहतरमा मुर्मू वज़ीर आज़म क्रिस्टीजन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफरीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। वो शिमाली मकदूनिया के पार्लियामेंट और भारत शिमाली मकदूनिया कारोबारी फोरम से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया तीन मुल्कों मोलदोवा, शिमाली मकदूनिया और रोमानिया के दौरे के तहत कल रात 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली मकदूनिया पहुँचीं। ये किसी भारतीय सदर जमहूरिया का शिमाली मकदूनिया का पहला दौरा है। उनका ये दौरा मस्कूरा तीनों मुल्कों के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मशरकी यूरोप के वसी खित्ते के साथ भारत के रिश्तों को फ़रोग देने की अहमियत को उजागर करता है। दोनों मुल्कों ने ज़रात, दवासाजी, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आईटी से वाबस्ता खिदमात जैसे तरजीही शोबों में इकतसादी ताउन को मजीद वसअत देने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। शिमाली मकदूनिया जनूब मशरकी यूरोप का चारों तरफ से खुश्की से घिरा मुल्क है। यहाँ भारतीय बिरादरी की तादाद बहुत कम है और ज़्यादातर भारतीय अफराद आईटी के शोबों, यूनिवर्सिटियों में तदरीस या कसीर मुल्की कंपनियों में आला ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। भारत ने यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह से रवाना होते वक्त बहरी जहाज़ MV गोल्डन लियो पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने कहा है कि इस वाक़े में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स को नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वजारत के मुताबिक जब ये वाक़ा पेश आया तो उस वक्त इस बहरी जहाज़ में 5 भारतीय शहरियों समेत अमले के 17 अहलकार सवार थे। वजारत खारजा ने ये बात दोहराई है कि कमर्शल बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना और बेकसूर सिविलियन अफराद पर मुश्तमिल अमले के अहलकारों की जान खतरे में डालना निज बहरी जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत और तजारत में रुकावट डालना काबिल मजम्मत है और इस तरह की हरकत नहीं।

0: होनी चाहिए। वजारत ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय मिशन सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और मुतासर अफराद को हर मुमकिन इमदाद पहुँचाने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। भारत सरकार ने मरने वाले भारतीय शहरियों के कुंभों से ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में पनामा के अपने हमनसब हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने पनामा के साथ भारत के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर दिया, क्योंकि पनामा लातिनी अमरीका और कैरिबियाई खित्ते तक रसाई का एक अहम दरवाज़ा है। दोनों रहनुमाओं ने तजारत, कारोबार, तरक्की, बहरी उमूर, सेहत, ज़रात, तालीम और डिजिटल ताउन समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल किया। उन्होंने कसीर रुखी बैन अलाक़वामी फोरम्स पर बाहमी ताउन के सिलसिले में भी गुफ्तगू की। इससे कबल वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने इस एतमाद का इजहार किया कि पनामा के वज़ीर ख़ारजा का ये दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान तमाम शोबों में दोतरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। पनामा के वज़ीर ख़ारजा के साथ मीटिंग के आगाज़ में इजहार ख्याल करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये दौरा हालिया अरसे में दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले आला सतही रवाबित और तबादलों को मज़ीद तकवीत देगा, जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात नई बुलंदियों तक पहुँचेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब एंडी बर्नहैम को बरतानिया के वज़ीर आज़म का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि भारत और बरतानिया मुश्तरक जमहूरी अकदार से मुंसलिक हैं और दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी, दिफा और अवाम से अवाम के राबतों समेत मुख्तलिफ शोबों में वसी तर इश्तराक हो रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि वो भारत बरतानिया जामे कलीदी साझेदारी को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की खातिर जनाब बर्नहैम के साथ मिलकर काम करने के मुतमन्नी हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने रियासत के बुजुर्गों, बेवाओं और माजूर अफराद की माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अगले महीने से पेंशन की रकम 1000 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये माहाना कर दी गई है। कल जारी किए गए एक सरकारी हुक्मनामे में हुकूमत ने कहा कि पेंशन की इजाफा शुदा रकम फवाइद की बराह रास्त मुंतकली DBT निज़ाम के ज़रिए तमाम मुस्तफिदीन के बैंक खातों में मुंतकिल की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर BJP के IT महकमे के इंचार्ज अमित मालविया ने कहा कि मगरबी बंगाल की ये महरूम बिरादरियाँ कई बरसों से इंतज़ामी बेतवज्जुही का शिकार रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मगरबी बंगाल में BJP हुकूमत बामाना और सबको साथ लेकर चलने वाली तरक्की की जानिब तेज़ी से गामजन है और समाजी बहबूद की पेंशन में 50% के इजाफे का फैसला हुकूमत के इसी विजन का मजहर है। इंतखाबी कमीशन आज कोलकाता में एक बैन अलाक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा है, जिसका मकसद डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल को मज़ीद जामे, महफूज और आसान बनाना है। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जमहूरियत और इंतखाबी बंदोबस्त से मुतालिक बैन अलाक़वामी इदारे IIIDEM और बैन अलाक़वामी IDEA मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: इस कॉन्फ्रेंस में मगरबी बंगाल के तमाम 24 इंतखाबी ज़िलों के चुनाव अफसरान शिरकत करेंगे। इसके अलावा भारत और कई दिगर मुल्कों से इंतखाबी मुंतज़मीन, पॉलिसी साज, माहिरीन तालीम और इंतखाबी उमूर के माहिरीन भी शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने के अमल और खसूसी पोलिंग के निज़ाम को मज़ीद जामे, आसान और महफूज बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। मगरबी बंगाल की आला चुनाव ऑफिसर नीलम मीना इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। कॉन्फ्रेंस में डाक के ज़रिए वोट डालने का अमल इंतखाबी अमल की शफाफियत और दयानतदारी को बरकरार रखने, चुनाव में धोखाधड़ी की रोकथाम, ऑडिट के निज़ाम, कानूनी ढांचे, टेक्नोलॉजी पर मबनी खसूसी पोलिंग के निज़ाम और दूर दराज इलाक़ों से वोट डालने के निज़ाम के मुस्तक़बिल पर खसूसी इजलास मुनक़िद होंगे। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: सिक्किम में नामची ज़िले में समरदुंग के मुकाम पर NHPC के छठे मरहले के तीस्ता पनबिजली प्रोजेक्ट की ज़ेर तामीर सुरंग के अंदर फंसे हुए अफराद को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए तलाश और बचाव कार्रवाई जारी है। नामची ज़िले के SSP ने बताया है कि इमदादी टीमों ने अब तक 8 लाशें बाहर निकाली हैं। ऐसा शुभा है कि सुरंग के अंदर कम से कम 25 अफराद फंसे हुए हैं। ऐसा ख्याल है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से ये सुरंग ढह गई थी। मुख्तलिफ एजेंसियां बचाव और इमदादी कार्रवाई

0: लड़ाई जारी रखे हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: जनूबी सिक्किम में समरदुंग में कल NHPC प्रोजेक्ट के मकाम पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। NDRF, SDRF और दीगर एजेंसियों को फौरी तौर पर बचाव मिशन पर लगाया गया। गैस के रिसाव की वजह से शुरू में इमदादी टीमें वहां नहीं पहुंच सकी। अलबत्ता इमदादी टीमों ने तालमेल के साथ कोशिश करते हुए 8 लाशें बाहर निकाल ली हैं। इमदादी टीमें वहां फंसे हुए अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। इनमें कारकुन, NHPC के अहलकार और एक प्राइवेट इंजीनियरिंग फर्म के मुलाजमीन शामिल हैं। गंगटोक से मानस प्रतिम शर्मा के रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: हिमाचल प्रदेश के बेशतर हिस्सों में मानसून सरगर्म है और कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज़ ने आज रियासत के 5 ज़िलों में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रेड अलर्ट जारी किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की बारिश लगातार होने से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर हुई है। चट्टानों के टुकड़े गिरने के वजह से कई राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि कुछ इलाकों में बिजली और पीने के पानी की सप्लाई में रुकावट पड़ गई है। बहाली का काम जारी है। शिमला के मौसमियाती मरकज ने कांगड़ा, मंडी, चंबा, सिरमौर और कुल्लू जिले में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। एहतियाती इकदाम के तौर पर कांगड़ा, मंडी, चंबा और सिरमौर में सभी सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे आज लगातार दूसरे दिन भी बंद रहेंगे। इंतजामिया ने लोगों और सयाहों पर जोर दिया है कि वो गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम।
0: भारतीय मौसमियात महकमे ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के बाज़ हिस्सों में बहुत तेज़ बारिश होने की पेशगोई की है। इधर दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, शिमाली मशरकी भारत के कुछ हिस्सों, मशरकी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी औसत से लेकर शदीद बारिश होने का इम्कान है। नई दिल्ली इलाके में कल एक एहतजाज के पुरतशद्दुद रुख इख्तियार करने के बाद 118 से ज़्यादा पुलिस अहलकार जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में पुलिस के स्पेशल कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर के उहदों पर फायज सीनियर अफसरान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने एक बयान में कहा कि एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन बेकाबू हो गए और उन्होंने जारहाना और पुरतशद्दुद रवैया इख्तियार कर लिया। कई बार की तंबीह और कानूनी हिदायत के बावजूद उन्होंने मुंतशिर होने से इनकार किया और इलाके में आयद इम्तनाई अहकाम की खिलाफ वर्जी की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि मुजाहिरीन ने पुलिस अहलकारों पर हमला किया, पुलिस और दीगर सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया और तशद्दुद का रास्ता इख्तियार किया, जिससे अमन व अमान को संगीन खतरा लाहिक हुआ। दिल्ली पुलिस ने मजीद बताया कि जख्मी पुलिस अहलकारों का तिब्बी और कानूनी जांच जारी है। अमरीकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ फिर हमले किए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर अमरीका की मरकजी कमान ने कहा है कि ये हमले ईरान की फौजी सलाहियत को मजीद कमज़ोर करने के मकसद से किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल वो आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले करने के लिए करता है। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए ईरान को ज़बरदस्त इंतकामी कार्रवाई की वार्निंग दी है कि ईरान को कई गुना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तीन अमरीकी फौजियों की हालिया हलाकत के तनाजुर में सदर ट्रंप ने यह तंबीह की है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय दस्ते की क्यादत करेंगी। ख्वातीन के सिंगल्स मुकाबलों के पहले राउंड में आज पीवी सिंधु का मुकाबला अपनी हमवतन खिलाड़ी उन्नति हुडा से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
2: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने कल मानसून इजलास के पहले दिन कार्रवाई शुरू होने से कबल मीडिया से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिताब को अहमियत के साथ शाये किया है, जिसमें वजीर आजम ने कहा कि बहस मुबाहसे में दलील और सच्चाई होनी चाहिए। साथ ही वजीर आजम ने पार्लियामेंट में मुल्क के मफाद के लिए काम करने की अपील की। अखबार की एक अहम सुर्खी है, नई दिल्ली में मुजाहिरीन के साथ मरकजी वजीर JP नड्डा की बातचीत से मुतालिक है। मुजाहिरीन की जानिब से सरकार को अपनी मांगों के लिए मेमोरेंडम पेश किया गया। रोजनामा इनकलाब ने ईरान के मौजूदा हालात वाकयात के तनाजुर में भारतीय शहरियों के लिए जारी नई एडवाइजरी से मुतालिक खबर को नुमाया किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर।

0: नरेंद्र मोदी आज सुबह पार्लियामेंट हाउस में एनडीए पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग से खिताब करने वाले हैं। सदरे जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज स्कोपेई में शिमाली मकदूनिया के अकिए अपनी हम्मन सब से बातचीत करेंगी। यूक्रेन में ओदेसा बंदरगाह के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत हो गई जबकि 1 शदीद तौर पर जख्मी हुआ। भारत ने बहरी जहाज पर हमले की मजम्मत की है। मगरबी बंगाल सरकार ने रियासत में बुजुर्ग शहरियों, बेवाओं और दिव्यांगजनों के लिए माहाना पेंशन में इजाफा कर दिया है। अमरीका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई का इंतबाह दिया है। और चांगजू में आज से शुरू होने वाले चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु भारतीय चैलेंज की क्यादत करेंगी। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है शर्बरी बनर्जी का गाया राग अहीर भैरव, कार्यक्रम है स्वर गंगा। आपके साथ तबले पर हैं सुकंतो वाजपेयी, सारंगी पर हैं सईद और रहमान।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में डॉक्टर शर्वरी बनर्जी का गाया राग अहीर भैरव। आपके साथ तबले पर

संगत दे रहे थे सुकांतो वाजपेयी, सारंगी पर थे सईद और रहमान। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में 9:14:57 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: नमस्कार, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इन पत्रिका कार्यक्रमों के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह नई नई विषयों पर नई नई जानकारियां नए नए विशेषज्ञों के द्वारा उन तक पहुंचाते रहते हैं। हम सब लोगों ने प्रायः अपने स्वास्थ्य समस्या के दौरान या अपने घर में या अपने समाज में ये देखा होगा कि कई बार आजकल बच्चों का जन्म पूर्व निर्धारित समय से पहले हो रहा है। कई बार उनके जो वेट होते हैं, जो वजन होना चाहिए एक नवजात शिशु का, वो एक वैज्ञानिक मापदंड के जो स्वास्थ्य मानक हैं उससे काफी कम रहते हैं। फिर ऐसे बच्चों का भविष्य कैसा हो सकता है, उनके स्वास्थ्य के लिए आगे किस किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, और इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान या एक बात कहें कि स्वास्थ्य अनुसंधान किस तरह के हैं, इन सब बातों पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्योति गुप्ता। डॉक्टर ज्योति गुप्ता एक एडवांस सेंटर फॉर फिटल मेडिसिन एंड जेनेटिक्स के निदेशक हैं और ये कई बड़े हॉस्पिटल्स में कंसल्टेंट भी रही हैं। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: अगर हम बच्चे के जन्म के समय की बात करें, क्योंकि मानव का अस्तित्व जो होता है एक मानव के विकास की एक गाथा है कि किस तरह से वो जंगलों से होता हुआ आया और एक उन्नत सभ्यता के रूप में उसने अपने आप को स्थापित किया, इस सब के दौरान बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी रही, पर्यावरण की समस्या भी रही, चुनौतियां भी रही। तो जब एक बच्चे के जन्म की हम बात करते हैं और उसके इलाज की बात करते हैं, जबकि वो गर्भ में रहता है, तो एक जो फेटल मेडिसिन जेनेटिक्स की जो बात करते हैं, ये जेनेटिक्स क्या है और इससे जुड़ी हुई मेडिसिन किस तरह का है?
2: बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और लोगों को इसकी जानकारी होनी भी चाहिए। एक्चुअली क्या होता है कि जो फीटस आप बोल रहे हो कि प्रीटर्म जो डिलीवरीज होती है या फिर प्रीटर्म डिलीवरीज नहीं होते हुए भी टर्म डिलीवरीज में भी जिन बच्चों का वजन कम होता है, जैसे किसी बच्चे का वजन एक पर्टिकुलर 8वें महीने में 2 किलो होना चाहिए तो उस बच्चे का वजन 1.5 किलो है, तो ये जो है डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसकी कहानी यहाँ पे स्टार्ट नहीं होती है। इसकी कहानी स्टार्ट होती है जब आपकी गर्भ ठहरती है और इसके पहले भी वो कहानी रहती है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन है जो इस फैक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि बच्चे का पूरी प्रेगनेंसी कैसे रहेगी और बच्चे का वजन कितना रहेगा। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, कोई भी मदर जब डिसाइड करती है कि वो प्रेगनेंसी चाहती है तो प्लान प्रेगनेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब आप प्लान प्रेगनेंसी करते हो तो बहुत सारी चीजें क्या होती है, प्रेगनेंसी से पहले जान जाते हो कि मदर में ऐसी कोई चीजें तो नहीं है जिसको हमें ऑप्टिमाइज करना है। और ये हम कैसे जानते हैं, हर मदर्स को ये हम बोलते हैं जब आपको प्लानिंग करनी है प्रेगनेंसी आप डॉक्टर से मिलिए, और डॉक्टर से मिलके सर्टेन बेसिक टेस्ट होते हैं जो कि हम जो भी लेडी चाहती है तो उनका हम टेस्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। उस टेस्ट में बेसिक हम देखते हैं कि मदर का हीमोग्लोबिन कितना है, मदर के लीवर फंक्शन टेस्ट कितने हैं, किडनी फंक्शन कैसा है, मदर में कोई थायराइड की प्रॉब्लम तो नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन कैसा है, और मदर में कोई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है, किडनी की प्रॉब्लम तो नहीं है, मदर में कोई डायबिटीज तो नहीं है, बहुत सारी चीजों का इवैल्यूएशन करते हैं। जब वहां से हमें ग्रीन सिग्नल मिल जाता है कि नहीं इस मदर में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम बोलते हैं मदर को कि जब भी आप प्लान करते हो 1 महीने पहले आप एक दवाई होती है फॉलिक एसिड की, वो आपको स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर किसी मदर में हमें पाया जाता है कि उनमें खून बनने
1: फॉलिक एसिड क्या विटामिन बी है,
2: विटामिन बी है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होती है, तो हर मदर को दिया जाता है प्रीकंसेप्शनली। अब इसका रोल ये है कि ये बच्चे में हार्ट की प्रॉब्लम, स्पाइन की प्रॉब्लम और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब चीजों को ये प्रिवेंट करता है। जैसे स्पाइन में आपने सुना होगा कि बहुत सारे बच्चों का स्पाइन बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, इसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चों का आपने देखा होगा हार्ट में मल्टीपल मालफॉर्मेशंस होते हैं तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। या ब्रेन में आप देखते हो कि ब्रेन जो होता है पीछे की तरफ निकल गया है, किसी के ब्रेन में जो पानी होती है वो

0: भर जाता है, तो ये सारे फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी के कारण हो सकता है। तो वन ऑफ द कॉज है ये फॉलिक एसिड। कोई भी मदर हमारे पास आती है तो हम उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होती है। प्रीवियस हिस्ट्री में जैसे पहले की जो प्रेगनेंसी अगर किसी की रही है तो कैसी रही है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं थे, जिससे हमें कुछ हिंट इस प्रेगनेंसी के लिए भी मिलेगा। तो अभी हम करंट अगर प्रेगनेंसी कोई फर्स्ट टाइम प्लान कर रहा है और हमने देखा कि उस मदर में ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो सर्टेन मेडिसिन है जो कि हम स्टार्ट कर सकते हैं प्रीकंसेप्शनली, या फिर कंसेप्शन जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने गर्भ धारण कर लिया है तो हम स्टार्ट करते हैं। इकोस्प्रिन नाम की एक टैबलेट है, वो भी हम स्टार्ट करते हैं और फिर हम मॉनिटर करते हैं बच्चों को।
1: इकोस्प्रिन क्या ये जो
0: ब्लड थिनर है, इसका रीजन ये होता है कि जैसे जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे को खाना मदर से मिलता है, सारी न्यूट्रिशन मदर से मिलती है, तो मदर से जो मिलने का जरिया होता है वो होता है प्लेसेंटा, अवल जिसको हम बोलते हैं, जिसमें सारे खून की नली बनी हुई रहती है और जो कनेक्ट करता है मदर को बेबी से। तो जब ये दोनों कनेक्शन होते हैं तो जैसे आप कोई भी पाइप को लोगे तो पाइप में वाटर को फ्लो करने के लिए स्मूथ होनी चाहिए वो अंदर, वहां पे अगर रस्टिंग होगी तो आपका स्मूथ फ्लो नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से मदर्स और बेबी के बीच में भी आप मानो कि एक चैनल है और वो चैनल स्मूथ होनी चाहिए, और वो चैनल स्मूथ होती है जैसे जिनके अगर कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स है तो उनकी वो चैनल स्मूथ नहीं होती है और बच्चे को मदर से जो ब्लड फ्लो है वो ठीक से मिल नहीं पाता। तो वो चैनल को स्मूथ करने के लिए हमारे पास एक मेडिसिन है, उसको हम इकोस्प्रिन बोलते हैं। और ये इकोस्प्रिन के जो टैबलेट है 16 हफ्ते से पहले ही स्टार्ट करनी पड़ेगी।
1: अच्छा,
0: क्योंकि तब तक वो स्टैब्लिश हो चुकी होती है 16 हफ्ते के बाद। इसलिए प्रीकंसेप्शन का यहाँ पे ही रोल है कि आपने देख लिया कोई हाई रिस्क फैक्टर तो नहीं है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जहां आपको लगता है कि नहीं, इस मदर में ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, या फिर उनके ब्लड गाढ़े होने की, या पहले कोई बच्चे की हार्ट बीट स्टॉप हो गई हो उनके केस में, तो इन सबका रोल है क्योंकि ये वो नली या चैनल को स्मूथ रखती है और बच्चे को फ्लो ठीक से मिलता रहता है। तो यहाँ पे अगर हम गलती कर जाते हैं तो इस टाइप की प्रेगनेंसी में आगे जाके फिर हम ऐसी बच्चे को डील करते हैं जिनका वजन कम हो सकता है। और इकोस्प्रिन अगर हम स्टार्ट करते हैं 90% के प्रिवेंट करता है बच्चे के लो बर्थ वेट को, मदर में ब्लड प्रेशर होने की समस्या को, या फिर डायबिटीज रिलेटेड कुछ नली में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं उन सब चीजों को 90% प्रिवेंट करता है। तो ये मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सपोज दो तरीके की प्रेगनेंसी होती है, एक तो बच्चे का वजन ठीक बढ़ रहा है लेकिन मदर को 7वें महीने में लेबर पेन आ गया और बच्चे की डिलीवरी हो
1: जिसको
0: गई, प्रीमेच्योर डिलीवरी, प्रीटर्म डिलीवरी होती है जो कि नेचुरल मेथड से होती है, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको लेबर पेन्स आ गए, कोई लीकिंग हो गई जिसको आप रोक नहीं सकते, वो नेचर ने डिसाइड किया कि इस बेबी की डिलीवरी होगी। उस बच्चे का पॉजिटिव फैक्टर ये होता है कि बच्चे का वजन नॉर्मल होता है बट उनकी डिलीवरी समय से पहले हो गई है, तो उनका आउटकम बेटर होता है कंपेयर टू दी बेबीज जिनका सपोज कि 8वें महीने में 2 किलो वजन होना चाहिए लेकिन क्योंकि बच्चे को खून की कमी के कारण या फिर बच्चे को ठीक से चैनल के थ्रू ब्लड नहीं मिला हो, तो वैसे बच्चों का जो आउटकम होता है कंपेयर टू दी नॉर्मल प्रीटर्म डिलीवरी थोड़ी सी सब ऑप्टिमल होती है।
1: ऐसा कहा जाता है, कई बार अखबारों में भी आता है कि जो बच्चे प्राय 7 महीने में जन्म लेते हैं तो 8 महीना शायद कंप्लीट भी नहीं होता है और अंडरवेट होते हैं। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 250 ग्राम ऐसा होते हैं, फिर उसे एक स्पेशल केयर की जरूरत पड़ती है जो इंक्यूबेटर सिस्टम में उसको रखा जाता है। तो ऐसे बच्चों का जो अंडरवेट का तो आपने कारण बता दिया, प्रीमेच्योर का आपने बताया, इंक्यूबेटर में जो एक प्रोसीजर होता है उसको केयर का, वो क्या होता है, उसमें किस तरह से देखभाल करते हैं?
0: एक होती है प्लान डिलीवरी, तो प्लान डिलीवरी में हम क्या करते हैं कि जैसे कि किसी मदर का कोई मेडिकल इश्यू है, बच्चे का वजन कम है और जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो बच्चे का जो ब्लड फ्लो है वो बच्चे को ठीक से नहीं मिल पा रहा है और उसकी वजह से अगर हम ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करेंगे तो फिर हम प्रेगनेंसी में हम बच्चे को खो भी सकते हैं। तो हम इसमें प्लान करते हैं और बच्चे को हम स्टेरॉइड देते हैं और बच्चे को हम कुछ और मेडिसिन देते हैं जिससे बच्चे का ब्रेन मैच्योर हो जाता है, लंग मैच्योर हो जाता है, फिर हम डिलीवरी करते हैं प्लान वे में और उसके बाद हम इंक्यूबेटर में रखते हैं, तो उस बच्चे का जो आउटकम होता है वो काफी अच्छा रहता है कंपेयर टू कि आप अनप्लान डिलीवरी करते हो किसी का, किसी को आपने स्टेरॉइड नहीं दिया या ब्रेन मैच्योरिटी के लिए कोई मेडिसिन नहीं दी और अचानक से आपको इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ी फिर आप इंक्यूबेटर में रखते हो। तो इन दोनों बच्चों में फर्क ये होता है कि सपोज जिसको आपने प्लान वे में किया है तो उनकी रिक्वायरमेंट जो होती है इंक्यूबेटर में, एक तो नंबर ऑफ डेज उनके कम होते हैं, फिर हम जब डिलीवरी हो जाते फिर हम बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, बच्चे का हार्ट बीट चेक करते हैं, बच्चे का ब्रेन का एक अल्ट्रासाउंड होता है, हार्ट का इको होता है जस्ट टू सी के मतलब बेबी के ऑर्गन्स तो ठीक से फंक्शन कर रहे का नहीं कर रहे। तो अगर किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है और उनको स्टेरॉइड नहीं मिला है तो सर्फेक्टेंट नाम की एक मेडिसिन है जो कि दिया जाता है बच्चे को इंक्यूबेटर में, या फिर देखते हैं कि उनकी जो धड़कन है बहुत फास्ट चल रही है या जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत फास्ट चल रही है तो उनको कभी ऑक्सीजन का सपोर्ट देना पड़ता है, कभी उनको कंटिन्यूस प्रेशर देना पड़ता है, उसको हम सीपैप बोलते हैं। अगर बच्चा उस पे मेंटेन कर पा रहा है तो ठीक है, नहीं कर पा रहा है तो कभी कभी हमें वेंटिलेशन पे भी जाना पड़ सकता है।
1: ऑक्सीजन की कमी के कारण।
0: बच्चे

0: ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बच्चा ले नहीं पा रहा है। तो ले नहीं
1: हाँ
0: पा रहा है क्योंकि उनके लंग्स में पानी भर जाते हैं, उनके हार्ट में इतना आउटपुट नहीं रहता कि वो बच्चे को पूरी बॉडी में वो ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो कमी नहीं है लेकिन वो बच्चा ले नहीं पा रहा है। अब ले नहीं पा रहा है तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, पहले स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लंग कैसा, उनका एक्सरे होता है बच्चे का। इंक्यूबेटर में रखने के बाद, इंक्यूबेटर का मतलब ये है कि बच्चे को एक वार्म एटमोसफियर दिया जा रहा है जो कि उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए बच्चे
1: तो
0: के
1: मतलब
0: अकॉर्डिंग
1: बच्चे
0: वो।
1: को एक गर्भ में जिस तरह का
0: हाँ,
1: वातावरण
0: क्योंकि
1: चाहिए उसी तरह
0: बहुत
1: का।
0: नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते बच्चे को। इंक्यूबेटर में रखने का मतलब है कि उसको एक टेम्परेचर दिया जा रहा है
1: खास
0: जिसमें वो बच्चा कंफर्टेबल है। अब उसके बाद जो चीजें होती है, फिर हम देखते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट कितनी तेज चल रही है, बच्चा ओरल फीड ले पा रहा है क्या नहीं ले पा रहा है, और बच्चे का जो होता है रेस्पिरेटरी रेट, जो हम सांस लेते हैं, वो कितना चल रहा है। और अगर वो ठीक चल रहा है तो बच्चे को ऑक्सीजन मिल जाएगा, लेकिन वो कभी इतनी फास्ट चलती है कि आपके लंग्स तक वो पहुंच नहीं पाती है। तो ऐसे में बच्चे को सपोर्ट देना होता है। तो पहला स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, अगर लगता है कि बच्चा थोड़ा स्टेबल है तो सबसे पहले ऑक्सीजन सपोर्ट देकर देखते हैं। ऑक्सीजन सपोर्ट में अगर हम 3-4 घंटे ऑब्जर्व करते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे ने ठीक से ऑक्सीजन, जो उनका सेचुरेशन है वो ठीक से मेंटेन हो पा रहा है, तो वो 90% 100% मेंटेन हो पा रहा है तो ठीक है। नहीं हो
1: तो ये तो
0: पाता
1: हो
0: तो
1: गए,
0: फिर हम सीपैप पे चले जाते हैं।
1: ये सारी चीजें जैसे आप मॉनिटर करते हैं तो इसमें क्या मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट किस तरह के यूज करते हैं बच्चे का, जब पता लगता है, जब मान लीजिए प्रीमेच्योर है तब, जैसे कि ये प्रॉब्लम है जांच की, फिटल्स न्यूरोसोनोग्राम किया, ये उसी बच्चे के नवजात शिशु के ही
0: सर, नवजात
1: प्रॉब्लम के
0: शिशु
1: लिए।
0: का नहीं होता, ये होता है जब बेबी गर्भ में रहता है तब।
1: अच्छा, ये
0: फीटल
1: सब
0: इको और फीटल न्यूरोसोनोग्राम जो होती है वो होती है गर्भ के दौरान। तो न्यूनेटल इको होती है और न्यूनेटल ब्रेन सोनोग्राम होता है, वो डिलीवरी के बाद होती है। तो जो फीटल इको का जो रोल है वो ये देखना है कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी वजह से, अब इसमें भी 2-3 तरीके के होते हैं, कुछ माइल्ड होते हैं, कुछ थोड़े सिवियर होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं। तो माइल्ड ये होता है कि मतलब बच्चे को इमीडिएट अटेंशन की जरूरत नहीं है, बच्चे को आप डिलीवरी के बाद में थोड़े दिन के बाद आप रिपीट इको करके देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो कि बच्चे को कितनी सपोर्ट की जरूरत है। कुछ सीवियर होती है उसमें भी हमारा एक साइनोटिक होता है और एसाइनोटिक होता है। साइनोटिक का मतलब ये होता है कि बच्चा ब्लू हो जाता है डिलीवरी होते ही, तो इसका मतलब है, ब्लू होने का मतलब है कि बच्चे के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है हार्ट में की, क्योंकि अंदर जब होता है तो बच्चे की जो सर्कुलेशन होती है बिल्कुल डिफरेंट होती है और वो मदर से कनेक्टेड होती है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो बच्चे का सर्कुलेशन सिर्फ बच्चे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है, तो इसमें काफी सारे चेंजेस होते हैं। तो जब साइनोटिक वाला जो होता है, तो जब बच्चा बाहर निकलता है, मदर से सपोर्ट है नहीं, तो बच्चे अपने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन प्रोबेबली ठीक से सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो वैसे केसेस में क्या होता है, आपको इमीडिएट बच्चे को अटेंशन देना होता है, और अटेंशन देने के बाद में फिर जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं वो आके फिर पीडियाट्रिक इको करते हैं। इको करने के बाद में फिर वो देखते हैं कि इस बच्चे को अर्जेंट इंटरवेंशन की जरूरत है या नहीं है। अर्जेंट इंटरवेंशन सर्जरी भी हो सकती है, और ये सारी काउंसलिंग फीटल इको का रोल यहीं पे आती है। जब हम फीटल इको करते हैं तो हम देख लेते हैं कि इस बच्चे को किस तरीके की जरूरत पड़ेगी इमीडिएटली डिलीवरी के बाद में, और फिर मदर को बताया जाता है, देखो आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ये प्रॉब्लम हो सकती है डिलीवरी के बाद में, तो आपकी जो डिलीवरी है आपको टर्सरी सेंटर में करवानी चाहिए, जहाँ पे कि मल्टी स्पेशलिटी हो और इमीडिएट बच्चे को अटेंशन मिल सके और अर्जेंट इंटरवेंशन के लिए लोग वहाँ पे मौजूद हो। क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसे केस होते हैं हार्ट में कि जहाँ पे इमीडिएटली, जैसे टेटोलॉजी ऑफ एलो है, टीजीए है, बहुत सारी चीजें हैं, कंडीशन है हार्ट की, जिसमें कि बच्चे को होने के बाद ही फिर इमीडिएटली पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं और 4 घंटे के अंदर अंदर सर्जरी करनी पड़ती है।
1: जिस तरह की समस्या होती है उस तरह से उसका इलाज
0: डील
1: कर
0: किया
1: लें।
0: जाता है
1: हाँ,
0: उसे।
1: इसीलिए
0: हाँ,
1: उसको एक अच्छे हॉस्पिटल के लिए
0: टर्सरी सेंटर
1: करना
0: सर, क्योंकि
1: चाहिए। हाँ,
0: प्राइमरी एंड सेकेंडरी केयर पे इतनी स्पेशलाइजेशन होती नहीं है।
1: निश्चित रूप से जिस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधान हो रहे हैं, नई नई विशेषज्ञता बन रही है हर चीज के लिए, तो आने वाले समय में निश्चित ही जो जन्म के समय की समस्या, अब बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो जेनेटिक्स भी होती है या जो एक एनवायरनमेंट कंसर्न के कारण हो जाती है या डिफिशियंसी विटामिन या न्यूट्रिशन के कारण होती है, उस सब को पहचान करके उसका समाधान ढूंढा जा सकता है। डॉक्टर ज्योति गुप्ता जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और आपने न्यू नेटल जेनेटिक्स और उससे जुड़ी जो जन्म नवजात शिशुओं की जो कम वेट पे जन्म होते हैं, समय से पहले हो जाते हैं, उस सब के कारणों के बारे में और सावधानियों के बारे में बताया कि किस तरह से प्लांड डिलीवरी की जाती है अगर इस तरह के केसेस को पूर्वानुमान होता है तो। इन सब जानकारियों के लिए और आकाशवाणी आने के लिए, समय निकालने के लिए आपका धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स बीन अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू।
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: सुनता है तहजीब की बंदिशों को। बारिश हुन अपनी मर्जी नाल आउंदी है, केवल मौसमां दे हिसाब नाल नहीं आउंदी, बारिश हुन अपनी मर्जी नाल कदे भी आ जांदी है। कदे धरती नू सोकियां च मारती है, कदे डोब डोब जांदी है, ना आवे तां धरती सुक जांदी है, आ जावे तां परलो ले आउंदी है। बारिश आउंदी रही है, बारिश आउंदी रहेगी, पता नहीं होर केड़े केड़े रंग विखाउंदी रहेगी। बारिश पता नहीं होर केड़े केड़े रंग विखाउंदी रहेगी। नज़म है की पता। जदों वादी विच नमी होवे, अखां सेजल होण, ता काली ना पमी मेरी जान। अजहे कसमैले वक्तां विच बदल तुरिया ही हुंदा है, कटावां चढ़न चढ़न करदियां ने, फिर कणियां वरदियां ने। अजहे गर्जन गुर्जन उपरंत मी वर ही आउंदा है, पर हो सकदा है बदल लंघ ही जान, जां वरण ता हड़ आ जान। जे होणगे दिलां च अफसाने, ता कोई पंछी पर फड़फड़ाएगा। जे होणगे दिलां च अफसाने, ता कोई पंछी पर फड़फड़ाएगा, ता समझी बूर पैण वाले ने, ता समझी बूर पैण वाले ने। कोयल कूकण वाली है, मोर नचण वाला है, ते नवे रंग खिड़ पैणगे, पर की पता नवे रंगा नू खिड़दा वेख हनेरियां खौरू पा लैण, ते बूर धरती ते डिग पवे। पर की पता नवे रंगा नू खिड़दा वेख हनेरियां खौरू पा लैण, ते बूर धरती ते डिग पवे। दुसहरे दिवाली दे त्योहार होण, दुसहरे दिवाली दे त्योहार होण, मेलियां विच सजे बाजार होण, झूमदे बच्चियां दे हत्थां विच एक हथ चॉकलेट दूजे आइसक्रीम, तां की पता लगे कोई चंद्री नज़र, ते इक्को धमाके नाल सब कुछ नेस्तो नाबूत हो जावे। जदों चारों पासी खामोशी जही चुप होवे, फुल पत्ती बुत होवे, जदों चारों पासी खामोशी जही चुप होवे, फुल पत्ती बुत होवे, घरां च हनेर कुप होवे, तां आस रखी शायद दीवा कोई जग पवे, तां आस रखी शायद कोई दीवा जग पवे, जां किरण कोई तुर पई होवे, पर की पता मारू हवावां ही वग पैण, पर की पता के मारू हवावां ही वग पैण।
1: हुणे तुसीं डॉक्टर वनीता कोलों उन्हां दियां कवितावां सुन रहे सी, ते आओ हुण सुणिए ए गीत देलै गेड़ा, जिसनूं आवाज़ दित्ती ए बलवीर बोपा राय ने।

0: मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है। ये बैठक संसद सत्र के दौरान मंगलवार को होती है। बैठक का उद्देश्य गठबंधन की एकता का प्रदर्शन करना है। इस दौरान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल भारत के सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में श्री मोदी को सम्मानित करने के लिए एक बधाई प्रस्ताव पारित करेंगे। संसद के मॉनसून सत्र के पहले दिन शुरुआत हंगामे से हुई। विभिन्न मुद्दों सहित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले पर विपक्ष के विरोध के बीच कल दोनों सदनों की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही कई बार स्थगित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के मॉनसून सत्र में सभी राजनीतिक दलों से सकारात्मक और सार्थक चर्चा का आग्रह किया है। सत्र से पहले संवाददाताओं से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले केवल एक महीने में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्दाना सिलियानोवस्का दावकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और असेंबली के स्पीकर अफ्रिम गाशी से भी भेंट करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू का उत्तरी मैसेडोनिया की असेंबली को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावेर एडवार्डो मार्टिनेज आचा वास्केज से मुलाकात की। बैठक में डॉक्टर जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया।
1: पनामा वैश्विक व्यापार मार्गों के लिए एक प्राकृतिक सेतु और व्यापक लैटिन अमेरिकी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। पनामा नहर के कारण यहाँ की लॉजिस्टिक अवसंरचना विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण पहचान रखती है। हम शिक्षा, छात्रवृत्ति, औषधि उद्योग, प्रौद्योगिकी और सबसे महत्वपूर्ण व्यापार सहित अनेक क्षेत्रों में आपके सहयोग और साझेदारी की रुचि की सराहना करते हैं। हमें विश्वास है कि इन क्षेत्रों में मिलकर कार्य करने से दोनों देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक और तकनीकी संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे।
2: Technology and of course most important trade.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बेल्जियम के राष्ट्रीय दिवस पर बेल्जियम के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रिवोट तथा देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत बेल्जियम के साथ अपनी बहुआयामी साझेदारी और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में चार भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि एक भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एंडी बर्नहैम को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा लोकतांत्रिक मूल्यों से बंधे हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा और आपसी संबंधों में व्यापक सहयोग है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की स्वीकृति दे दी है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू हो रहा है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगी। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। देविका सिहाग भी महिला सिंगल्स में खेलेंगी। पुरुष सिंगल्स में भारत की ओर से लक्ष्य सेन, आयुष शेट्टी और एचएस प्रणॉय चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन भारतीय चुनौती रखेंगे। ओलंपियन तनिषा क्रिस्टो और ध्रुव कपिला, रोहन कपूर और ऋतुका शिवानी गड्डे मिक्स डबल्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party's weekly strategy meeting, now known as Mangal Milan, is currently underway at the Parliament House in New Delhi. Prime Minister Narendra Modi

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद भवन में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के संसदीय दल की बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक को

0: दोस्तों, हर धड़कन का अपना एक तराना होता है, हर मुस्कान के पीछे कोई अफसाना होता है। कुछ लोग खत लिखते हैं और कुछ लोग गीतों के जरिए अपने जज्बात भेजते हैं। इन्हीं जज्बातों, आपकी मोहब्बत और आपकी भेजी हुई फरमाइशों के साथ मैं हूँ दुर्गेश सरस्वत और मेरे साथ हैं
1: मनीषा बोस। तो स्वीकारें हमारा प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। और दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ पल सुकून के मिल जाएं तो दिन भी आसान लगता है ना?
0: हाँ, और जब उन पलों में साथ हो आपकी पसंद के गीत तो सफर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो
1: तो
0: चलिए आज की इसी महफिल का आगाज करते हैं इसी गीत के साथ।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी फरमाइश। जी हाँ, इसमें बहुत सारे श्रोता साथियों की फरमाइश आने लगी है, और जो श्रोता साथी अभी जिन्होंने अपना रेडियो ट्यून किया है वो ipradiodelhi@gmail.com पर हमें अपनी फरमाइश और अपनी बातें भेजना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों आज है आपके लिए प्यार की सौगातें, कुछ खास काम की भी बातें, और सुनाएंगे गीतों भरी मिठास, क्योंकि आज हैं आपके साथ खास हम मनीषा और दुर्गेश। तो आपसे बातें करते करते हम यहाँ तक आ गए, और चूंकि मौसम है बहुत रंगीन आज, तो ये जो कोहरा है घना, इसकी निगाहों को रोका तो जो मुमकिन ना हो तो इस शहर से कुछ दूर चलें, क्या कहते हैं आप?

0: अंजाना। इस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन रहे थे आप इस नगमे को, और ये फरमाइश थी यमुनेश पांडे की छत्तीसगढ़ रायपुर से।
1: जी हाँ मनीषा जी, हमारे पास और भी फरमाइश आई हुई हैं जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर जी ने भी हमें संदेश भेजा है। इसके साथ ही बुलढाड़ा वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमित कुमार जी ने भी हमें संदेश भेजा है। हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हमें ये संदेश भेजा है, और बरेली से अनीता दीक्षित जी भी हमें फरमाइश कर रही हैं गीत झिलमिल सितारों का आंगन होगा। तो चलिए इनकी फरमाइश को पूरा करते हुए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जीवन मृत्यु।
1: इस फिल्म से आप सुन रहे थे अभी लता जी की मधुर आवाज़ में आपकी फरमाइश कार्यक्रम का ये गीत। और बहुत सारे श्रोता साथी जुड़े हैं जिनमें हमारे साथ अभी इस समय हैं अनिल जैन, ये हैं मलियान सरधना मेरठ से। इनके साथ अनिल के साथ जैन जी हैं, संयम जी हैं, मुस्कान जी हैं और ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम को इस तरह से सुनने के लिए और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए। और हमारे साथ हैं कस्बा बिलराव से इरशाद अहमद शाह, शाहजहां बेगम, मरियम और जैनब। और अगले जो हमारे साथी हैं वो हैं, कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है और उत्तराखंड से हैं, ये हैं जयपुर जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। और इसी तरह हमें नमस्कार कहते हुए ये साथी हैं हमारे साथ चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमल अनेजा, और बहुत शुक्रिया इतनी मोहब्बत देने के लिए और कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और इसके साथ ही हमारे साथ ग्राम कुष्टा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से जुड़े हैं प्रवीण होगाड़े, योगिता हागोड़े और कुमारी प्रियाली हागोड़े, पार्थ हागोड़े और हागोड़े परिवार भी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। संबलपुर कांके से फागूराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ हमारे साथ मनीषा जी जुड़ी हुई हैं दिल्ली से, इनकी भी फरमाइश है कार्यक्रम तुमसे मिलने को दिल करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये ही प्यारा सा गीत।

ये गीत सुन रहे थे आप फूल और कांटे फिल्म से। और देखिए, बहुत सारे श्रोता साथी हैं जो प्रतीक्षा में हैं कि हम उनका भी जिक्र करें। तो हमारे साथ हैं ये नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नभानकर, निर्मला विशाल नभानकर, और मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायडे, आशीष मोहेरकर। और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है इन्हें। ये हैं सतप्रकाश सनोठिया रोहिणी से। बहुत शुक्रिया कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मोहम्मद सईद अब्बासी हैं, इनके साथ निगहत परवीन अब्बासी हैं, शहनवाज और फरदीन सुहान अब्बासी सब जुड़े हुए हैं। लेकिन आप बार बार अगर हमें संदेश भेजेंगे तो आपसे एक गुजारिश है कि देखिए, इस तरह जब आप अपना नाम भेजते हैं तो बाकी जो श्रोता साथी हैं, बार बार अगर आपका नाम आएगा तो वो प्रतीक्षा करते रह जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप सिर्फ अपना संदेश एक बार ही भेजें। और हमारे अगले श्रोता साथी हैं कृष्णा कॉलोनी हांसी से, सुभाष योगी, सुशील योगी। और ये हैं अगले साथी टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, स्वीटी छा

0: हावड़ा, और कार्यक्रम सुन रहे हैं, अपनी दुआएं भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि खुशियों का पल हमेशा बांटते रहें। जी बहुत शुक्रिया आपका।
1: और अगली फरमाइश है हमारे पास गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, शालीमार बाग। अशोक कुमार सैगल जी भी इनके साथ संदेश भेज रहे हैं। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, शाहजहाँ बेगम, मरियम जैनब जी भी हमें संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक, पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से हमें भेज रहे हैं। सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, एंजल भाटिया, हरजिंदर सिंह भाटिया जी भी स्टेशन रोड जमशेदपुर से हमें संदेश भेज रहे हैं। आपके संदेश हमें लगातार मिलते जा रहे हैं। और अगला संदेश हमें मिला है उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का धमता ग्राम सुखरी कला से ये संदेश हमें इन्होंने भेजा है। इसी के साथ अगला संदेश हमें आया है शिकोहाबाद से पुष्प का। इन्होंने भी हमें एक पसंदीदा अपने पसंदीदा
0: गीत की
1: गीत
0: फरमाइश
1: की
0: भेजी
1: फरमाइश
0: है।
1: की है, जो
0: हाँ
1: है
0: हाँ
1: कुर्बानी फिल्म से। चलिए सुनते हैं इन्हीं की फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

0: साथियों, इस खूबसूरत गीत के साथ आपसे कहना है बस ये कि यादें कभी पुरानी नहीं होती, अच्छी धुनें कभी बेगानी नहीं होती, और जो गीत दिल में उतर जाएं उनकी उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। तो उसके बाद बारी आती है आपकी फरमाइशों की। तो आपकी फरमाइश में बहुत सारे संदेशों में ये पहला संदेश है, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा, और चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशव रधान खुराना का। हमारे साथ अगले श्रोता साथी हैं संदीप मकार जी, और इनके साथ हैं कमल और सहनाई पिंगा वाला चौक गोरिया जालंधर से ये जुड़े हुए हैं, और जितेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई भी जुड़े हुए हैं, और छत्तीसगढ़ पलारी से हमारे श्रोता साथी हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी। गाने इन्हें पसंद आ रहे हैं, कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, और आपकी चिट्ठियां, आपके संदेश हमें अच्छे लग रहे हैं। जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और कुछ नाम दुर्गेश के पास भी हैं।
1: हाँ, मेरे पास नाम है अगला टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा जी ने हमें संदेश भेजा है। अगला संदेश हमारे पास आया है जवाहर नगर टीडी मल्होत्रा, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े जी का। इसके अलावा

0: शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज जी कालका से हमें संदेश भेज रहे हैं। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमें संदेश भेज रहे हैं। इसके अलावा भी हमें बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश जी ने उत्तम नगर दिल्ली से हमें संदेश भेजा है। और अगला संदेश जो हमें आया है वो आया है हमें
1: रमेश चौहान का है।
0: जी जी ये हमें राजस्थान से, जोधपुर राजस्थान से संदेश भेज रहे हैं। रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी ने भी हमें संदेश भेजा है, और
1: सरफरुद्दीन
0: अंसारी
1: अंसारी
0: जी ने
1: हमारे
0: भी।
1: श्रोता साथी हैं,
0: जी
1: नियमित
0: जी
1: श्रोता हैं हमारे दुर्गेश। और देखिए, बहुत सारे श्रोता साथी हैं जिनसे हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि आप अपने संदेश बार बार हमें अगर भेजते हैं तो हम देखिए एक के बाद एक ये ऑनलाइन संदेश हैं, तो उस क्रम में अगर बार बार आपके संदेश आते हैं तो वो बार बार नाम हमारे सामने आते हैं। इससे वो श्रोता साथी जो अपनी फरमाइश भेजे हैं, जो जुड़ना चाहते हैं, उन्हें जुड़ने में दिक्कत होती है। तो आपसे बहुत गुजारिश है कि आप बार बार संदेश ना भेजें।
0: चलिए, आपकी फरमाइशों के हिसाब से ही हम अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत।

0: इस रोमांटिक गीत को आप सुन रहे थे रंग फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में, और इसका संगीत नदीम श्रवण की मशहूर जोड़ी ने तैयार किया था।
1: जी
0: और
1: हाँ
0: देखिए,
1: दोस्तों,
0: हाँ,
1: अगला नाम भी हमारे पास आ गया
0: फरमाइशी
1: है।
0: के बहुत सारे संदेश मेरे पास भी हैं अभी दुर्गेश, और जिसमें है ये गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगे राम सतौड़, और इन्होंने किसी भी गीत को सुनने की फरमाइश की है। जी, आपकी फरमाइश सर आंखों पर, और हमें मालूम है कि हम जो गीत आपको सुना रहे हैं वो गीत आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगले श्रोता साथी हमारे साथ हैं, वो हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, और इनके साथ ही हमारे अगले श्रोता साथी जो हैं वो हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनाज नवेद सुहेल, अनम यशफ अब्बासी और रसीद वारसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और देखिए, बार बार वही नाम आ रहे हैं हमारे श्रोता साथियों के। और अगला नाम
1: अगला
0: तुम्हारे पास भी है?
1: नाम है कालानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का। और इसके अलावा हमारे पास प्रिंस वर्मा, प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा ने भी संदेश भेजा
0: राजेंद्र कुमार हैं ये,
1: है। ये हमें
0: और
1: भेज रहे हैं संदेश, इनका संदेश हमें मिला है
0: ये इनकी जगह का नाम है गांव
1: हरियाणा
0: अंबाला।
1: से। हाँ,
0: हाँ
1: जिला अंबाला हरियाणा से इन्होंने हमें संदेश भेजा है। इसके अलावा नई दिल्ली उत्तम नगर से कमला रानी, गीतिका और भानु जी भी
0: इनके भी
1: हमें।
0: संदेश दोबारा हमारे पास आ
1: हाँ,
0: गए हैं।
1: ये बार बार वही संदेश मिलते जा रहे
0: हमारे
1: हैं
0: श्रोता साथी,
1: श्रोताओं।
0: एक्चुअली ये होता है ना दुर्गेश, कि वो इतने उत्सुक हो जाते हैं कि वो हमसे जुड़

कठेरिया, उमा कांती, कमलेश कठेरिया, निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार भी हमें संदेश भेज रहा है। इसके अलावा बरेली से पूनम दीक्षित जी भी हमें संदेश भेज रही हैं। उनकी भी फरमाइश है शोर फिल्म के गीत का। चलिए सुनते हैं उन्हीं की फरमाइश पर ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: खोने और पाने का क्रम तो चलता रहेगा दोस्तों, लेकिन ये अंतिम गीत आपकी फरमाइश का आज था आपके लिए, और आज आपके साथ आपकी साथी थी मनीषा
1: और दुर्गेश।
0: तो इसी के साथ, इस गीत के साथ हमें दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। संसद भवन में आज आयोजित बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि बैठक में नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा हुई।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ

0: सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने बताया कि मुक्त व्यापार समझौता किसानों के हित में है।
0: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: गठबंधन की पूर्ण एकता प्रदर्शित करने के लिए ये बैठकें पारंपरिक रूप से संसद सत्र के दौरान मंगलवार को आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में उत्तरी मैसेडोनिया पहुंच गई हैं। ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोपिये में मैसेडोनिया के राष्ट्रपति गोर्दाना सियानोवस्का दाफकोवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे प्रधानमंत्री क्रिस्टियन मिकोस्की और संसद के अध्यक्ष अफ्रीम गाशी से भी मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू उत्तरी मैसेडोनिया की संसद को संबोधित भी करेंगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल नई दिल्ली में पनामा के विदेश मंत्री हावियर एडुआर्डो मार्टिनेज आचा वास्केस से मुलाकात की। बैठक में डॉ जयशंकर ने लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई क्षेत्र के लिए प्रवेश द्वार के रूप में पनामा के साथ भारत के संबंधों को और प्रगाढ़ करने के महत्व पर बल दिया। भारत ने यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से रवाना हो रहे जहाज एमवी गोल्डन लियो पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में 4 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई जबकि 1 भारतीय गंभीर रूप से घायल है। मंत्रालय के अनुसार घटना के समय जहाज पर 17 चालक दल के सदस्य सवार थे जिनमें 5 भारतीय नागरिक शामिल थे। पश्चिम बंगाल सरकार ने 1 अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाली मासिक आर्थिक सहायता 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग स्थित एचपीसी तिस्ता पनबिजली परियोजना के निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। सुरंग के अंदर करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने सभी संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्य चलाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात कर स्थिति और बचाव कार्यों का जायजा लिया। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी दिन के दौरान मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आज से शुरू हो रही है। प्रतियोगिता में भारत का नेतृत्व पीवी सिंधु करेंगे। महिला सिंगल्स के पहले दौर में सिंधु का सामना उन्नति हुडा से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The National Democratic Alliance NDA parliamentary party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the JMC Balayogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA Alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said that during the meeting, Prime Minister Modi called for a coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in the examination paper leaks and safeguarding the interest of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है मिले जुले गीत, भजन और गजलों का कार्यक्रम सबरस। सबरस में सबसे पहले सुनते हैं ये शब्द।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेग 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं अनुजा झा का सितार वादन में राग मियां की तोड़ी।

संगीत सुरमंजरी के कार्यक्रम में अनुजा झा का सितार वादन, राग था मियां की तोड़ी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को हैं, अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी

0: पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन मुक्त व्यापार समझौतों के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों

रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन आईएसआई के भर्ती मामले में बंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रवर्तन एजेंसी ने कहा कि आरोप पत्र से पता चला है कि आरोपी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन से जुड़े थे और बंगलौर के भोले भाले युवाओं को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए प्रेरित कर कट्टरपंथी बना रहे थे। भारतीय शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर के सत्र में 0.3% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स 289 अंक गिरकर 77,400

0: आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हाँ बिल्कुल, मेरा भी नमस्कार। और आप सभी को बता दें कि आप हमारे साथ हैं एफएम गोल्ड 100.1 MHz पर। इंद्रप्रस्थ चैनल पर हमसे आप जुड़े हैं 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और डिजिटल परिवार के हमारे श्रोता हमसे जुड़े हैं AIR न्यूज़ लाइव 24x7 यूट्यूब चैनल पर। तो जहाँ भी आप हों हम आपके साथ हैं।
0: और श्रुति जी साथ तो हैं लेकिन साथ में सवाल भी हैं, है ना।
1: हाँ
0: जिंदगी
1: हाँ
0: जब चलती है तो सवाल भी साथ होते
1: मुझे
0: हैं।
1: लग रहा है आप कुछ ख्वाहिशों से संबंधित सवाल ही
0: भाई
1: पूछना चाह
0: आपने
1: रहे
0: ख्वाहिश
1: हैं।
0: की बात शुरू किसने की थी, आप ही ने ना। तो भाई
1: हाँ
0: ख्वाहिश से जुड़ा ये सवाल है कि क्या आपकी भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जो अभी तक अधूरी है, या कोई ऐसी ख्वाहिश थी जो आखिरकार पूरी हो गई, यानी कि अपनी इच्छाओं के बारे में हमें बताइए।
1: जी बिल्कुल, ये जज्बात अपनी कहानी हमसे जरूर साझा कीजिए। हमारी ईमेल आईडी हम आपको बताए देते हैं, fmgoldga@gmail.com। एक बार फिर नोट करिए, fmgoldga स्टैंड्स फॉर घर आंगन
0: और
1: @gmail.com।
0: श्रुति जी मेरी एक ख्वाहिश थी कि बारिश हो जाती तो मेरी ख्वाहिश तो पूरी
1: तो
0: हो गई
1: आप
0: है।
1: तो भीगी भीगी लग ही रही हैं, पर मेरी ख्वाहिश है कि बारिश हो तो मैं खूब भीगू, जो
0: अरे
1: मैं नहीं भीग
0: वाह।
1: पाई तो कोई

0: अब यादव जी ने वो कह दिया
1: हाँ
0: कि भाई
1: बिल्कुल
0: गीता भी तो यही कहती है कि इच्छा रहित कर्म की ओर गीता
1: बने हम।
0: प्रेरित करती है
1: हाँ
0: कि आप अपने कर्म करते रहिए और इच्छा मत रखिए। लेकिन हमारी जो बात थी कि ख्वाहिश की, तो बात तो
1: हाँ
0: ख्वाहिश उन्होंने
1: बिल्कुल
0: बोल भी दी,
1: बिल्कुल
0: लेकिन मेरे मेरे साथ जुड़ गई हैं सुरभि, वो कह रही हैं मयूर विहार से कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा होकर देखना, आज वो पूरी भी हो गई है, इससे बढ़कर खुशी मेरे लिए कोई भी नहीं
1: ये
0: है।
1: तो

0: इच्छाएं पूरी हो जाए तो बहुत खुशी होती है, लेकिन सब्र करना चाहिए, जो मिल जाए उसी में खुश रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। भाई वाह
1: देखिए बात तो बहुत पते की कही है,
0: जी।
1: क्योंकि सब्र ही तो नहीं होता इंसान से
0: हाँ जी बिल्कुल
1: और तमन्नाओं को पूरी करने के लिए हर तरह की कोशिश करता है इंसान, और कभी कभी उसमें कभी बार झूठ भी बोल देता है
0: जो
1: इंसान।
0: अभी आपने ये जो गीत सुनवाया था ना श्रुति जी,
1: जी
0: अखियों में रहना गई नींदिया ना आई,
1: नींदिया ना
0: लता
1: आए।
0: जी कह रही थी
1: हाँ
0: कुछ ऐसा ही, जो आपका जो
1: हाँ बिल्कुल। देखो रश्मि क्या है, कहते हैं कि झूठ बड़ा होकर कभी पैदा नहीं होता, है ना। उसकी शुरुआत बहुत ही मासूम होती है, कभी डांट से बचने के लिए, कभी किसी से नाराजगी से बचने के लिए, तो कभी अपनी गलती छुपाने के लिए। उस पर लगता है कि एक छोटा सा झूठ क्या बिगाड़ देगा,
0: जी
1: लेकिन धीरे धीरे वही झूठ एक बड़ी आदत बन जाता है, और फिर सच बोलने से ज्यादा झूठ बोलना आसान लगता है।
0: और यहीं से मुश्किल शुरू होती है श्रुति, एक झूठ को बचाने के लिए फिर दूसरा झूठ बोलना पड़ता है और फिर
1: बिल्कुल।
0: तीसरा, फिर इंसान दूसरों से कम खुद से ज्यादा उलझने लगता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि झूठ किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव यानी विश्वास को बिल्कुल धीरे धीरे खोखला कर देता है, और एक बार भरोसा अगर टूट जाता है ना श्रुति, तो उसे दोबारा बनने में बहुत समय लगता
1: बिल्कुल
0: है।
1: ठीक कहा, लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि अगर झूठ किसी का दिल बचाने के लिए बोला जाए, तब मेरा मानना है कि पहले मन से पूछना चाहिए कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या इसी से किसी का भला हो भी रहा है या नहीं हो रहा, और तभी झूठ बोलना चाहिए अगर जरूरत हो
0: हम
1: तो।
0: तो कहेंगे
1: हाँ
0: झूठ ना ही बोले तो अच्छा है, आज
1: बिल्कुल
0: के समय
1: बिल्कुल
0: में तो सच छिपाना पहले से वैसे ज्यादा मुश्किल हो गया, इसलिए झूठ बोलने से पहले ही सोचिए कि अगर सच सामने आ गया तो क्या मैं अपने रिश्ते में विश्वास और आत्मसम्मान बचा पाऊंगी, और जवाब अक्सर पाएंगे कि आप नहीं ही होगा, तो फिर भाई आप झूठ की हद तक पहुंच चुके, मत कीजिए।
1: तो बिल्कुल आज एक संकल्प भी लेना चाहिए हमें कि अगर गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकारने का साहस रखें, और सच कभी-कभी मुश्किल जरूर लगता है लेकिन मन को सुकून देता है, तो
0: जी
1: झूठ ना ही बोले, और क्यों ना हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक
0: जी
1: बहुत प्यारा सा गीत जो सबको बहुत पसंद था वो सुने।
0: जी

0: शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर को अभी आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म में।
1: हाँ, और वो कह रही थी कि भाई मैं मायके चली जाऊंगी, तो मायके तो जाना बनता है श्रुति जी, लेकिन अगर मायके का सफर रात का सफर है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ
0: और
1: सेफ्टी टिप्स मैं चाहती हूँ, आप बताएं।
0: अकेले भी अगर जा
1: जी
0: रहे हैं तो
1: बिल्कुल,
0: बहुत
1: हाँ
0: ध्यान रखने वाली बात है, पर उस पे हम बाद में बात करेंगे।
1: जी
0: पहले हमारे पास एक मेल आया है, वो हम पढ़ लेते हैं। हमें सुदर्शन मुखी जी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी ने शांतिनगर सोनीपत से लिखा है और बड़ा अच्छी बात लिखी है। ये कह रहे हैं कि जो प्राप्त है वो ही पर्याप्त है।
1: भाई वाह,
0: कितनी बड़ी बात है। और ख्वाहिशों की सड़क बहुत लंबी होती है और जिंदगी में खुश रहना है तो अपनी जरूरत की गली में मुड़ जाओ। कितनी अच्छी बात कही। और आगे लिख रहे हैं कि जिसमें संतोष नहीं है उसको दुनिया की कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती।
1: जी बिल्कुल। ख्वाहिश अगर मेहनत से रिश्ता जोड़ ले तो मंजिल भी कदमों में आ जाती है, और अगर सब्र का हाथ थाम ले इंसान तो हर मुश्किल भी राह बना
0: बिल्कुल
1: जाती है। श्रुति जी,
0: बिल्कुल
1: और हम फिर
0: बात कर रहे
1: मायके
0: थे
1: जाने वाली बात कर रहे
0: रात।
1: थे।
0: और देखो क्या है कि रात में अकेले सफर करना ना एक ऐसा विषय है जो हर उम्र की महिला से जुड़ा है।
1: जी
0: चाहे
1: बिल्कुल,
0: वो खुद यात्रा करती हो, उसकी बेटी या पोती, कोई भी करता हो, चिंता तो रहती ही है। कहते हैं ना कि साहस वो दिया है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है, पर सावधानी वही हाथ है जो उस दिए की लौ को बुझने नहीं देता। रात में अकेले सफर करना आजकल जिंदगी में मजबूरी नहीं, जरूरत है रश्मि।
1: बिल्कुल श्रुति। और सबसे पहली बात यह है कि घर से निकलने से पहले अपने किसी अपने को लाइव लोकेशन जरूर बताएं, और
0: बिल्कुल
1: यात्रा के दौरान भी बीच बीच में उन्हें अपडेट देती रहें। अगर आप कैब में बैठे तो गाड़ी का नंबर भी घर पर लिखवा कर जाएं, और ये छोटी सी आदत आपको बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।
0: और ये बहुत जरूरी बात है। मुझे लगता है कि जगह का चुनाव भी उतना ही मायने रखता है कि जैसे अगर आप वेटिंग कर रही हैं तो बस स्टॉप हो या स्टेशन, हमेशा रोशनी वाली और भीड़ भाड़ वाली जगह पर इंतजार करना ही चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा श्रुति आपने, और साथ ही भाई आपके फोन की जो बैटरी है वो चार्ज करके रखें। कई बार ऐसा होता है ना कि फोन पूरी में पूरी बैटरी नहीं
0: बिल्कुल
1: होती,
0: बिल्कुल
1: और जो इमरजेंसी नंबर होते हैं जैसे 112, 112 को अपनी स्पीड डायल में रखें। और
0: ये बहुत जरूरी
1: आजकल
0: है।
1: कई महिलाएं के जो सुरक्षा ऐप भी आते हैं, जैसे दिल्ली में जो हिम्मत ऐप है दिल्ली
0: हाँ
1: पुलिस
0: दिल्ली
1: का,
0: पुलिस का। हाँ
1: वो जरूर अपने फोन में डाउनलोड करके
0: उसमें
1: रखें।
0: तो एक

0: बहुत नजर रखनी चाहिए, मतलब कहते हैं ना कि अपनी चारों आंखें, पीछे की भी और अंतःचक्षु भी और बाहर की आंखें भी खुली रखनी चाहिए। हेडफोन लगाकर या फोन में डूबे रहकर सफर नहीं करना चाहिए, ये खतरे को न्योता देने जैसा है।
1: बिल्कुल श्रुति, और सबसे जरूरी बात, अपने मन की सुने। अगर कोई स्थिति में आपको असहज लग रहा हो तो तुरंत वहां से हट जाएं,
0: जी
1: आवाज उठाने में संकोच ना करें, भाई आपकी सुरक्षा से बढ़कर कुछ है ही नहीं।
0: हाँ, और देखो आजकल तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, पर्स में पेपर स्प्रे रख सकते हैं आप, कुछ सुरक्षा डिवाइस भी रख सकते हैं। तो याद रखो सखियों के, सतर्कता ही आपकी सबसे बड़ी सहेली है, रात हो या दिन हो, सुरक्षा में कभी लापरवाही करनी नहीं।

0: हैं कि भाई कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, हमेशा सबको खुश रखने का प्रयास करें और अपनी ख्वाहिशों को भी थोड़ा सीमित करके
1: वाह वाह
0: रखें।
1: वाह,
0: भाई वाह,
1: कितनी
0: हमारे
1: कितने
0: श्रोता
1: खूबसूरत,
0: कितने समझदार हैं ना
1: अरे
0: श्रुति जी।
1: बहुत समझदार हैं और इतनी जल्दी रिवर्ट करते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है
0: जी
1: कि कितने अलर्ट हैं हमारे
0: जी जी
1: श्रोता,
0: जी
1: प्रोग्राम सुनते हैं तो अच्छा
0: जी
1: लगता है।
0: काफी ज्ञानी भी हैं, लेकिन ज्ञान
1: हाँ
0: मिलता है किताबों से, है ना।
1: हाँ बिल्कुल, देखो किताबों की खुशबू में बसी होती है सदियों की सोच, जहाँ हर गली में मिलता है ज्ञान का एक नया कोश, वो जगह जानती हो कौन सी है, मैं बताती हूँ
0: क्या बात है,
1: तुम्हें।
0: आजकल तो आप बातें भी कविताओं में कर रही हैं श्रुति।
1: हाँ देखो ना, और हम आज उसकी बात करेंगे जिसे भारत की किताबों की नगरी कहा जाता है, जो है कलकत्ता की कॉलेज स्ट्रीट, और इसके बारे में आपने सुना तो होगा, देखो ये मत बोलना नहीं सुना।
0: बिल्कुल सुना है श्रुति जी, और सच कहूं तो ये जगह किसी अजूबे से कम नहीं है। इसे बंगाली में बोईपाड़ा कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है किताबों का मोहल्ला।

0: आदमी फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे। आकाशवाणी, रश्मि जी कोई मेल आई है क्या
1: जी बिल्कुल, रोहिणी सेक्टर 8 से आप हैं। पुनीत रावत, प्रवीण कुमार, संजय कुमार, ईशा, अरुण, प्रदीप, विमला, मीनाक्षी, अमित शर्मा कह रहे हैं।

0: और ये दुनिया का सबसे बड़ा सेकेंड हैंड किताबों का बाजार भी माना जाता है।
1: ये गणेश चंद्र एवेन्यू से लेकर महात्मा गांधी रोड तक फैली हुई है और यहाँ सड़क के दोनों ओर सैकड़ों छोटी बड़ी दुकानें और फुटपाथ पर बिछे किताबों के ढेर नजर आते हैं। और कहा जाता है कि दुनिया में ऐसी कोई किताब नहीं है जो यहाँ न मिले। पुरानी, दुर्लभ और जो अब छपना बंद हो चुकी हैं, वो भी ये किताबें यहाँ पे ढूंढने से मिल
0: वाकई
1: जाती
0: श्रुति
1: हैं।
0: जी, सच में किताब प्रेमियों के लिए तो ये स्वर्ग जैसा लगता
1: बिल्कुल
0: होगा। और मुझे
1: बिल्कुल।
0: लगता है जो अगर मेरा मन होता ना, तो मैं सारी किताबें समेट कर अपने पास रख लेती।
1: अरे
0: और यहाँ तो प्रेसिडेंसी कॉलेज और कलकत्ता विश्वविद्यालय भी पास में ही है, और मशहूर इंडियन कॉफी हाउस भी है यहाँ पर, जहाँ पर लेखक, कवि और छात्र बैठकर घंटों साहित्य और राजनीति पर चर्चा करते हैं। और ऐसा कहा जाता है श्रुति जी कि वहाँ की चाय और कॉफी के साथ कितने ही महान विचार भी जन्मे हैं।
1: बिल्कुल, सच में ये जगह सिर्फ किताबें बेचने का बाजार नहीं बल्कि एक पूरी संस्कृति और सोच का केंद्र है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी 100 साल पहले थी। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी कलकत्ता जाए तो इस किताबों की नगरी में जरूर घूम कर आए।

0: होती है जो ये बताती है कि हमने अपने पुराने लोन क्रेडिट कार्ड का भुगतान कितनी जिम्मेदारी से किया है। भारत में इसे सिबिल जैसी संस्थाएं जारी करती हैं और बैंक इसी अंक को देखकर तय करता है कि हमें इस व्यक्ति को लोन देना भी है या नहीं।
1: यानी ये जो सिबिल स्कोर है, ये हमारी वित्तीय साख का आईना है।
0: बिल्कुल
1: तो इसे इसका अच्छा स्कोर कितना माना जाता है, यानी कि आमतौर पर 700 या उससे ऊपर का स्कोर जो होता है दोस्तों, अच्छा माना जाता है। और इतना स्कोर होने पर जो है लोन जल्दी और आसान शर्तों पर मिल जाता है। और लेकिन स्कोर अगर कम हो तो बैंक थोड़ा सा हिचकिचाते हैं या ज्यादा ब्याज दर भी लगा सकते हैं।
0: हाँ, तो अगर किसी को का अगर स्कोर कमजोर है और उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये हम आपको बता दें, सबसे पहला और जरूरी नियम है कि हर ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल का भुगतान जो है वो समय पर कर देना चाहिए, देर से नहीं करना चाहिए। और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड की

0: शिकस्त फिल्म में अभी आप लता मंगेशकर को सुन रहे थे।
1: और भाई कारे बदरा तो न जा न जा। लेकिन श्रुति जी हमारे जाने का समय हो गया, लेकिन जाने से पहले मैं एक छोटी सी मेल पढ़ देती हूँ।
0: जी
1: उमेश
0: बिल्कुल
1: कुमार,
0: बिल्कुल
1: उमेश कुमार ख्याला से कह रहे हैं कि जो टाइम पर मिल जाए उसमें ही सब्र करना चाहिए, ज्यादा लेने की भाग दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए। भाई वाह
0: बिल्कुल।
1: क्या बात
0: और
1: है।
0: देखो बात तो उन्होंने सही कही है, लेकिन एक बात माननी होगी रश्मि, कि आज हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं की ख्वाहिशों को जगा दिया है,
1: जी
0: और उन्होंने
1: बिल्कुल।
0: याद भी किया कि अपनी कौन सी ख्वाहिशें उनकी रह गई थी, पर अब समय हमसे कह रहा है कि हम अपने श्रोताओं से विदा लें। तो अपनी अच्छी पुरानी यादों को हमारे साथ जोड़े रखिए, हमें ईमेल जरूर करिए। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldgia@gmail.com।
1: और विदा लेने का समय तो आ गया है, पर भाई श्रुति विदा लेना कोई अंत नहीं होता, बल्कि अगली मुलाकात का वादा होता है।
0: बिल्कुल
1: तो कल मिलेंगे फिर एक नई बात के साथ, एक नई कहानी के साथ, और वही अपनापन लिए हुए। तब तक आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए,
0: बिल्कुल। और मुझे श्रुतिपुरी को
1: और रश्मि कुकरेती को
0: घर आंगन
1: दीजिए
0: से दीजिए विदा।
1: इजाजत।
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। आंगन
2: आपके अस्तित्व, आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य की परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते के बारे में भी बात की जो भारत ने कई देशों के साथ किए हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे। उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले

0: में रहेगा।
1: मंगल मिलन नाम से आयोजित बैठक के दौरान एनडीए के सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर

राज्यसभा में भी 12 बजे के स्थगन के बाद बैठक फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों से अपनी सीटों पर जाने और सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की, लेकिन विपक्ष ने उनकी बात नहीं मानी। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम में नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग दुर्घटना के बाद बचाव कार्यों के सिलसिले में आज मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने बताया कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बातचीत कर बचाव कार्य और स्थिति की जानकारी ली। इस बीच राज्य में NHPC तिस्ता पनबिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अब तक 9 शव बरामद किए जा चुके हैं। करीब 25 लोगों के फंसे होने की आशंका है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में स्वीकृति मिल चुकी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादनोव को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादनोव से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज दोपहर

एक ऐसी फिल्म आई, वो दौर था सन 1960 का, जिसके गानों ने हर गली, हर मोहल्ले, हर रेडियो पर अपना कब्जा जमा लिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1960 में आई एक क्लासिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म, दिल अपना और प्रीत पराई। तो आज के हमारे इस सफ़र में जो हमारी बातों का जो सिलसिला है वो चलेगा फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई को लेकर, जो कि बनी है हिमालय फिल्म्स के बैनर के तरह, और इसको निर्देशित किया किशोर साहू ने। तो दोस्तों बातें करेंगे, बातों का सिलसिला चलेगा इसी फिल्म को लेकर। लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम की शुरुआत में लता जी की आवाज़ में यह खूबसूरत सा गीत इसी फिल्म।

नारे। जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम में आज हमारे साथ दिल अपना और प्रीत पर आए। हिमालय फिल्म्स के बैनर तले बनी फिल्म किशोर साहू के द्वारा निर्देशित ये फिल्म एक लव ट्रायंगल थी, लेकिन इसे बनाया बहुत ही संजीदगी के साथ था। यानी कि लव ट्रायंगल था लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही संजीदा फिल्म। एक तरफ इस फिल्म में थे दयालु और अपने फर्ज के पक्के डॉक्टर सुशील, यानी कि हमारे डैशिंग राजकुमार साहब, और दूसरी तरफ थी एक सीधी सादी सी नर्स करुणा, जिसकी आंखों में भी करुणा थी, दर्द और मोहब्बत झलकता था, यानी कि हमारी खूबसूरत और टैलेंटेड मीना कुमारी जी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब डॉक्टर सुशील की शादी उनका परिवार एक अमीर और घमंडी लड़की रीता यानी कि नादिरा से करा देता है।

तरफ दिल का रिश्ता और दूसरी तरफ फर्ज और समाज की बंदिशें। अब कहते हैं ना, जब दिल किसी और का हो और प्रीत किसी पराए से निभानी पड़े तो जिंदगी बड़ी ही मुश्किल हो जाती है, कश्मकश में फंस जाती है। तो लीजिए सुनते हैं इसी फिल्म से एक और सदाबहार गीत, जो आज भी जब बजता है ना तो हर किसी के दिल के तार बज उठते हैं। तो लीजिए सुनते हैं लता जी की मखमली सी आवाज में ये खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, वेलकम बैक। और क्या खूबसूरत गाना है, वाह वाह। वैसे अगर हम इस फिल्म के संगीत की बात करें तो शंकर जय किशन की जोड़ी ने जो जादू बिखेरा है ना, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। और पता है आपको, जानकर ये हैरानी होगी कि 1961 का जो फिल्म फेयर अवार्ड था, उस अवार्ड फंक्शन में इस फिल्म के म्यूजिक ने इतिहास को रचा। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इतिहास कैसे रचा, तो आपको बता दें कि उसी साल के आसिफ की फिल्म मुगले आजम को बेस्ट म्यूजिक का अवार्ड मिलेगा, ये हर कोई मान रहा था। लेकिन जब लिफाफा खुला तो वो निकला शंकर जय किशन के नाम का, और हर कोई हैरान रह गया कि भाई मुगले आजम जैसी बड़ी फिल्म को पीछे छोड़कर शंकर जय किशन के दिल अपना और प्रीत पराई के शानदार गीत की वजह से उन्हें मिला बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड। अब भाई क्यों नहीं मिलता। इस फिल्म में लता जी का एक और खूबसूरत सा, चुलबुला सा, प्यारा सा गाना है जो कि अभी हम आपको सुनवाने वाले हैं।

जी दोस्तों, फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई। जब इस फिल्म की कास्ट को फाइनलाइज किया जा रहा था, तो जो इस फिल्म के निर्देशक हैं किशोर साहू जी, वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे और संजीदा फिल्मकारों में से एक माने जाते थे। और वो चाहते थे कि जो उनके किरदार हैं, उन किरदारों में वो गहराई हो, और उन किरदार को निभाने वाले जो कलाकार हैं उनमें भी वो गहराई होनी चाहिए। और यही वजह थी कि जब इन्होंने लिखा इस फिल्म की एक्ट्रेस के लिए किरदार करुणा के लिए, तो वो चाहते थे कि इस किरदार के लिए एक ऐसी अभिनेत्री हो जो कि एकदम सीधे सादे मिजाज की हो और उनके किरदार में दिखे कि वो किस तरह से अंदर ही अंदर घुट रही है। और जो भी सब लिखा गया था, उन्होंने जो भी कहानी में लिखा था, वो चाहते थे कि वो उस पर एकदम परफेक्ट उतरे। और यही वजह थी जब किशोर साहू जी ने संपर्क किया मीना कुमारी जी से, तो उस वक्त वो अपनी बहुत सी फिल्मों की वजह से काफ़ी अपनी गंभीर अभिनेत्री की जो छवि थी वो बना चुकी थी। और उनकी ये बात तो हर कोई मानता है कि जो उनकी आंखें हैं वो बिना बोले ही आंखों से दर्द साफ झलका देती हैं। और मीना कुमारी जी ने भी इस रोल को एकदम से हाँ किया, और वाकई में जब उन्होंने इस किरदार को निभाया तो करुणा के किरदार को उन्होंने अमर बना दिया। राजकुमार साहब को भी इसी तरह से उन्होंने साइन किया, और किस तरह से किया वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत आशा जी की आवाज़ में।

हजार जगराओं पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, गव्या मल्होत्रा ने, श्री सुधाकर, राजे जाधव, देशमुख, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित, प्रथमेश सरवत, प्रणाली सानवी, कल्पना देशमुख हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमल अनेजा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगला संदेश हम तक पहुँचाया और पहुँचाने वाले हैं वीरगाम गुजरात से अजित भावसार और इनके साथ हैं प्रमीला भावसार। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, मेहराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी हमारे साथ जुड़े हैं गांव फरासी से। हीरामणि वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं दतरंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हमारे साथ जुड़े हैं। और ये अगला संदेश दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुलडाना इस्लामपुर महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं सहदेव दामोदर, शशिकला कुमारी, साधना, सुमेत कुमार, वड़सिंगी बुलढाणा से जुड़े हैं अमोल मानकर, शोभा ताई और श्लोक दीपाली। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फारान, फारिया ताहिरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदिरा नगर भवरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं राधेश्याम देवांगन, चंपा, राजू, जगदीश देवांगन के साथ। नलेश्वर नगर नरवेल से महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मला, विशाल नवानकर जुड़े हैं। मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताड़े, आशीष मुरहेकर हमारे साथ जुड़े हैं। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जुड़े हैं शांति नगर सोनीपत से। और ये अगला संदेश हम तक पहुँचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा ने। शालीमार बाग से अशोक कुमार सहगल जी हमारे साथ जुड़े हैं और साउथ एक्सटेंशन से हमारे साथ जुड़े हैं गुरमीत सिंह मीता जी। संदीप मकर, ज्योति, मन्नत, भारत और कमल साहनी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जी, कपिल छिपा, पूजा परिहर के साथ जुड़े हैं भोपालगढ़ राजस्थान से। अगला संदेश हम तक पहुंचाने वाले हैं और ये अगला संदेश पहुंचा संजय ढींगिया, नमन अपार ढींगिया ने, बागपत उत्तर प्रदेश से।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन मैं अमन देव। पहला चुनवी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में हुए नीट प्रीख्या पेपर लीक में शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने और देश के नौजवानों के हितों की राखी करने सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरेक मुक्त व्यापार समझौते भारतीय किसानों के हितों सब तो वध तरजीह दी गई है। नीट पेपर लीक मामले समेत वख-वख मुद्दों से विरोधी धिर के हंगामे कारण संसद के दोहां सदनों की कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। सिक्किम के नामची जिले में निर्माण अधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित कढ़ने लई बचाव कार्य जारी ने। हुण तक 9 लाशां कढ़िया गई ने। पी वी सिंधु अज तो शुरू हो रहे चाइना ओपन बैडमिंटन टूरनामेंट में भारत की अगवाई करनगे। हुण खबरां विस्थार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में भविख दीआं प्रीख्यावां में पेपर लीक नूं रोकण लई सारे हिस्सेदारां वलों तालमेल वाले यत्नां का सद्दा दित्ता है। श्री मोदी ने हाल ही में हुए नीट प्रीख्या पेपर लीक में शामिल लोगों विरुद्ध सख्त कार्रवाई यकीनी बनाने और देश के नौजवानों के हितों की राखी करने सरकार की वचनबद्धता दोहराया है। प्रधानमंत्री ने यह गल आज संसद भवन कंपलैक्स में राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोड़ एनडीए संसदीय पार्टी की मीटिंग जिसनों मंगल मिलन भी कहा जाता है संबोधन करद कही। मीडिया नाल गलबात करदिया संसदीय मामलों बारे मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि नीट पेपर लीक बारे जानकारी मिलने के तुरंत बाद सरकार ने कार्रवाई की है। श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में शामिल सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हों में 13 मुलजम इस समय जेल में बंद ने। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दोषी लोगों को सख्त तो सख्त सजा मिलनी चाहिए है। श्री रिजिजू ने कहा कि मीटिंग दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भविष्य में अजिहे पेपर लीक नूं रोकण लई सख्त कदम चुके गए ने।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत वालों कई देशों नाल कीते गए मुक्त व्यापार समझौते बारे भी गल की। मीटिंग दौरान श्री मोदी ने कहा कि हरेक मुक्त व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों को सब तो वध तरजीह दी गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जय सारे समझौते किसानों की भलाई और राष्ट्रीय हित को सब तो अगे रख के किए गए ने।
2: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया।

0: जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
1: संसद के चल रहे मानसून समागम का हवाला देंदे प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए बिलों को पास कराने में एक रचनात्मक ते सकारात्मक भूमिका निभाएगा। श्री रिजिजू ने विरोधी पार्टियों को संसद में सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं पर संसद के सारे मैंबर देश की सेवा कर इसके भविख की राखी कर इसके नौजवानों की भलाई लिए काम करने लिए चुने गए ने। लोक सभा विच विरोधी धिर दे नेता राहुल गांधी ने अज स्पीकर ओम बिरला नाल मुलाकात कीती ते कहा कि विरोधी धिर विद्यार्थियों दे मुद्दे ते चर्चा चाहती है। संसद दे बाहर पत्रकारां नाल गलबात करदिआं श्री गांधी ने कहा कि यह मुद्दा विद्यार्थियों ते नौजवानों दे भविख नाल जुड़िया होया है। नीट पेपर लीक मामले समेत वख वख मुद्दिआं ते विरोधी धिर दे हंगामे कारण संसद दे दोहां सदनां दी कार्रवाई दोपहर बाद 2 बजे तक मुलतवी कर दित्ती गई है। जदों दोपहरे 12 बजे पहली बार मुलतवी होण तों बाद लोक सभा दी कार्रवाई दुबारा शुरू हुई तां विरोधी धिर दे हंगामे दरमियान सदन ने संसद दीआं वख वख कमेटियां दी चोण लई मते पेश कीते। सभापति संध्या राय ने मैंबरां नूं अपील कीती कि ओह अपणियां सीटां ते वापस जाण अते सदन नूं सुचारू ढंग नाल चलण देण। उन्हां कहा कि सिफर काल मैंबरां दा हुंदा है ते पूरा देश सदन दी कारवाई नूं देख रहा है। उन्हां दी अपील दे बावजूद विरोधी धिर दे मैंबर हत्थां विच तख्तियां लै के सदन दे विचकार आ गए ते नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों दे प्रदर्शन नूं लै के नारेबाजी करदे रहे। इस ते लोक सभा दी कारवाई दोपहर बाद 2 बजे तक उठा दित्ती गई। पहला सवेरे लोक सभा की कार्रवाई शुरू हुंदे ही स्पीकर ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की। विरोधी धिर के मैंबरां ने फिर तो नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विरोधी धिर को सदन चलाने में सहयोग करने की अपील की। विरोधी धिर के मैंबरां ने अपना विरोध जारी रखा जिस कारण लोक सभा दोपहर 12 बजे तक उठा दी गई सी। राज सभा विच भी इसे तरह की हालत देखने को मिली। केंद्रीय मंत्रियों वालों सदन की मेज ते कागज रखने तो बाद सभापति सीपी राधा कृष्णन ने विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की आग्या दी। श्री खड़गे ने कल नवी दिल्ली में नीट पेपर को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मुद्दा उठाया। इस तो बाद विरोधी धिर और सत्ताधारी पार्टी दोवे के हंगामे कारण सदन दोपहर 12 बजे तक मुलतवी कर दिता गया। जदों सभा की कार्रवाई 12 बजे मुड़ शुरू हुई तो हंगामा जारी रहने से सभापति ने सभा 2 बजे तक उठा दी। खबरां तुसीं आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साडा एक्सहैंडल है @AIRRNU जलंधर। साडा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साडा चैनल है @AIR जलंधर। सिक्किम के नामसी जिले में समरदुंग विखे NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजैक्ट की निर्माण अधीन सुरंग में फसे लोगों को सुरक्षित कढ़ने लिए बचाव ते राहत कार्य जारी ने। नामसी जिले के सीनियर पुलिस सुपरडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों वालों हुण तक 9 लाशां कढ़ियां गईआं ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम में सुरंग ढहण की दुखदाई घटना दौरान हुए जानी नुकसान से दुख प्रगट किया है। सोशल मीडिया से एक पोस्ट राही राष्ट्रपति ने पीड़ित परिवारों नाल हमदर्दी प्रगटाई। श्रीमती मुर्मू ने बाकी कामियां नूं जल्दी बचाउण ते सुरक्षित बाहर कढ़ण दे नाल नाल जख्मियों के छेती ठीक होने की भी कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग नाल नामची जिले में निर्माण अधीन सुरंग हादसे तो बाद बचाव कार्यों बारे गलबात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री तमांग ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार वालों हर संभव सहायता का भरोसा दिता है। श्री मोदी ने यह ऐलान भी किया कि हरेक मृतक के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत फंड में 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग नाल गल कीती ते नामची जिले में उसारी दिन सुरंग के ढहण की घटना तो बाद उत्थों के हालात ते चल रहे बचाव कार्यों बारे जानकारी ली। गृह मंत्री ने बचाव कार्यों ते प्रभावित लोगों की मदद लई हर संभव सहायता का भरोसा दिता है। भारत ने 19 जुलाई नूं व्यापारिक जहाज MV गोल्डन ल्यू ते हुए हमले नूं लैके अज दिल्ली विच रूस ते चार्ल्स टी अफेयर्स व्लादिमीर लादानोव नूं तलब कीता। इस हमले विच 4 भारतीय नागरिक मारे गए सन। हमले की सख्त निंदा करदिआं विदेश मंत्रालय ने कहा कि अजिहे हमले अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा ते स्थिरता नूं कमजोर करदे ने। मंत्रालय ने कहा कि श्री लादानोव नूं भारत दीआं गंभीर चिंतावां नूं अपने अधिकारियों तक पहुंचाउण लई कहा गया है। उन्हां कहा है कि व्यापारी जहाजा नूं निशाना बनाउणा अते इस दे नतीजे वजो निर्दोष नागरिकां दी मौत अप्रवानयोग है अते इस दी आग्या नहीं दित्ती जानी चाहीदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडी बर्नैम नूं बरतानिया दा प्रधानमंत्री बनन ते वधाई दित्ती है। एक सोशल मीडिया ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਾਂਝੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तिहानात में सवालनामे के इफ्शा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची जिले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। बचाव का काम जारी है। वजीर आजम ने सिक्किम के वजीर आला को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। महकमा मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में आज बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है और भारत ने कमर्शियल जहाज पर हमले में 4 भारतीय शहरियों की मौत के मामले पर रूसी LC को तलब किया है। अब खबरें तफसील से। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA की पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से जाना जाता है, आज पार्लियामेंट हाउस में GMC बालयोगी ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई। मीटिंग के दौरान NDA की इत्तेहादी पार्टियों ने वजीर आजम को सबसे तवील मुद्दत तक भारत के एक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर मुबारकबाद की तहरीक मंजूर की। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने नामानिकारों से बात करते हुए कहा कि इस मीटिंग में वजीर आजम ने पूरे मुल्क में मुस्तकबिल में कराए जाने वाले इम्तहानात के सवालनामे इफ्शा होने से रोकने के लिए सभी मुतल्लिका फरीकों की मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने बताया कि जनाब मोदी ने सवालनामा इफ्शा होने में मुलव्वस लोगों के खिलाफ और मुल्क के नौजवानों के मफादात के तहफ्फुज़ के लिए सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया। वजीर आजम ने कहा कि जो लोग हाल ही में नीट सवालनामे के केस में मुलव्वस हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इनमें से 13 मुल्ज़िमीन को फिलहाल जेल भेज दिया गया है।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: जनाब रिजिजू ने बताया कि वजीर आजम मोदी ने आजाद तजारती समझौतों के बारे में भी इजहार ख्याल किया, जिस पर कई मुल्कों के साथ साथ भारत ने भी दस्तखत किए हैं। मीटिंग के दौरान जनाब मोदी ने कहा कि हर तजारती समझौते में भारतीय किसानों के मफादात को आला तरीन तरजीह दी गई है।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा है जितना भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं उसमें किसानों को लेकर के किसानों का इंटरेस्ट उसको प्राथमिकता देते हुए कोई नुकसान होने नहीं देंगे, उसमें किसानों का हित को सबसे सर्वोच्च ध्यान दिया जाएगा और दिया गया है, इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में रहेगा।
0: NDA के अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के जेर क़यादत मरकजी सरकार मुल्क में इम्तिहानात मुनाकिद कराए जाने में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग यानी मंगल मिलन के दौरान वजीर आजम मोदी ने मुकाबला जाति इम्तिहानात में शफाफियत और ईमानदारी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद का इरादा किया।
2: नीट को लेकर के उन्होंने कहा कि जो गड़बड़ी हुई, लोग पकड़े गए हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करना है और आगे बेहतर से बेहतर व्यवस्था होगी, इसको सुनिश्चित किया जा चुका है और यही कारण है कि फिर से जो परीक्षा नीट की हुई है बहुत ही बेहतर तरीके से हुई।
0: BJP के राज्यसभा के MP अशोक मित्तल ने, जिन्होंने पहली मरतबा NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में शिरकत की, कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि हुकूमत तलबा के साथ है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट पेपर लीक समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आराई की वजह से दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में दोपहर 12 बजे पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोबारा शुरू हुई तो ऐवान ने अपोजिशन की आराई के दौरान पार्लियामेंट की मुख्तलिफ कमेटियों के इंतखाबात से मुतालिक तहरीक पर बहस शुरू की। प्रिजाइडिंग अफसर सिंधा रे ने सभी अरकान से जोर देकर कहा कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुशोसलूबी से जारी रहने दें। उन्होंने कहा कि वक्फ़ा-ए-सिफ़र अरकान के लिए है और पूरा मुल्क ऐवान की कार्रवाई देख रहा है। उनकी इस अपील के बावजूद अपोजिशन अरकान हाथों में तख्तियां लिए ऐवान के वस्त में आ गए और नीट और तलबा के मुजाहिरों के बारे में नारे लगाने लगे। इसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इससे पहले जब ऐवान की कार्रवाई दिन में 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने वक्फे सवालात शुरू करना चाहा, लेकिन अपोजिशन अरकान ने नीट इम्तिहान के पेपर लीक का मामला उठाया। जनाब बिरला ने अपोजिशन से जोर देकर कहा कि वो ऐवान की कार्रवाई में तआवुन दें, लेकिन अपोजिशन अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा, जिसकी वजह से लोकसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इसी तरह के मनाजिर राज्यसभा में भी देखने में आए। जब राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए पहली बार मुलतवी होने के बाद दोबारा शुरू हुई तो चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने अपोजिशन अरकान से अपील की कि वो अपनी अपनी नशस्तों पर चले जाएं और ऐवान की कार्रवाई खुश उसलूबी से जारी रहने दें, लेकिन अपोजिशन ने इस अपील को नज़रअंदाज कर दिया। शोरगुल के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। सिक्किम के नामची जिले में समरदुंग के मकाम पर NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के जेर तामीर टनल के अंदर फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के गरज से तलाश और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। नामची जिले के सीनियर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने कहा है कि बचाव टीमों ने अब तक 9 लाशें निकाली हैं। तकरीबन 25 अफराद के टनल के अंदर फंसे होने का अंदेशा है। बावर किया जाता है कि चट्टानों के टुकड़े गिरने के सबब टनल को नुकसान पहुंचा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नामची ज़िले में ज़ेरे तामीर टनल में हादसे के बाद सूरत-ए-हाल और बचाव कार्रवाइयों के बारे में मालूमात हासिल करने की गरज से आज सिक्किम के वज़ीर-ए-आला प्रेम सिंह तमांग से बातचीत की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब तमांग ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ी सरकार की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। सिक्किम के वज़ीर-ए-आला ने वज़ीर-ए-आज़म की मदद, तशवीश और रियासत के साथ यकजहती के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। जनाब तमांग ने कहा कि NDRF, SDRF, SSDMA, ज़िला इंतज़ामिया, मकामी पुलिस, रंगपो PHC की तिब्बी टीमें और मकामी बिरादरी मुतासिरा लोगों को हर मुमकिन मदद पहुंचाने की गरज से करीबी इश्तराक के साथ मुसलसल काम कर रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के नामची में एक ज़ेर तामीर टनल के मुनहदम होने के सबब जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। महलुकीन के कुनबों से ताज़ियत का इजहार करते हुए जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की। उन्होंने महलुकीन के करीबी रिश्तेदारों को वज़ीर आज़म के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की नकद इमदाद दिए जाने का भी ऐलान किया। ज़ख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने सिक्किम के

0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सिक्किम के वजीर अला ब्रेन सिंह तमांग से बातचीत की है और नामची जिले में जेर तामीर एक सुरंग में ज़मीनी तोदे खिसकने के हादसे के बाद सूरत हाल और बचाव कार्रवाई के बारे में जानकारी हासिल की है। वजीर दाखिला ने बचाव कोशिशों और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने आज हिमाचल प्रदेश में जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में शदीद से बहुत शदीद और कहीं कहीं इंतहाई शदीद बारिश से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। IMD ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मशरकी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और शिमाल मशरकी भारत के कुछ हिस्सों में भी शदीद से बहुत शदीद बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत ने आज रूसी सफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमिर लादानूफ को तलब किया है। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लेव पर हमले के सिलसिले में तलब किया है। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें ज़ाय हो गई थी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आइंदा इम्तहानात में सवालनामे के अफशा होने की रोकथाम के लिए मरबूत कोशिशों के लिए कहा है। उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को यकीनी बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। पार्लियामेंट में मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन की तरफ से हंगामा आरई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई में रुकावट आ गई। सिक्किम के नामची ज़िले में सुरंग के गिर जाने के बाद 9 अफराद हलाक हो गए और कई लापता हैं। खबरें ख़त्म हुई।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for coordinated efforts to prevent paper leaks in future examinations. Reiterates government's commitment to ensuring strict action against those involved in NEET paper leak. Proceedings in both houses of parliament disrupted amid opposition uproar on various issues. 11 people killed, several others trapped after tunnel collapses in Sikkim's Namchi district. Rescue operation underway. Prime Minister assures Sikkim Chief Minister of all possible assistance. IMD issues red alert for very heavy rainfall over Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Ladakh for today. And India summons Russian envoy over death of 4 Indian nationals following attack on a commercial vessel. The National Democratic Alliance NDA Parliamentary Party meeting, now known as Mangal Milan, was held at the GMC Balayogi Auditorium in Parliament House today. During the meeting, NDA Alliance partners passed a congratulatory motion honouring Prime Minister Narendra Modi for becoming the longest-serving elected Prime Minister of India. Talking to media, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said, during the meeting, Prime Minister Modi called for coordinated efforts by all stakeholders to prevent paper leaks in future examinations across the country. He said, Mr. Modi reiterated the government's commitment to ensuring strict action against those involved in examination paper leaks and safeguarding the interests of the country's youth. The Prime Minister said all those involved in the recent NEET paper leak case have been arrested with 13 accused currently lodged in jail.
2: पेपर लीक का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया।
3: As soon as reports of paper leak emerged, the government took swift action. 13 individuals were arrested and sent to jail. To ensure that the future of students was not affected, the NEET re-examination was conducted on priority and the results were declared in a timely manner. Strict measures have also been put in place to prevent such incidents from recurring.
2: दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो इसके लिए सख्ती से कदम उठाया गया है।
1: Mr. Rijiju said Prime Minister Modi also spoke about the free trade agreements that India has signed with several countries. During the meeting, Mr. Modi said in every free trade agreement, the interests of Indian farmers have been given the highest priority.
2: फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कई देशों के साथ भारत ने किया है।
3: इंडिया हैज साइन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद सेवरल कंट्रीज। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज स्टेटेड दैट दीज एग्रीमेंट्स हैव बीन कंक्लूडेड व्हाइल गिविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स। ही हैज आल्सो एम्फसाइज्ड दैट द वेलफेयर ऑफ द फार्मर्स एंड द ब्रॉडर नेशनल इंटरेस्ट हैव बीन द फोरमोस्ट कंसिडरेशंस इन एवरी एग्रीमेंट।
2: इसलिए ये किसानों के हित में और देश हित में

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने नीट प्रश्न पत्र लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का सरकार का संकल्प दोहराया। संसद में विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित। सिक्किम के नामथे जिले में निर्माणाधीन सुरंग ढहने से 9 लोगों की मौत, कई

0: इससे पहले सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना मुद्दा उठाने की अनुमति दी। श्री खड़गे ने नीट मुद्दे को लेकर कल नई दिल्ली में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का मामला उठाया। इसके बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
1: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये

0: निगरानी की जा रही है व संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि यदि भारी बारिश, भूस्खलन या अन्य कारणों से किसी स्थान पर यात्रा मार्ग अस्थायी रूप से बाधित हो तो वे प्रशासन द्वारा निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर होल्डिंग एरिया में ही रुके। सभी संबंधित विभागों को मौसम और यात्रा मार्गों की स्थिति पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फराबाद में तेज से बहुत तेज बारिश और कुछ स्थानों पर अत्यधिक तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, आंतरिक कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में भी 24 तारीख तक ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने अगस्त से वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी सामाजिक कल्याण पेंशन योजनाओं के अंतर्गत मासिक आर्थिक सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये करने की मंजूरी दी है। कल जारी एक आदेश में राज्य सरकार ने कहा कि बढ़ी हुई सहायता राशि सभी पात्र लाभार्थियों को मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन लियो पर हुए हमले के संबंध में आज दिल्ली में रूस के प्रभारी राजदूत व्लादिमीर लादानोफ को तलब किया। 19 जुलाई को इस जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय मारे गए थे। हमले की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसे हमले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा और स्थिरता कमजोर करते हैं। मंत्रालय ने बताया कि श्री लादानोफ से कहा गया कि व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना और इसके कारण निर्दोष नागरिकों की जान जाना स्वीकार्य नहीं है। प्रवर्तन निदेशालय आतंकवादी संगठन ISIS में भर्ती से जुड़े मामले में बेंगलुरु में 8 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है। इसमें इकरा वेलफेयर ट्रस्ट, गाइडेंस फॉर मैनकाइंड और बेंगलुरु स्थित अन्य व्यक्ति शामिल हैं। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये भारत में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसे 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों में डेंगू की रोकथाम के लिए मंजूरी दी गई है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के साथ मिलकर लकाडोंग हल्दी मिशन गोल्डन स्पाइस का शुभारंभ किया। मिशन गोल्डन स्पाइस पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए शुरू की गई एक प्रमुख और महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसकी लागत 175 करोड़ रूपये से अधिक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उच्चाधिकार समिति ने अरावली पर्वतमाला से संबंधित मामलों पर जनता से राय मांगी है। समिति 31 अगस्त से पहले सर्वोच्च न्यायालय को अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया है कि इच्छुक व्यक्ति दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य सत्यापन योग्य सामग्री के साथ अपनी राय MSHPC अरावली

हर जज्बात को बयां कर दे तो भावनाओं का सैलाब आ जाता है। हिंदी सिनेमा में एक ऐसा ही जादूगर आया जिसके शब्दों की जादूगरी सालों साल लोगों के दिलों में बसी रही। यहाँ तक कि आज भी लोगों के दिलों में वही जज्बात भरे हुए हैं। हम बात कर रहे हैं उस शख्स की जिसने हिंदी सिनेमा में कई नगमे दिए और उन नगमों को लिखने का श्रेय भी उसी को जाता है। तो आज जो सितारा हम चुनकर लेकर आए हैं, उम्मीद करते हैं कि उनके बारे में सुनकर और उनके लिखे गीत सुनकर आपका दिल भी बाग बाग हो जाएगा। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ, लेकिन हाँ, उससे पहले आपको बता दूं कि आप भी इस खूबसूरत से सफर में मेरे हम सफर बन सकते हैं अपने संदेशों के जरिए।

0: होता है।
1: प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। किशोर दा की आवाज में फिल्म कटी पतंग से एक खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं। और आगे बढ़े उससे पहले एक किस्सा आपको बताती हूँ। सिनेमा में आने से पहले आनंद बख्शी ने राज कपूर साहब और नरगिस की फिल्म बरसात करीब 20 बार देखी थी और यहीं से उनके दिल में सिनेमा में आने की चाहत जाग गई। यहीं से उन्होंने गीत लिखने शुरू कर दिए। साल था 1950। उन्होंने एक घोषणा पत्र लिखा और उस पत्र में उन्होंने बताया कि मैं गाने लिखने का ऐलान करता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो सेना में नौकरी करते थे, नौकरी छोड़कर वो मुंबई आ गए। हालांकि मुंबई आकर उनकी जो मुश्किलें थीं वो बहुत आसान नहीं थीं, बल्कि मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ गईं। कहा जाता है कि वो स्टेशन पर रुका करते थे। उन्होंने कई प्रोडक्शन हाउस के चक्कर काटे, जो बचे खुचे पैसे थे वो भी खत्म हो गए। इसके बाद वो दिल्ली आए और यहाँ उन्होंने आकाशवाणी में ऑडिशन दिया, लेकिन इसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, फेल हो गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो कैसे आकाशवाणी के

0: सुन रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा जी हैं, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी, संदीप मक्कर जी हमारे साथ जालंधर से जुड़े हुए हैं, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी नंदा बोखरे जी हमारे साथ हैं। और अगला जो संदेश है वो हमारे पास पहुंचा है नलवेश्व नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस मानकर निर्मला विशाल जी का, और पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन उषा मोहन चिलू नायक मधु नायक जी जुड़े हुए हैं। वीरन गांव गुजरात से अजीत भापसर जी का एक और संदेश हम तक पहुंचा है। गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूंडी जी हैं, और कुछ संदेश रिपीट हो रहे हैं इसलिए थोड़ा सा रुकावट आ रही है, उनको भी हम नए संदेशों को ढूंढते हैं। फिलहाल इस गाने को भी इंजॉय कीजिए।
1: संभलना मुश्किल हो गया।
0: हमारे साथ जनकपुरी सहारनपुर से जॉन ट्रिकिस्टो रोजी और पर्ल जुड़े हुए हैं। इसके बाद एक और संदेश हम तक पहुंचा है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गंगनेजा पूनम जी का। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और चलते चलते आपसे कहेंगे कि आनंद बख्शी जी हिंदी फिल्मों का एक अमर नाम, गाने कविताएं लिखने को अपना धर्म और कर्म कहते थे। सोचने समझने की अवस्था में पहुंचने के बाद से उनका एक ही सपना था कि वो लिखते रहें, और उन्होंने ऐसा किया भी। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्मों में करीब 3,300 गाने लिखे, लेकिन अपनी बीमारी के समय में उन्होंने गीतकार समीर से कहा था, मुझे मालूम है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे अंदर अभी भी बहुत सारे गाने हैं, काश मैं उन्हें लिखकर अपने परिवार वालों या तुम्हारे जैसे अच्छे गीतकार को दे देता जो उन्हें सहेज कर रखता। अफसोस है कि वो गाने मेरे भीतर से आए और मेरे साथ ही चले जाएंगे। तो ये थे वो महान सितारे जो आज भी हम सभी के दिलों में जिंदा हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अब जाना आपको कहीं नहीं है, क्योंकि 3 बजे आप सुनेंगे प्रोग्राम मैचिनी मेलोडीज़।

साहित्य और बातें आप तक पहुंचाते हैं जो हमेशा से अमर और खूबसूरत रही हैं। जी हाँ, 1950 का दशक भारतीय सिनेमा का गोल्डन एज, स्वर्णकाल कहा जाता है। आज़ादी मिलने के बाद यानी कि 1947 के ठीक बाद ये दौर सिनेमाई दृष्टिकोण से बहुत ही परिपक्व और संवेदनशील था। 60 के दशक की तुलना में 50 के दशक की जो फिल्में थीं वो समाज, आम आदमी के संघर्ष और कलात्मक गहराई से अधिक जुड़ी हुई थी। आप भी इस सफर में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं कि आपका उस दौर का पसंदीदा गीत कौन सा है। इंतजार है हमें आपके संदेशों का। संदेश भेजने के लिए जो हमारे नए दोस्त हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी मेल आईडी IPRadioDelhi@gmail.com।

बनती थी उस वक्त एक खासियत होती थी उनमें, जो हमारे ही इर्द गिर्द की कहानी हमें नजर आती थी। ऐसी क्लासिक और समानांतर सिनेमा था वो। बिमल रॉय जिनकी 2 बीघा जमीन, गुरुदत्त की आप ले लीजिए प्यासा या फिर कागज के फूल, महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया, इसको कैसे भूल सकते हैं। और इन जैसे निर्देशकों ने व्यावसायिक और कलात्मक सिनेमा का एक अद्भुत संतुलन बनाया हुआ था।

आप सुन रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, और आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे। हमारे साथ भी आप जुड़े हुए हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया जी प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन शनवाज और सरफराज सुहान अरजान अब्बास ऊपरकोट बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं, और बीरनगांव गुजरात से अजीत भापसर जी का एक और संदेश हम तक पहुँचा है। फिलहाल एक खूबसूरत सा नगमा लता जी की आवाज़ में फिल्म नागिन से।

0: रविंद्र और शकील बदायूं ने जैसे गीतकारों ने ऐसे बोल लिखे जो केवल गाने नहीं बल्कि अपने आप में बेहतरीन साहित्य और कविताएं थीं।
1: तुम अगर

0: रुक जा ओ जाने वाली रुक जा।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मैटिनी मेलोडीज, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 3:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं प्रोग्राम उर्दू मजलिस।

0: और जो आदमी पानी की गहराई से डर जाए तो वो मोती हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह जीवन का रस और जिंदगी की हकीकतें भी सिर्फ उसको मिलती हैं जो अंजाम की परवाह किए बगैर तन मन धन से उसमें लग जाए। जो अंजाम की फिक्र में लगकर पूरी कोशिश नहीं करता, उसको ख्वाहिशात और तमन्नाओं के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता। हकीकत भी यही है, जो लोग कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो जब तक उस पर अपना तन मन वार नहीं देते, उस वक्त तक उनको कुछ नहीं मिलता। और अगर कुछ मिलता है, तो वो हकीकत नहीं होती, बल्कि सिर्फ हकीकत की एक झलक होती है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि इंसान जो कुछ करे, तन मन लगाकर करे, और इस तरह करे जैसे गोताखोर पानी के अंदर मोती तलाश करता है। अगर वो एक लम्हे के लिए भी अपना ध्यान दूसरी चीज़ों की तरफ भटका दे, तो उसको मोती तो नहीं मिलेंगे, ऊपर से उसके डूब जाने का खतरा भी होगा। ज़िंदगी की हकीकत जानने और खुदा की तलाश करने वालों का भी यही हाल होता है। अगर वो अपना मकसद भूल जाए, तो ज़िंदगी तो अपना सफ़र जारी रखेगी, लेकिन वो अपना सफ़र गुम कर देगा और रास्ते से भटक जाएगा। दूसरी हकीकत इस दोहे में ये बयान की गई है कि ज़िंदगी की हकीकत और सबसे बड़ी सदाकत को जानने के लिए हौसले और हिम्मत से काम करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी में मुश्किल आती हैं, परेशानियाँ आती हैं और नामुसाइद हालात पेश आते हैं। अज़्म और हौसला के लोग इन मुश्किलात से डरते नहीं, बल्कि उनका मुकाबला करते हैं और हिम्मत और हौसला से काम लेते हैं। वही लोग कारजार हयात में कामयाब होते हैं। और जो ज़िंदगी की मुश्किलात से डर कर मैदान छोड़ देते हैं, उनके हिस्से में नाकामी के सिवा कुछ नहीं आता। कामयाबी सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो हिम्मत दिखाते हैं और बहादुरी के साथ मर्दाना वार मुश्किलात का मुकाबला करते हैं। जिस तरह मोती उसी को मिलता है जो समुद्र की गहराई में जाकर उसे तलाश करे, वो लोग जो डर कर किनारे बैठ जाएं, उनके हिस्से में मोती नहीं आते, सिर्फ मोती की हसरत और नाकामी ही आती है। लगातार जद्दोजहद करना ही कामयाबी की कुंजी है। आम तौर पर कामयाब और बड़े लोगों की चार खूबियां बताई जाती हैं। एक खूबी ये होती है कि उनकी नज़र में मकसद पूरी तरह वाज़ह होता है, यानी उनको ये मालूम होता है कि उनको क्या हासिल करना है। जिस तरह महाभारत में अर्जुन की निगाह सिर्फ चिड़िया की गर्दन पर थी, इसी तरह उनकी नज़र भी सिर्फ अपने मकसद पर होती है। मकसद के अलावा हर चीज़ उनकी निगाहों से ओझल हो जाती है। उनकी दूसरी खूबी यह होती है कि अपने मकसद को हासिल करने के लिए उनके सीने में एक आग लगी होती है, और वो आग उनको चैन नहीं लेने देती। हमारे मुल्क के अजीम साइंसदान और सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि ख्वाब वो नहीं होते जो हम सोते में देखते हैं, बल्कि ख्वाब तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। ऐसा हौसला कामयाबी का ज़ामिन होता है। तीसरी चीज़ मकसद के हुसूल की प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। समुद्र से मोती चाहिए तो उस समुंदर में उतरना पड़ेगा जिसमें मोती हों। गांव के कुएं में गोता लगाने से मोती नहीं मिलेंगे, यही प्लानिंग है। और चौथी खूबी सत्संग होती है। अच्छे और इस राह के माहिर लोगों से दिली ताल्लुक इंसान को कामयाबी की तरफ ले जाता है, और जो अपनी ज़िंदगी के रथ में इन चार घोड़ों को शामिल न करे, उसकी ज़िंदगी कभी कामयाबी से हमकिनार नहीं होगी। और यही बात संत कबीरदास जी ने इस दोहे में समझाने की कोशिश की है।
1: अभी आप प्रोग्राम हरफे ताबिंदा सुन रहे थे। उन्वान था संत कबीरदास के दोहे की रोशनी। पेश कर रहे थे जनाब मोहम्मद मुश्ताक। समीन कव्वाली सूफियाना मौसीकी की एक ख़ास शक्ल को कहा जाता है। ये महज एक गायकी नहीं है, बल्कि एक रूहानी मश्क का वसीला है। कव्वाली में इसका सबसे अहम हिस्सा इसमें बयान किए जाने वाला मवाद होता है, जिसमें हमद, नात, मनकबत और सूफियाना कलाम होता है। आइए सुनते हैं कव्वाली। फनकार हैं कलीम साबरी कव्वाल और हमनवा।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4 बजने को हैं, आपसे कुछ ही देर में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA के संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
1: बैठक के बाद NDA सांसदों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश में परीक्षाओं के आयोजन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हमले के कारण बार बार बाधित हुई। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया RML अस्पताल का दौरा कर डॉक्टरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने नीट UGC 2026 का पेपर लीक होने के आरोपों को लेकर कल राजधानी में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान घायलों का हालचाल पूछा। श्री नड्डा ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती घायलों से भी मुलाकात की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की और कहा कि विपक्ष विद्यार्थियों के मुद्दे पर चर्चा करना चाहता है। संसद के बाहर श्री गांधी ने कहा कि ये मुद्दा विद्यार्थियों और युवाओं के भविष्य से जुड़ा है।
3: इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है। ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल दे सेइंग, नथिंग रॉन्ग विद इट।
1: सरकार ने उन कई सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि कल नई दिल्ली में हुए प्रदर्शनों के दौरान एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली में प्रदर्शन से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है। सिक्किम में नामची जिले में NHPC तीस्ता पनबिजली परियोजना की एक निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि अभी तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरंग दुर्घटना में जानमाल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 3 राष्ट्रों की यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उत्तरी मैसिडोनिया में हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मैसिडोनिया की राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति मुर्मू ने बताया कि उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग और फार्मा इत्यादि पर चर्चा की। भारत ने वाणिज्यिक पोत MV गोल्डन

0: Pradesh, Jammu and Kashmir, and Ladakh for today. Benchmark domestic equity indices ended in negative zone today. The Sensex declined 238 points to close at 77,470. The Nifty lost 51 points to settle at 24,188. And in China Open Badminton, India's H.S. Pranoy's campaign ended in the opening round after losing to Malaysia's Leong Jun Hao in Changzhou today. Devika Sehwag lost to Thai player Busan in the women's singles draw. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। लीजिए सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा गौतम बुद्ध नगर से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति श्रीमती रिंकी गुप्ता निवासी कश्यप कॉलोनी सेक्टर 48 नोएडा। इनकी उम्र 36 वर्ष, कद 5 फीट। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 49 नोएडा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से। थाना रपूरा गौतम बुद्ध नगर से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है साइक पुत्र चांद मोहम्मद, निवासी ग्राम तिरपली, उम्र तकरीबन 20 वर्ष, इकहरा बदन रंगोरा, कद 5 फीट 7 इंच, आँख नाक कान औसत। इनके विषय में कोई भी सूचना अगर आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली रघुपुरा जनपद गौतम बुद्ध नगर से। गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन से मिली सूचना के मुताबिक शिवानी पुत्री सोहनपाल नया गांव सपेरा बस्ती थाना फेस टू से के निवासी हैं, उम्र तकरीबन 20 वर्ष, आँख नाक कान औसत, कद 5 फीट। ये घर से दुकान जाने का बोल कर गई थी लेकिन वापस नहीं आई हैं। इनके विषय में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो संपर्क कर सकते हैं प्रभारी निरीक्षक थाना फेस टू जनपद गौतम बुद्ध नगर से। गुमशुदा व्यक्ति जो हैं अगले वो हैं सुधा पुत्री संतराम, इलाहाबाद गली नंबर 9 निवासी, उम्र 20 वर्ष, आँख नाक कान औसत, कद 5 फीट 2 इंच। घर से बिना बताए ये कहीं चली गई हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उप निरीक्षक विकास सिंह सिकरवार थाना फेस टू नोएडा। थाना फेस वन नोएडा से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम जुगेश, निवासी जेजे कॉलोनी सेक्टर 16 नोएडा, उम्र 35 वर्ष, सामान्य मजबूत बदन, कद 5 फीट, रंग सांवला। बिना बताए कहीं घर से चले गए हैं। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उप निरीक्षक सुनील कुमार थाना फेस वन नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। थाना जारवा गौतम बुद्ध नगर से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम आनंद शर्मा पुत्र स्वरूप चंद शर्मा, निवासी ग्राम चकसेनपुर उर्फ धनुवास थाना जरजा गौतम बुद्ध नगर निवासी हैं। इनकी उम्र 50 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच। इनके विषय में अगर आपको कोई भी सूचना मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं थाना जरचा गौतम बुद्ध नगर से। इनका रंग गेरुआ है, कॉफी रंग की पैंट और भूरे रंग की शर्ट इन्होंने पहनी हुई है। संपर्क कर सकते हैं उप निरीक्षक शिवम कुमार पुलिस स्टेशन जरचा गौतम बुद्ध नगर से। अगले गुमशुदा व्यक्ति डॉली, निवासी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा, उम्र 22 वर्ष, कद 5 फीट 1 इंच, इकहरा मजबूत जिस्म, रंग गेरुआ। अगर इनके विषय में कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं ग्रेटर नोएडा पुलिस स्टेशन से। थाना सूरजपुर कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर से मिली सूचना के मुताबिक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है फूल कुमारी पुत्री राजकुमार, निवासी सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर, उम्र 75 वर्ष, रंग गोरा, आँख नाक कान सामान्य, कद 5 फीट। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके विषय में अगर कोई भी सूचना आपको मिलती है तो आप संपर्क कर सकते हैं उप निरीक्षक अर्पित गुप्ता थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर से।

अभी आप सुन रहे थे गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 4:15 होने को हैं और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो युवाणी में। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट भावना।
1: और मैं हूँ जैन। आज का हमारा ये सफर बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी चीजों के बारे में जो हमारी जिंदगी में खूबसूरत रंग भर देती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा जैन, हम डूबने वाले हैं कला और साहित्य के समंदर में। आज की बात में जानेंगे जेंजी के बीच बुक रीडिंग के बढ़ते क्रेज को, मन से माइक्रोफोन में जानेंगे साहित्य और पत्रकारिता के बारे में, क्विक बज में आप सभी को बताएंगे कला और साहित्य के क्षेत्र में क्या हो रहा है खास, और टुडे इन हिस्ट्री में शेयर करेंगे इतिहास से जुड़े कुछ रोचक तथ्य।
1: तो अगले 45 मिनट हमारे और आपके बीच एक ऐसा रिश्ता कायम होगा जहां अल्फाज आपको छू जाएंगे और रंग सीधे दिलों में उतर जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, अपनी शाम की चाय का कप उठाइए, आराम से बैठिए और हमारे साथ जुड़ जाइए आज के इस सफर में।
0: शुरू करते हैं आज का सफरनामा शो के पहले गीत के साथ, जो है सफरनामा फ्रॉम द मूवी तमाशा।

0: अच्छा भावना, जब तुम आर्ट शब्द सुनती हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या ख्याल आते हैं?
1: मुझे लगता है एवरी पर्सन इज एन आर्टिस्ट इन सम वे। कुकिंग इज एन आर्ट, फोटोग्राफी इज आर्ट, स्टोरी टेलिंग इज आर्ट, इवन डिजाइनिंग एन इंस्टाग्राम पोस्ट इज ऑल्सो अ क्रिएटिव एक्सप्रेशन। लिटरेचर एग्जिस्ट अराउंड अस इन द फॉर्म ऑफ फिल्म, सॉन्ग्स, एडवर्टीजमेंट, पॉडकास्ट एंड कॉन्वर्जेशन। जैन, तुम बताओ कि अगर दुनिया में ये सब चीजें एकदम से गायब हो जाएं, तो क्या होगा?
0: भावना, मुझे लगता है अगर दुनिया से आर्ट, म्यूजिक और लिटरेचर गायब हो जाएंगे तो हमारे जीवन की खुशी और क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी। बिना गानों, किताबों और फिल्मों के मनोरंजन और सुकून का कोई साधन नहीं बचेगा, और हम अपनी पहचान या भावनाओं को व्यक्त करने के मीडियम्स को पूरी तरह से खो देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा जैन, मैं भी कुछ ऐसा ही सोचती हूँ। चलिए इसी नोट पर सुनते हैं एक और गीत, मोंटारे, स्वानंद किरकिरे जी की आवाज में।

0: अब वक्त हो चुका है हमारे शो के पहले सेगमेंट टुडे स्टॉक यानी आज की बात का।
1: पता है जैन, आज सुबह सुबह जब मैं मेट्रो में आ रही थी तब मैंने कुछ नया देखा।
0: अच्छा, क्या देखा तुमने ऐसा?
1: मैंने देखा कि कॉलेज जाने वाले कई स्टूडेंट्स अपने फोन पर स्क्रॉलिंग करने की बजाय किताबें पढ़ रहे थे, मतलब फिजिकल बुक्स। मुझे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। क्या हमारी जेंजी अब सोशल मीडिया छोड़कर फिर से किताबी कीड़ा बन रही है?
0: बिल्कुल भावना, हमारी इंडियन जेंजी सिर्फ किताबें ही नहीं पढ़ती बल्कि उनके पढ़ने का अंदाज और किताबों की पसंद भी थोड़ी अलग है। आजकल इंस्टाग्राम पर बुक टॉक और बुकस्टाग्राम का ऐसा क्रेज है कि युवा लगातार किताबें खरीद रहे हैं।
1: पर जैन, मैं सोचती हूँ कि आखिर ये आज के युवा पढ़ क्या रहे हैं? वही पुरानी लव स्टोरीज या कुछ नया?
0: आजकल सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा है मिथोलॉजिकल फिक्शन यानी पौराणिक कथाओं पर आधारित फिक्शन का। हमारे इतिहास की कहानियाँ जो इस तरह से थ्रिलर और सस्पेंस के साथ ढाली जाती हैं, जेंजी उन्हें बहुत चाव से पढ़ रहे हैं। अक्षत गुप्ता और अमीश त्रिपाठी की किताबें इस जॉनर में सबसे आगे हैं।
1: मुझे तो लगा था इन्हें सिर्फ मोटिवेशनल रील्स देखना पसंद है। क्या ये सेल्फ हेल्प किताबें भी पढ़ते हैं?
0: बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें भारी भरकम ज्ञान नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए छोटे छोटे पैराग्राफ्स और बहुत ही आसान भाषा में लाइफ, करियर और पैसों को मैनेज करने वाला कंटेंट। सरल और सीधे उनके इंटरेस्ट की बात। फाइनेंशियल लिटरेसी में अंकुर वारिकू और मोनिका हलान का नाम सबसे पहले आता है, तो वहीं ब्रायन ट्रेसी और कैल न्यूपोर्ट की किताबें प्रोडक्टिविटी और हैबिट बिल्डिंग के फील्ड में सबसे ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। इसके अलावा सोशल स्किल्स, रिलेशनशिप्स, फिलॉसफी, इंडियन विजडम जैसे कई फील्ड्स भी इंडियन यूथ को अपनी तरफ खींच रहे हैं।
1: वाह, मतलब हर एक जेंजी अपनी ही तरह स्मार्ट रीडिंग कर रहा है। वैसे क्या आज की जनरेशन में भी कोई रोमांस का दीवाना है, या वो सब टिंडर या बंबल तक ही लिमिटेड है?
0: रोमांस का क्रेज कभी खत्म नहीं होता भावना। जेनेरिक रोमांस के साथ साथ आज का युवा उन किताबों को भी पढ़ रहा है जिन पर समाज के कई तबकों में अभी भी एक टैबू यानी पर्दा लगा हुआ है, जैसे मेंटल हेल्थ और LGBTQ+ रिलेशनशिप्स। आज की जनरेशन हर तरह के टैबू वाले टॉपिक के लिटरेचर को स्वीकार कर रही है, क्योंकि आज की जनरेशन किसी भी टॉपिक को कालीन के नीचे छुपाना नहीं चाहती। वो इन विषयों को पढ़कर समाज में जागरूकता लाना चाहती है।
1: मान गई भाई, हमारी देश की युवा पीढ़ी किताबों के जरिए रूढ़िवादी सोच को तोड़ रही है। जो बातें समाज फुसफुसा कर करता था, ये उसे पन्नों पर खुलकर पढ़ रहे हैं।
0: बिल्कुल, और इसीलिए मुझे लगता है कि किताबें सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये बदलाव का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो श्रोताओं, लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक जहां हम सुनेंगे सॉन्ग चोर बाजारी फ्रॉम द मूवी लव आजकल, और जल्द लौट कर आएंगे हमारे शो के अगले सेगमेंट्स के साथ।

0: वेलकम बैक श्रोताओं, अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक का, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे एक विशेष साक्षात्कार जिसका विषय है साहित्य और पत्रकारिता, कल आज और कल, जहां पर संतोष द्विवेदी जी बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार जयप्रकाश पांडे जी से।
1: जयप्रकाश पांडे जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद संतोष जी।
1: दो चीजें मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक साहित्य और पत्रकारिता में क्या अंतर संबंध है, और दूसरा कि आप अपने आप को एक साहित्यकार के तौर पर चाहते हैं जाना जाए या फिर एक पत्रकार के तौर पर।
2: संतोष जी देखिए, एक बहुत ही रोचक प्रश्न आपने किया। दरअसल 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के बीच की बात है, पश्चिमी समाज में जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, साहित्य और पत्रकारिता बटे हुए नहीं थे। भारत में भी हम देखते हैं तो साहित्य और पत्रकारिता दो अलग अलग चीजें नहीं रही हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हों या मुंशी प्रेमचंद हों या तिलक हों या महात्मा गांधी हों, जवाहरलाल नेहरू जी हों, जो भी जितने भी हम स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे, ये सभी एक साथ स्वतंत्रता सेनानी भी थे, साहित्यकार भी थे, लेखक भी थे और पत्रकार भी थे। दरअसल साहित्य और पत्रकारिता को हमें समझने की जरूरत है, इन दोनों में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर, और वो अंतर ये है कि पत्रकार जहाँ केवल घटनाओं को संप्रेषित करता है, वहीं साहित्य उससे जुड़ता है। वह जो लेखक है वह अपनी कल्पना को भी उसमें स्थान देता है, भावनाओं को भी जोड़ता है, और वह यह प्रयास करता है कि समाज में कुछ परिवर्तित हो जाए। इसीलिए जब हम स्वतंत्रता संग्राम के समय को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जितने भी हमारे साहित्यकार थे वह कहीं न कहीं पत्रकार भी थे, और यह क्रम लगभग 80 के दशक तक आता है।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो पहले के जो हमारे समाज के अगुआ थे या जिन्होंने समाज को दिशा दी, चाहे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र रहे हों, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे हों, या गणेश शंकर विद्यार्थी जी जैसे महान पत्रकार रहे हों, तो वो अलग अलग तरह से पत्रकारिता के तौर पर, सामाजिक सुधार के तौर पर, या यूं कहें कि समेकित स्वरूप में समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उसे दिशा दे रहे थे। मानते भी हैं कि भारतीय पत्रकारिता का जो जन्म है एक तरीके से साहित्य की गोद में हुआ है। अगर हम समझना चाहें, आज के श्रोता जो हमारे हैं, इस बात की समझ अगर विकसित करना चाहें, तो उस दौर की पत्रकारिता को देखते हुए और आज की दौर की पत्रकारिता को अगर हम देखें, तो आप दोनों में कुछ समानता या असमानता कैसे देखते हैं आप इसको?
2: देखिए, अभी उस समय की सामाजिक सरोकारों की तुलना तो आज नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो माध्यम बदल चुका है, दूसरा उद्देश्य बदल चुका है। आज पत्रकार घटनाओं को रिपोर्ट करता है। आप देखेंगे कि चाहे वह प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, एक तो समय की सीमा में बंधा हुआ है सब कुछ। पुराने समय में समय की सीमा नहीं थी, हमारे सामने एक लक्ष्य था, हमारे राष्ट्र निर्माताओं के पास या स्वतंत्रता सेनानियों के पास, हम अंग्रेजी शासन के अधीन थे, हमें जनता को जागरूक करना था, हमें जनता को नेतृत्व करना था, हमें एक स्वरूप प्रस्तुत करना था, चाहे वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हों, बाबा साहेब हों, चाहे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों। तो एक साथ आप देखेंगे कि उस दौर के लोग बराबर काम करते थे। अब आज अगर हम सोचें कि कोई भी पत्रकार, कोई भी साहित्यकार, दरअसल ये दोनों बट इसीलिए गए कि 80 के दशक के बाद, 70 के दशक के बाद जिस तरह से समाज अपने को परिवर्तित करने लगा और दूसरे माध्यम लगातार आने लगे, तो उद्देश्य बदल गए। आज के समय में साहित्यकार अपनी कृतियों का सृजन करता है, वह अपनी कल्पना की बातों को या अपनी सोच को, अपने अनुभवों को परिवर्तित करने की कोशिश करता है। पत्रकार भी वही काम करता है, लेकिन पत्रकार का उद्देश्य तात्कालिक है। वर्तमान समय में जो हमारा पत्रकार समुदाय है उसके पास, चूंकि

0: तकनीक का अंतर है, उसके पास वो समय नहीं है, तो वो बतौर साहित्यकार अपने को स्थापित नहीं कर पा रहा है, कहीं न कहीं अलग है। और जो साहित्यकार है वो पत्रकारिता में अपना योगदान उस रूप में नहीं कर पा रहा है।
1: जैसे आपने कहा कि जो पत्रकारिता है वो तात्कालिक लक्ष्यों को साधता है, तो वहीं जो साहित्यकार होता है वो दीर्घकालिक चीजों को देखता है, समाज को दिशा देता है। इसी में जोड़ते हुए जयप्रकाश जी, अगर हम देखें जो पत्रकारिता का जो एक तरह से बदलाव आया है, मिशन से प्रोफेशन, या फिर आप कहें कि मीडिया इंडस्ट्री में तब्दील हो गया है, आज के समय में अगर समाज को दिशा देना है और साथ के साथ जो एक और चलन बढ़ गया कि सबसे तेज या सबसे पहले, तो इसको एड्रेस करते हुए जो आज का पत्रकार है वो कैसे समाज का अगुआ बने?
0: आज का पत्रकार अपने को अगुआ के रूप में देख भी नहीं रहा है। दो चीजें हैं हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार है वह अपने को सेलिब्रिटी के तौर पर देख रहा है, जो एंकर है, तो वह अपने काम से जितना नहीं जाना जाता उतना अपने चेहरे से जाना जा रहा है, जबकि पुराने समय में ये बात नहीं थी। इसी तरह से साहित्यकार जो वर्तमान में बदलाव हुआ है उससे अपने को जोड़ने में जूझ रहा है। मैं बड़े से बड़े साहित्यकारों की बात करूं तो मेरा निरंतर उनसे संवाद होता रहता है, वो अभी तक तकनीक के बदलाव को भी नहीं समझ पा रहे हैं। स्वाभाविक है, हम एक बुजुर्ग से 60 साल 70 साल 80 साल की उम्र के लोगों से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तकनीक को समझ लें, लेकिन जो आज का युवा है उसे यह समझना पड़ेगा और पत्रकार को भी समझना पड़ेगा कि आप स्थायित्व तो तभी पाएंगे जब आपके अंदर गुणवत्ता होगी, आप समाज से जुड़े हों।
1: जी बिल्कुल, पहले की किताबों को भी आपने देखा है, आज की किताबों को भी आप देख रहे हैं, तो जो पहले के साहित्यकार हैं और या जो अब का जो साहित्य रचा जा रहा है उसमें भाषा की बात हो या उनके सामाजिक सरोकारों की बात हो, उसमें क्या आप रेखांकित कर पाते हैं, क्या कोई बदलाव पाते हैं उसमें?
0: संतोष जी, देखिए बहुत बदलाव हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमें ये स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि वर्तमान समय में साहित्य भी अपने स्थान से एक तरह से इतर हुआ है, क्योंकि वो जो बदलाव हुआ है, जो बहुत तेजी से पिछले दो दशकों का बदलाव है, जो तकनीक का बदलाव है और सूचना विस्फोट के दौर में हम रह रहे हैं, लगातार अब AI आ चुका है, इंटरनेट आया, मोबाइल हर आदमी के हाथ में टेलीफोन है, और उसके चलते जो बदलाव है साहित्यकार उस समाज की उस गति को नहीं पकड़ पा रहा है, पत्रकार पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इस बिंदु पर हम ये देखेंगे कि जो आज का पत्रकार है या जो नया युवा है जो पत्रकार बनना भी चाहता है वो नई तकनीक से तो वाकिफ, साहित्यकार जो है नई तकनीक से वाकिफ नहीं है, वो अपने युग में वह इस बदलाव को नहीं देख रहा है। तो हम उस तरह के स्थायी साहित्य की अगर बात करें तो आज के समय में वैसी किताबें हमें बहुत कम मिलती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि अंग्रेजी की किताबों में जो भारत के अंग्रेजी लेखक हैं वह आज पौराणिक आख्यानों को लिख रहे हैं और उससे वो चर्चित हो रहे हैं दुनिया भर में। यानी हम वहीं पे स्थापित हो रहे हैं, हम अपने पौराणिक काल में जा रहे हैं, महाभारत की कथाओं में जा रहे हैं, रामायण की कथाओं में जा रहे हैं, और उनको हम अंग्रेजी में लिख दे रहे हैं तो हम स्टार और सेलिब्रिटी राइटर बन जा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि जो पुरानी चीजें थी एक तरीके से हम अपने मूल में ही फिर से लौट के जा रहे हैं, भाषा का अंतर है और वो भाषा का अंतर उन्हें सेलिब्रिटी बना दे रहा है। जयप्रकाश जी, जैसे बहुत सारे युवा श्रोता भी हमें इस समय सुन रहे हैं, तो उन युवा श्रोताओं के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भविष्य के पत्रकार हैं या फिर भविष्य के साहित्यकार हैं, दोनों ही तरह के लोग जो हमें सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मार्गदर्शन रहेगा?
0: मेरा मानना है कि जब भी कंटेंट की दुनिया में हम होंगे, यानी जब लिखने पढ़ने की दुनिया में होंगे, बोलने की दुनिया में होंगे, तो हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी चाहिए कि हमें हड़बड़ी नहीं करनी। दूसरा ये है कि हमें पढ़ना जरूर चाहिए, बिना पढ़े कोई भविष्य नहीं है। जब आप लिखने पढ़ने बोलने के माध्यम में हैं तो आपकी बुनियाद पढ़ाई लिखाई से ही बनेगी, तो हमें हड़बड़ी नहीं करनी है, हमें तकनीक को समझना है, लेकिन समझने के साथ साथ हमें पढ़ने की जरूरत है। और जब तक हम अपनी विरासत को, अपनी धरोहर को, अपनी अतीत को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को अगर नहीं जान पाएंगे तो हम भविष्य में कहीं भी खड़े नहीं हो सकते। आज भारत का गौरव क्या है, हमें ये समझना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत का नाम सिर्फ इसलिए है क्योंकि प्रज्ञा के स्तर पर अध्यात्म के स्तर पर, सभ्यता के स्तर पर, धरोहर के स्तर पर हम दुनिया की सर्वाधिक लचीली संस्कृति और एक ऐसी संस्कृति है जो वसुधैव कुटुम्बकम को अपना मूल मंत्र मानती रही है। हम हर प्राणी में भी आत्म तत्व देखते हैं। तो हमारे युवाओं को मेरा सुझाव ये है कि अगर आप पत्रकारिता या किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर स्थान बनाना चाहते हैं तो पढ़ें पढ़ें और पढ़ें, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं।

0: जी बिल्कुल, जीवन में पढ़ाई और पढ़ाई में मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जयप्रकाश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुमूल्य जानकारी साझा की हमारे साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, आशा करते हैं इस बातचीत के बाद आपको साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अब वक्त हो चला है एक और छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जहाँ पे हम सुनेंगे बिन तेरे फ्रॉम द मूवी आई हेट लव स्टोरीज़।

0: वेलकम बैक श्रोताओं, हम आ गए हैं आज के शो के अगले सेगमेंट क्विक बज के साथ। आज हम आपको बताएंगे क्या हो रहा है खास आर्ट्स एंड लिटरेचर के एक क्षेत्र में।
1: जी हाँ श्रोताओ, जैन क्या तुम ज्ञान भारतम के बारे में जानते हो?
0: हाँ हाँ भावना, ज्ञान भारतम एक ऐसा मिशन है जो देश की ज्ञान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए शुरू किया गया है। इस मिशन के द्वारा प्राचीन पांडुलिपियों की पहचान, उनके संरक्षण, डिजिटलाइजेशन और रिसर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है।
1: जी हाँ जैन, और सबसे खास बात यह है कि हम और आप जैसे आम नागरिक भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। बस आपको ज्ञान भारतम 2.0 ऐप पर जाना है, और अगर आपके पास कोई मैन्यूस्क्रिप्ट या पांडुलिपि हो या उससे जुड़ी कोई जानकारी हो तो उसे फोटो के माध्यम से इस ऐप पर शेयर करना है, तो आप भी लग जाएं खोजबीन में। क्या पता आपके पास भी कोई मैन्यूस्क्रिप्ट या उससे जुड़ी कोई जानकारी हो और आप भी इस मिशन का हिस्सा बन जाएं। तो इसी के साथ चलिए सुनते हैं एक और गीत, गल मिठी मिठी बोल।

0: श्रोताओं, अगर आप 26 से 30 अगस्त तक दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो आप जा सकते हैं भारत मंडपम में, जहां आयोजित किया जाएगा फिल्म एक्सपो इंडिया 2026। साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में आप लुत्फ उठा सकेंगे भारतीय साहित्य, सिनेमा और स्टोरी टेलिंग का।
1: श्रोताओं, भारत आर्ट कॉन्क्लेव द्वारा BAC आर्ट कॉन्फ्लुएंस 2026 का आयोजन 24 से 26 जुलाई 2026 तकहौज खास नई दिल्ली स्थित लोकायता आर्ट गैलरी में हो रहा है। यह 3 दिवसीय राष्ट्रीय प्रदर्शनी भारतीय रचनात्मकता, विरासत और संस्कृति का उत्सव मनाएगी। रुचि रखने वाले सभी लोग राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, लाइव परफॉर्मेंस और सांस्कृतिक नेटवर्किंग का आनंद ले पाएंगे।
0: श्रोताओं, इन इवेंट्स में भाग लेकर आप कला और साहित्य को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो भावना, क्यों ना हमारे श्रोताओं को एक एनर्जेटिक सा सॉन्ग सुनाया जाए?
1: क्यों नहीं जैन, तो लीजिए, पेश है हम दोनों की ओर से आप सभी के लिए हम दोनों का ये मनपसंद गीत, चले जैसे हवाएं फ्रॉम मैं हूं ना।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, अब बारी है हमारे लास्ट सेगमेंट टुडे इन हिस्ट्री की।
1: श्रोताओं, इतिहास हमें सिर्फ तारीखें नहीं बताता बल्कि उन लोगों की कहानियां भी बताता है जिन्होंने दुनिया को बदलने की कोशिश की। ऐसे ही एक शख्स थे उमाशंकर जोशी, प्रसिद्ध कवि और ज्ञानपीठ अवार्ड विजेता, जिनका जन्म आज ही के दिन सन 1911 में हुआ था।
0: और इसी दिन सन 1988 में इनसेट 1C उपग्रह को फ्रेंच गयाना के कोरो स्थित गयाना अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था।
1: श्रोताओं, आज ही के दिन मशहूर अमरीकी अभिनेता रॉबिन विलियम्स का जन्मदिन भी है। रॉबिन विलियम्स ने अपने 37 साल के करियर में कई बेहतरीन फिल्में जैसे गुडविल हंटिंग, अलादीन और डेड पोएट्स सोसाइटी से करोड़ों लोगों का दिल जीता।
0: 21 जुलाई 1963 को ही काशी विद्यापीठ वाराणसी को यूनिवर्सिटी स्टेटस प्राप्त हुआ था, जिसे आज भी भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में गिना जाता है।
1: आज ही के दिन जाने माने उपन्यासकार अर्नेस्ट हेमिंग्वे का जन्मदिन भी है। इनका जन्म 1899 में अमेरिका के इलिनॉय शहर में हुआ। हेमिंग्वे अपनी सीधी और संक्षिप्त लेखन शैली के लिए जाने जाते थे। उन्हें 1953 में द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए पुलित्जर पुरस्कार और 1954 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया।
0: इसी के साथ श्रोताओं, चलते हैं हमारे अगले गीत की ओर। तुझे कितना चाहने लगे, फ्रॉम कबीर सिंह।

0: श्रोताओं, कला हमें जोड़ती है और साहित्य हमें समझना सिखाता है। शायद इसीलिए किसी ने कहा है, दुनिया तथ्यों से चलती है, लेकिन यादें कहानियों से बनती हैं।
1: तो श्रोताओं, ये था हमारा आज का शो। उम्मीद करते हैं आपको आज की पेशकश पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने का मौका जरूर मिला होगा।
0: श्रोताओं, आप सभी से कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और सुनते रहिए आपका अपना शो युववाणी।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों में रक्षा करने के लिए सरकार के संकल्प को दोहराया। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सुबह 11 बजे प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की तो विपक्षी सदस्यों ने नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया। हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में सुधारों की आवश्यकता पर लगातार बल दिया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा है कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता 2014 में 76 गीगावाट से बढ़कर इस वर्ष 30 जून तक 288 गीगावाट से अधिक हो गई है। आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में श्री नाइक ने कहा कि वित्त वर्ष 2013-14 से वित्त वर्ष 2025-26 तक देश के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में लगभग $46 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया है। व्यापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के जरिए मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 2029 जारी किया गया था। सिक्किम में नामची जिले में एनएचपीसी तीस्तापन बिजली परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव और राहत अभियान जारी है। नामची जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन के इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने पुलिस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तंत्र जांच इकाई ने कहा कि ये सभी दावे झूठे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोप्जो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिंजिवास्को दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट चरण शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स की पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत के एचएस प्रणॉय और देविका सिहाग का अभियान आज पहले ही दौर में समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

0: लोकरंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम नाथ
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो देखिए, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आरती, और मेरे साथ है
1: यमुना। और सच कहें तो लोक रंजनी जो कार्यक्रम है आरती, विशेष तौर पर लोकगीतों पर आधारित है, जिसमें आप रीत रिवाज, त्योहार जो होता है, शादी ब्याह है या मौसम का, हर पल का आनंद आप लोकगीतों के साथ उठाते हैं। तो आज आपको इसी लोकगीत में भी हम कुछ सुनवाने जा रहे हैं, और खास करके सबसे पहले हम सुनवाएंगे आपको ये लोकगीत। कलाकार हैं शिक्षा तंवर।

0: अभी आपने सुना शिक्षा तंवर को और यमुना बहन, जैसे कि आप पहले बात कर रही थी कि लोकगीत एक माध्यम है जो कि हमें हमारी संस्कृति से जोड़ता है, और साथ ही साथ देखिए मौसम की बात की जाए तो मौसम से भी जुड़े बहुत से लोकगीत जो होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। और अभी के मौसम की बात करें तो भाई मौसम जो है बदला हुआ है,
1: वो मैंने देखा जब आई बिल्कुल तो फिर भीगी भीगी से बिल्कुल आ रही थी, छतरी लिए हुए।
0: बिल्कुल मौसम भीगा हुआ है। और देखिए जब बरसात का मौसम होता है उसका एक अलग ही मजा होता है, और मजा को दुगना करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी सखी सहेलियों के साथ निकल जाते हैं और वहां पर जाकर जो मौसम से संबंधित जो नजारे हैं उनको देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं और कुछ खाते पीते हैं और बहुत सी ऐसी बातें करते हैं।
1: बातें तो करते हैं लेकिन गाँव में भूल जाती हूँ कि गाँव में घड़े लेकर के पानी भरने जाते हैं।
0: बिल्कुल
1: अभी भी गाँव में कुएं हैं और लोग पानी भरने जाते भी हैं, नल से भर के लाती हैं। तो जब चार सखियां जाती हैं पानी भरने को तो कैसे चलती हैं, क्या क्या बातें करती हैं, तो ओम पाल रतौली भी अपने इस लोकगीत के जरिए कैसे बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं।

0: आरती, हम गांव की बात करते हैं, माटी की बात करते हैं और खेत खलिहाने की बात करते हैं, कुएं की बात करते हैं। तो सच कहें, अपना गांव बहुत ही प्यारा लगता है और वहां पे जो गाय बछड़े हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, मतलब बहुत ही प्यारा सा मनोरम दृश्य होता है और ख़ास करके हरियाली बहुत ही मन को भाती है। तो गांव की ओर चलने का मन कर रहा है।
1: बिल्कुल, जब हमें सुकून की तलाश और हम चाहते हैं कि हमारे मन को शांति मिले तो हम कहते हैं कि चलो अब चलते हैं हम अपने गांव की ओर।
0: और इस गांव की ओर चलने की बात कौन कर रहे हैं? मुल्लन त्यागी कर रहे हैं अपने इस लोकगीत के जरिए। तो चलिए सुनते हैं इनके लोकगीत को।

0: भूलन त्यागी की आवाज़ में जो कलाकार तुम्हारे सुना रहे थे, ये निर्गुण रागनी।
1: बिल्कुल। और यमुना बहन, अब हम अपने श्रोताओं को एक सूचना देते हैं। जैसे कि आज तीसरा मंगलवार है और आज के दिन हम लेकर आते हैं अपने श्रोताओं के लिए फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। तो आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय रहेगा गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण। और 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आप हमारा फोन इन कार्यक्रम सुन सकते हैं।
0: और जो फोन नंबर है बता दें।
1: बिल्कुल, जिन फोन पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर रहेंगे 23 42 10 81, 23 42 10 83।
0: जैसे कि बता दें आरती कि पहले हमारा जो नंबर खुला रहता था वो 23 42 10 82 और 23 42 10 83 होता था, लेकिन इस समय 82 को चेंज किया गया है और 23 42 10 81 किया गया है। और जो हमारा ये विषय है वो बता दें, गन्ने के फसल में कीट नियंत्रण। इस विषय पर कोई भी जानकारी आप लेना चाहें, कोई भी सुझाव चाहें, तो आप हमारे विशेषज्ञ से सीधे जुड़ सकते हैं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक ग्राम संसार और कृषि जगत कार्यक्रम में। तो अब देखो कार्यक्रम आगे बढ़ाने को कुल मिलाकर के मतलब अब लोक रंजनी कार्यक्रम समाप्त होने को है,
1: बिल्कुल,
0: तो अभी अपने श्रोताओं सभी से नमस्कार करते हैं। सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है तुषार पारासर और संयोजक है शिवनंदन लाल।

0: खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
2: नमस्कार श्रोताओं।
3: नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण जी क्या,
2: और मेरा नाम अभिनव कुमार झा,
3: और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देंगी।
2: हर दौर में कुछ लोग बदलाव का विरोध करते हैं क्योंकि नया हमेशा अनजान लगता है, लेकिन समय हमें सिखाता है कि बदलाव सिर्फ जरूरी नहीं, कई बार वही आगे बढ़ने का रास्ता बनता है। आज बास्केटबॉल का 3x3 और हॉकी 5 जैसे नए प्रारूप इसी बदलाव की मिसाल हैं।
3: खेल वही है लेकिन जुनून नया है, क्योंकि हर दौर में क्रांति जरूरी है, बदलाव जरूरी है। कहते हैं चेंज इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। हमारे इतिहास में भी बदलाव कभी चुपचाप नहीं आया। जब वक्त ने करवट मांगी तो कुछ लोग ने जोखिम उठाया और बदलाव लेके आया। चाहे हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वो इसलिए क्योंकि बदलाव लाने की मुहिम उठाई गई। वैसे ही खेल की दुनिया में लगातार नए स्वरूप देखने को मिल रहे हैं। चेस जो कि एक लंबा खेल हुआ करता था, आज की डेट में रैपिड और ब्लिट्स फॉर्मेट में खेला जाता है। क्रिकेट जो 5 दिन का खेल हुआ करता था, आजकल छोटे छोटे फॉर्मेट में यानी 3 घंटे के फॉर्मेट में T20 के अंदाज में खेला जाता है। इसी तरह कुछ नए फॉर्मेट्स देखने को मिल रहे हैं लगातार हर खेल में, उन पर आज चर्चा करेंगे। साथ के साथ क्या कुछ चल रहा है भारतीय खेल इकोसिस्टम में, उस पर नजर डालेंगे। तो सुनते रहिए हमारे साथ खेल खिलाड़ी।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहने वाले हैं हॉकी और साथ के साथ बास्केटबॉल और टेबल टेनिस से जुड़ी खबरों पर नजर डालने वाले हैं।
1: वहीं हम बात करेंगे परसों से शुरू होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहां पे हम उठाएंगे आज बास्केटबॉल की बातें।
0: साथ के साथ पैरा एथलीट्स किस तरह की तैयारी कर रहे हैं इस खेलों के लिए, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए, उस पर भी हम नजर डालने वाले हैं। साथ के साथ चेस की दुनिया में आपको लेकर जाएंगे, जहां पर चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का आयोजन किया जा रहा है। राउंड 5 के बाद कैसा रहा है भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन, गुकेश दोमराजू और अर्जुन इरीगासी पे खास नजर हमारी होने वाली है।
1: और वहीं आपको लेके चलेंगे कनाडा, जहां बात हम करेंगे स्क्वैश, जूनियर स्क्वैश वर्ल्ड कप की।
0: टेबल टेनिस पर भी बातचीत करेंगे, जहां पर फ्रेंचाइज आधारित टूर्नामेंट यूटीटी यानी अल्टीमेट टेबल टेनिस में लगातार भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी पसीना बहा रहे हैं। तो बने रहिए अगले आधे घंटे दर्पण और अभिनव के साथ। आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: तो शुरुआत करेंगे हम हॉकी से। हॉकी एक ऐसा खेल जिसमें भारत काफी सक्सेसफुल रहा है, काफी सफल रहा है। इतिहास में आप जानते ही हैं कि भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं, लेकिन विश्व कप में शायद उस तरह का प्रदर्शन हाल ही के सालों में नहीं रहा है। याद दिला दें आपको कि पिछली बार भारत ने विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी 1975 में, और 50 वर्ष उसके पूरे हुए पिछले साल जब एक भव्य कार्यक्रम हॉकी इंडिया ने भी किया उस टीम को सम्मानित करने के लिए। और अब उसी उम्मीद के साथ नीदरलैंड्स और बेल्जियम का रुख करने वाली है भारत की पुरुष हॉकी टीम, जिसका चयन हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। क्या कुछ उम्मीदें हैं, कौन कौन से खिलाड़ी शिरकत करने वाले हैं, इस सब पर एक संपूर्ण रिपोर्ट है, आइए सुनते हैं।
1: भारत की टीम है बाईं तरफ जहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी पाइस लेंक में, और यह खेल खत्म। भारत को 1-0 जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
0: 1975 की विश्व विजेता बनने की इन सुनहरी यादों को अपने मन में लिए और उस कारनामे को दोहराने की महत्वाकांक्षा लिए 14 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में होने वाले विश्व कप में भारतीय टीम पूरे जोश के साथ उतरेगी। इस विश्व कप में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम की घोषणा आज हो गई। अनुभव और युवा शक्ति के अच्छे मिश्रण वाली इस टीम का नेतृत्व करेंगे हरमनप्रीत सिंह, और डिफेंस की पंक्ति में उनका साथ निभाएंगे जर्मनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज, संजय, सुमित और यशदीप सिवाल।
2: और मिडफील्ड की जिम्मेदारी

0: राजिंदर, आदित्य, हार्दिक, नीलकांता, विवेक सागर प्रसाद और पिछले ही महीने भारत की तरफ से सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबला खेलने का कीर्तिमान स्थापित करने वाले मनप्रीत सिंह के कंधों पे होगी।
1: गोल दागने के लिए बतौर फॉरवर्ड दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाखरा, सुखजीत सिंह, अभिषेक और मनदीप सिंह तैयार हैं।
0: तो वहीं गोल बचाने के लिए गोलकीपर मोहित और सूरज कारकेरा का चयन हुआ है। कृष्ण पाठक को टीम में जगह नहीं मिली है। गोलकीपर्स पर खास नजर इसलिए भी होगी क्योंकि विश्व स्तरीय मंच पर यह भारत का पहला बड़ा टूर्नामेंट है।
1: हालांकि 2004 में भारत का ओलंपिक्स में प्रतिनिधित्व करने वाले हरपाल सिंह कहते हैं कि भारत को उनकी कमी नहीं खलनी चाहिए।
2: ऐसा कभी भी नहीं रहता कि अगर एक खिलाड़ी के रिटायर होने के बाद, मेरे को लगता है कि वो एक हमारा देश का शिक्षण है कि बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं तैयार होते हैं और टीम को करते हैं इंडिया को सब।
1: हरपाल सिंह ये भी कहते हैं कि अगर भारत को विश्व चैंपियन बनना है तो खिलाड़ियों के साथ साथ कोचिंग स्टाफ की एक अहम भूमिका रहने वाली है।
2: सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक है, मेरी और मेरी गुड विशेज है टीम के साथ। और मेरा मानना यह है कि हॉकी एक ऐसी है कि जिसमें हम एक प्लेयर पर राय नहीं कर सकते हैं और एक प्लेयर को हम उसका कोई भी श्रेय नहीं दे सकते हैं। एज ए टीम गेम और एज ए टीम ही जब तक हम खेलेंगे, 11 अंदर और जो 7 लोग बाहर हैं और इंक्लूडिंग जो कोचिंग स्टाफ और इन सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, कोचिंग स्टाफ का भी बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है। जो प्लेयर खेलता हमें मैदान में दिखता है वो के लिए बाहर काफी ज्यादा मेहनत हो चुकी होती है। और मेरी शुभकामनाएं सबको, हरमन है, मनप्रीत है, दिलप्रीत है, काफी लड़के हैं, सुमित है, जो काफी पुराने और नए लड़के हैं और काफी ज्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है कि इसमें एक्सपीरियंस प्लेयर भी और फ्रेश प्लेयर भी हैं।
0: भारत विश्व कप में पूल डी का हिस्सा है जिसमें उसका सामना इंग्लैंड, वेल्स और आर्च राइवल्स पाकिस्तान से होगा। पहला मुकाबला शनिवार स्वतंत्रता दिवस के दिन होगा जिसमें भारत वेल्स का सामना करेगा।
1: उसके बाद दूसरा मुकाबला सोमवार 17 अगस्त इंग्लैंड से होगा, तो वहीं आखिरी ग्रुप स्टेज मुकाबला 19 अगस्त पाकिस्तान के विरुद्ध। 4 में से शीर्ष 2 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगी।
0: तो भारतीय टीम को हमारी शुभकामनाएं।
1: जहां एक तरफ भारतीय सीनियर टीम्स विश्व कप की तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं भारतीय पुरुष एवं महिला सब जूनियर टीम इस वक्त ओमान के मस्कट में FIH यूथ हॉकी फाइव्स एशियन चैंपियनशिप 2026 में शिरकत कर रही हैं। हॉकी फाइव्स हॉकी का एक नया स्वरूप है जिसमें दोनों टीम में 11 खिलाड़ियों के बजाय केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। मैदान छोटा होता है और खेल भी थोड़ा तेज होता है। यू समझिए जैसे बास्केटबॉल में 3x3, क्रिकेट में T20 और चेस में रैपिड और ब्लिट्स फॉर्मेट्स आए हैं, उसी तरह हॉकी में हॉकी फाइव्स। इसके बारे में और बता रहे हैं हरपाल सिंह।
2: ये हॉकी फाइव काफी सालों से चल रहा है, लास्ट का इवन के वर्ल्ड कप भी होता है और ये एक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 प्लेयर जो ऑन फील्ड होंगे और उसमें थोड़ा हॉकी का इंट्रोल भी होंगे और फास्ट हॉकी को खेलने का और थोड़ा ग्राउंड का डायमेंशन है वो थोड़ी कम करके इसको एक अलग तरह का एक्सपेरिमेंट है कि किस तरह से हम हॉकी को और इंटरेस्टिंग कर सकते। इसमें मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि हॉकी में स्किल बेस्ड गेम है और चाहे फाइव ए साइड है चाहे फुल गेम है 11 ए साइड है, तो दोनों का सेम स्किल सेम स्टिक है सेम उसे, हाँ उसमें कुछ डिफेंसिव जो हमारा स्ट्रक्चर उसमें चेंजेस आ सकते हैं, डिफेंडिंग जो हमारी पोजीशन है उसमें ज्यादा डाउन रहना पड़ेगा उसमें चेंज आ जाएगी, लेकिन वो अगर में हमारे जो नॉर्मल जो 11 ए साइड होगा फायदा ही मिलेगा क्योंकि तो जितना भी हम डीप एरिया में शूटिंग सर्कल के आसपास हम डीप रहकर हम टेक्निक करते तो उसका में हमारा काफी फायदा होता है। मैं सेम स्किल से हॉकी खेल रहे हैं 5 ए साइड या 11 ए साइड है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
0: दोनों टीमों में 5-5 खिलाड़ी, छोटा मैदान और तेज तरार आक्रामक हॉकी को प्रमोट करता है हॉकी फाइव।
1: जैसा हरपाल सिंह ने बताया कि स्किल वही है और इसलिए इसमें अच्छा प्रदर्शन करने का फायदा जरूर पारंपरिक हॉकी में भी मिलता है और ऐसा ही कुछ भारत की सब जूनियर महिला टीम और भारत की सब जूनियर पुरुष टीम कर रही है। सोमवार को यूथ एशियन चैंपियनशिप में महिला टीम ने कजाकिस्तान को 8-3 से हराया, तो वहीं पुरुष टीम ने बांग्लादेश को 7-3 से। महिला टीम के लिए दिव्या ने हैट्रिक लगाई, तो वहीं संदीपा कुमारी और नौशीन नाज ने 2-2 गोल किए। नीलम टोपनो ने भी एक गोल दागा।
0: पुरुष टीम के लिए राहुल यादव ने, करण गौतम ने और प्रहलाद राजभर ने एक एक गोल किया। रोमित पाल और कप्तान केतन कुशवाहा ने 2-2 गोल किए।
1: आज पुरुष टीम का मुकाबला ओमान से तो महिला टीम का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा।
0: छोटा फॉर्मेट है तो एक मुकाबले से जी कहां भरेगा। महिला टीम का दूसरा मुकाबला चीन से और पुरुष टीम का दूसरा मुकाबला आर्च राइवल्स पाकिस्तान से होगा।
1: क्या कुछ घटता है इन मुकाबलों में उस पर नजर बनी रहेगी और खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में हम आपको अपडेट देते रहेंगे।
3: भारत की टीम है बाईं तरफ जहां पे पहुंच गया अब्बास। अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपनी टीम में से बाहर कर दी बाईं फ्लैंक में और यह खेल खत्म। भारत को 1-0 जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।

0: क्या इस बार भी भारत विश्व हॉकी चैंपियन बनेगा, इस पर नजर रहेगी। लेकिन नजर हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी है, जिनका आगाज होने वाला है 23 जुलाई से, और इस बार तारा खिलाड़ी भी अच्छी खासी संख्या में हिस्सा लेने वाले हैं, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेलों में, जो कि खेले जाने वाले हैं ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और वहां पर क्या कुछ उम्मीदें हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सुनते हैं खास रिपोर्ट हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोहम्मद शाहिद आजमी की, जिन्होंने आज भारतीय पारा खिलाड़ियों को रवाना होने की एक जो रस्म होती है उसमें उन्होंने शिरकत की और बातचीत की कुछ खिलाड़ियों से, उनसे पूछना चाहा कि तैयारियां कैसी हैं, उम्मीदें कैसी हैं, और साथ के साथ क्या कुछ हम अपेक्षा कर सकते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से। आइए सुनते हैं मोहम्मद शाहिद आजमी की ये खास रिपोर्ट।
1: जब इरादे बुलंद हों तो कोई भी बाधा मंजिल का रास्ता नहीं रोक सकती। भारत के पैरा खिलाड़ी इसी जज्बे के साथ अब ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। नई दिल्ली में पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने 28 सदस्यीय भारतीय पैरा दल को भव्य विदाई दी। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए पीसीआई अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया, चेयरपर्सन डॉक्टर पायल कनोडिया और हरियाणा के खेल मंत्री श्री गौरव गौतम भी मौजूद रहे। इस अवसर पर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया ने कहा कि खिलाड़ियों में इस बार अलग ही जोश है।
2: ग्लासगो जो कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, आज पैरा खिलाड़ियों की सेंड ऑफ सेरेमनी, और मैं हर एथलीट को जानता हूं, अब की बार खिलाड़ियों में एक अलग ही जुनून है। कहीं नहीं कि हम पहले खेलने जाते थे, अब खिलाड़ी मेडल जीतने जा रहे हैं। अब की बार जो परफॉर्मेंस होगी वो एक ऐतिहासिक परफॉर्मेंस होगी। आप देखिए कॉमनवेल्थ में जो पैरा खिलाड़ी विशेष तौर पे, उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहेगी और कम से कम हम 5 से 6 मेडल जीतेंगे।
1: ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का 28 सदस्यीय पैरा दल 5 खेलों में चुनौती पेश करेगा। दल में 11 पैरा एथलीट, 7 पैरा पावर लिफ्टर, 5 पैरा तैराक, 1 पैरा ट्रैक साइक्लिस्ट और 4 महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी 3x3 टीम में शामिल हैं। बात पैरा एथलेटिक्स टीम की करें तो इनमें देवेंद्र कुमार, दिलीप महादू, राकेश भाई भट्ट, रमेश सनमुगम, शुभमन जुयाल, मोहम्मद बासिल, सोमन राणा, सागर थायत, श्यांश द्विवेदी, शर्मिला और शिल्पा भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। हमने भारतीय पैरा दल में से कुछ खिलाड़ियों से उनकी तैयारियों और संभावनाओं के बारे में बात की। ये हैं डिस्कस थ्रोअर देवेंद्र कुमार।
3: अभी ये मेरा सेकंड कॉमनवेल्थ गेम है, फुल तैयारी के साथ अभी जा रहे हैं और वहाँ अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अपना पर्सनल बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और इंडिया के लिए मेडल।
1: अपना पर्सनल बेस्ट बताइए क्या है और क्या उम्मीद कर रहे हैं, कितनी दूर तक आप जा सकते हैं?
3: मेरा पर्सनल बेस्ट 52.55 है और उसे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे अपना।
1: अब मिलते हैं 100 मीटर T38 कैटेगरी में खेलने वाले युवा एथलीट राकेश भट्ट से।
4: यस, यह मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसमें मैं जा रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, इंडिया का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए, तो पहली बार हम कॉमनवेल्थ में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
1: मेडल की होप्स क्या है बताइए?
4: यस, जैसे देखने जाए परफॉर्मेंस वहाँ अच्छे देंगे, हम 11.5 के नीचे तो हमारा पूरा मेडल का चांस है, तो हमारा पर्सनल बेस्ट देके वहाँ पूरी कोशिश करेंगे कि हम इंडिया के लिए मेडल लाए।
1: पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी शॉटपुट खिलाड़ी शर्मिला का कहना है कि पहले से बेहतर होगा इस बार।
5: 2022 में भी कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेट किया था और अब भी कर रही हूँ, पीछे से अब बेटर है, अब से आगे बेटर होगा, आगे आगे बेटर होता ही जा रहा है। अच्छी सपोर्ट मिल रही है बीसीआई और साई की, और हमारी सरकार खिलाड़ियों को बहुत ध्यान दे रही है और अच्छी मेहनत करके हम भी पीछे नहीं हटने वाले, देश के लिए मेडल लाके देंगे।
1: तैयारियाँ आपकी कैसी है?
5: हमारी बेस्ट तैयारियाँ हैं, हम डेली 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं।
1: दूरी के बारे में बताइए, जो आप दूरी तय कर दी, जो फेंकती जहाँ तक,
5: अब जो फेंक रही हूँ ये तो कॉमनवेल्थ का ही रिकॉर्ड है, एशियन की 2nd रैंक बनेगी, वर्ल्ड की 5th रैंक है, बाकी मेरा सपना है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊ कॉमनवेल्थ नेक्स्ट 2028 ओलंपिक।
1: ये 100 मीटर T47 में दौड़ लगाने वाले मोहम्मद बासिल।
6: इट इज माई फर्स्ट मेजर कॉम्पिटिशन, लास्ट ईयर आई स्टार्टेड द पैरा स्पोर्ट्स, दिस ईयर आई विल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, सो हैप्पी, सो एक्साइटेड टू द बिग गेम्स, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट विल गेट मेडल रिप्रेजेंट इन इंडिया।
1: मेडल मिलेगा वहाँ?
6: मेडल में होप मेडल, बिकॉज रैंक में फर्स्ट में रैंक, सो इट विल होप।
1: व्हाट इज योर पर्सनल बेस्ट?
6: 10.63।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में टारगेट क्या है?
6: 10.5।
1: देश के पैरा खिलाड़ी कितने मेडल जीतेंगे, यही सवाल हमने पैरा एथलेटिक कोच सत्यनारायण से किया।
7: पैरा ओलंपिक डेफिनेटली हम लोग 7 मेडल जीतने का उम्मीद कर रहे हैं, 5 मेडल तो कंफर्म्ड है, 100% है, 2 मेडल नीचे ऊपर हो सकता है। मैं एथलीट होके बोलता हूँ एथलेटिक्स पैरा का बहुत अच्छा करेगा।
1: जो एथलेटिक्स टीम जो आपको दी गई है, जो

0: खिलाड़ी सिलेक्ट हुए उनको देखते हुए क्या लग रहा, कितनी मजबूत है, क्या वहाँ पर संभावना उनसे देखते
1: हैं? आप लोग को मालूम है अभी ग्लासगो में बहुत ठंड है, फिर भी मेरा एथलीट पूरा प्रिपेयर है, 100% हम अच्छा मेडल लेके आएगा।
2: अब बात करते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ियों की, जिनमें परमजीत कुमार, अशोक, झंडू कुमार, सुधीर, जसप्रीत कौर, कस्तूरी राजमणि और सुमन देवी से पदक की उम्मीदें रहेंगी। झंडू कुमार से जानते हैं वो इस बार राष्ट्रमंडल खेलों में कितना वजन उठाएंगे।
3: पिछली बार भी हमने कोशिश किए थे, दिल से कोशिश किए थे कि अच्छा ही करेंगे, एशिया चैंपियन भी अच्छा किए और वर्ल्ड कप में भी अच्छा किए, इस बार कॉमनवेल्थ में भी अच्छा करेंगे।
0: कितना वजन उठाने के टारगेट रखा है? वजन उठाने
3: से देखिए अभी वहाँ जाएंगे, वहाँ वार्म अप एरिया में जो पता लगता है कि हम कितना, मतलब यहाँ तो 210-220 कर रहे हैं, मगर वहाँ मौसम के हिसाब से थोड़ा देखा जाता है वहाँ पे।
0: आपका पर्सनल बेस्ट क्या है?
3: पर्सनल बेस्ट 206।
0: वहाँ क्या टारगेट लेके चलने, कितना उठाने की
3: कोशिश करेंगे? बेस्ट करेंगे।
2: यहीं पर एक और पावर लिफ्टर से आपको मिलवाते हैं।
4: मैं जसप्रीत हूँ, पैरा पावर लिफ्टर। अभी मैंने रिसेंट हमारा एशियन चैंपियनशिप हुआ था, वहाँ मेरे ब्रॉन्ज मेडल लिया और उसके बाद अभी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ी है। अभी मैं 107 केजी लिफ्ट कर रही हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि जो मैंने पिछले बार किया है मैं उससे 10 से 12 किलो अप करके आऊँ अपनी परफॉर्मेंस, और उतना अप करने से मुझे उम्मीद है कि मैं मेडल लेके आऊँ।
0: टारगेट क्या रखा, कितना वजन उठाने का?
4: सर मेरा टारगेट है 105-106 केजी।
2: संभावनाओं पर पैरा पावर लिफ्टिंग कोच राजेंद्र सिंह रहेलू कहते हैं,
5: कॉमनवेल्थ में अच्छी संभावना है, हमारे सारे खिलाड़ी फिट है, हम कोशिश है हमारी इस बार पावर लिफ्टिंग में अच्छे मेडल आएंगे। और बाकी जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बोला ही है, देवेंद्र जी ने, कि बहुत बड़ा दल जा रहा है इस बार, पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो एक नया रिकॉर्ड बनेगा, इंडिया बनाएगा, मुझे श्योर है कि हम जीत जाएंगे।
2: पैरा तैराकी में रवि वीरा वेंकट, बुडगिना अली इमाम, सुरेश जाधव, चैतन्य विश्वास कुलकर्णी और स्वातिक पाटिल भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह है अली इमाम।
6: मैं अली मामू, मैं पैरा स्विमर हूँ, इंटरनेशनल पैरा स्विमर। अब मैं S12 कैटेगरी में था, मेरे को थोड़ा विजन का मतलब प्रॉब्लम है, तो देखने में ऑब्वियसली लेन वगैरह हमको स्टार्टिंग में सिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ट्रेनिंग कराने में, तो देन उसके बाद में एडजस्ट वगैरह हो जाता है, क्योंकि वो मसल मेमोरी वगैरह कनेक्ट हो जाती है हमारी, कब फिनिश आएगी ऐसे हमको आदत हो जाती है धीरे धीरे करते करते।
0: कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या उम्मीद कर रहे हैं?
6: मैं अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा, मेरा ये पहली बार है कोई बड़े कॉम्पिटिशन में मैं खेल रहा हूँ, आई विल गिव माय बेस्ट।
2: इसी तरह पैरा ट्रैक साइकिलिंग में लिशा दास अकेली भारतीय खिलाड़ी होंगी, जबकि महिला व्हीलचेयर बास्केटबॉल 3x3 टीम में रितु चानू एरेगबम, रीना रमेश चंद्र गुप्ता, मीनाक्षी हरिचंद्र जाधव और लक्ष्मी रायप्पा भारतीय चुनौती पेश करेंगी। इस अवसर पर रियो पैरालंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट दीपा मलिक से हमने राष्ट्रमंडल खेलों में देश के खिलाड़ियों से संभावनाओं पर बात की।
7: संभावनाएं बहुत अच्छी हैं इस टीम में, हमारे कॉमनवेल्थ रैंकिंग 1, वर्ल्ड रैंकिंग 1 ऐसे खिलाड़ी भी जा रहे हैं। तैयारियों से ज्यादा खुशी इस बात की है कि नंबर ऑफ स्पोर्ट्स बढ़े हैं, अब 5 विविध स्पोर्ट्स में हमारे पैरा एथलीट जा रहे हैं और लगभग 28 एथलीट जा रहे हैं, इसमें 40% महिलाएं जा रही हैं। मुझे बहुत खुशी है और इतनी सुंदर तैयारी, इतना सुंदर उनका विदाई समारोह।
2: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की पैरा स्पर्धाओं में अब तक 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीते हैं। इस बार उम्मीद है भारतीय पैरा खिलाड़ी इस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ नई दिल्ली से आकाशवाणी के लिए मैं मोहम्मद शाहिद आजमी।
8: मोहम्मद शाहिद आजमी का शुक्रिया। और अब बात करते हैं बैडमिंटन पर।
9: जी हाँ, सबसे पहले बातचीत करेंगे हम चीन ओपन की, जो कि बैडमिंटन के इस सीजन का आखिरी सुपर 1000 टूर्नामेंट होने वाला है।
8: चीन के चांगझोउ स्थित ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में किया जा रहा है, जहां विश्व भर के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी खिताब के लिए एक दूसरे को चुनौती देंगे।
9: पुरुष एकल वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों की अगर बात करें तो लक्ष्य सेन पर नजर होगी, साथ के साथ आयुष शेट्टी से भी काफी सारी उम्मीदें हैं। HS प्रणॉय, जो कि एक दिग्गज नाम है, वो भी शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं।
8: और वहीं महिला एकल में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु उन्नति हुड्डा और उनके साथ उनका साथ देगी देविका सिहाग।
9: PV सिंधु ने हाल ही में जापान ओपन जीता है, जिसके बाद अब उम्मीद करी जा रही है कि वो अपनी फॉर्म को बरकरार रखेंगी और चीन ओपन में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगी।
8: बात करें पुरुष युगल की, तो भारत को बड़ा झटका तब लगा जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की चोट के कारण सात्विक चिराग की स्टार पुरुष युगल जोड़ी को इस टूर्नामेंट से हटना पड़ा। उनकी गैर मौजूदगी में हरिहरन, अमसा करुणन और MR अर्जुन भारतीय चुनौती की कमान संभालेंगे।
9: वहीं मिश्रित युगल वर्ग की बात करें तो जानी मानी जोड़ी

0: मनीषा क्रास्टो, ध्रुव कपिला और इनके अलावा रोहन कपूर और साथ के साथ ऋत्विका घाड़े की भी जोड़ी होने वाली है। तो इन दोनों जोड़ियों पर नजर बनी रहेगी भारतीय प्रशंसकों की। लेकिन कुछ मुकाबलों की शुरुआत हो चुकी है, आज राउंड ऑफ 32 के मुकाबले खेले गए जिनके कुछ परिणाम हमारे सामने आ चुके हैं, आपको रूबरू कराते हैं।
1: पहला मुकाबला खेला गया भारतीय खिलाड़ी एच एस प्रणॉय का, जिन्होंने सामना किया मलेशिया के जे एच लियोंग का, जहां पे उनको हार का सामना करना पड़ा। जे एच लियोंग ने 21-10 और 21-14 से ये मैच अपने नाम किया।
0: वहीं देविका सिहाग का मुकाबला थाई खिलाड़ी ओंगबाम रूफांग के खिलाफ हुआ। पहला सेट थाई खिलाड़ी ने 21-19 से जीता, तो दूसरे सेट में वापसी करते हुए 21-19 से देविका सिहाग ने जीत हासिल की। दो कड़े सेट के बाद तीसरा सेट लगभग एक तरफा रहा, जिसमें देविका सिहाग को हार का सामना करना पड़ा।
1: वहीं बात करते हैं कल खेले जाने वाले मुकाबलों की, जहां सबसे बड़ा मुकाबला होने वाला है उन्नति हुड्डा और पीवी सिंधु का। वहीं मेन सिंगल्स में लक्ष्य सेन मुकाबला करेंगे जापान के वाइटनाका का, और आयुष शेट्टी का मुकाबला होगा इंडोनेशिया के ए फरान से।
0: वहीं बात करें युगल वर्ग की, तो पुरुषों में हरिहरन अमसा खरुनन और एमआर अर्जुन की जोड़ी के सामने विश्व प्रसिद्ध वियांग और लियांग की जोड़ी होने वाली है, जो कि चीन से आती है, और साथ के साथ ध्रुव कपिला और तनीषा क्रास्टो भी चीन की जोड़ी के विरुद्ध शिरकत करते हुए नजर आएंगे। खैर, ये तो रही बैडमिंटन की बात। चेन्नई में चेस की दुनिया में क्या चल रहा है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन कैसा रहा है, उस पर चर्चा करते हैं।
1: और अब बात करते हैं चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2026 की, जो 16 जुलाई से 22 जुलाई तक चेन्नई में खेला जा रहा है।
0: जी, और इसमें कल बड़ा मुकाबला हुआ दो दिग्गज भारतीय खिलाड़ियों के बीच। वैसे तो उम्र से युवा हैं, लेकिन दोनों का इस तरह का स्तर बन चुका है पिछले कुछ वर्षों में कि उनको दिग्गज कहना ही शायद सही होगा। अर्जुन इरिगासी और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन गुकेश के बीच ये मुकाबला हुआ, जिसमें अर्जुन इरिगासी को जीत मिली।
1: और वहीं स्टैंडिंग्स की बात करें तो अर्जुन इरिगासी नंबर एक पे बने हुए हैं, वहीं फ्रांस के एलरोजा फिरोजा नंबर दो पे, उज्बेकिस्तान के नॉर्दिबेक अबुस्तरोव नंबर तीन पे, और डी गुकेश नंबर आठ पे बने हुए हैं।
0: जी, तो चिंता का विषय थोड़ा सा ये माना जा रहा है कि डी गुकेश इस बार अगर देखा जाए इस प्रतियोगिता में 5 राउंड का समापन हो चुका है और अभी भी उनको एक भी जीत नहीं मिली है। आपको याद दिला दे कि आने वाले समय में चेस ओलंपियाड होने वाला है, सितंबर 15 से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जो कि खेला जाएगा उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और आपको यह याद दिला दें कि 2024 में बुडापेस्ट में भारतीय टीम ने ओपन वर्ग में तो गोल्ड मेडल जीता ही था, महिलाओं ने भी गोल्ड मेडल जीता था, और उसमें ओपन वर्ग में जो गोल्ड मेडल आया था, डी गुकेश की एक अहम भूमिका थी, क्योंकि उन्होंने अपने बोर्ड पर भी इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भी हासिल किया था। और इसके बाद नवंबर दिसंबर में तो आप जानते ही हैं कि उनके वर्ल्ड चैंपियन होने के खिताब को चुनौती मिलने वाली है उज्बेकिस्तान के सिंदरोव से, और इसलिए गुकेश का जो हालिया फॉर्म है वो भारतीय चेस प्रशंसकों के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय बना हुआ है। और इस बात की पुष्टि महान खत्म खिलाड़ी माने जाने वाले विश्वनाथन आनंद ने भी की।
2: He had the best start and Arjun's win yesterday I think brought him, made it a bit narrower. Oh, he must be disappointed with the result, but anyway, he'll play some more games. And right now it feels like we're all beating him on the head with this. Yeah, he's had a bad streak for a while, but he can snap out of it even before. So hopefully the Olympiad inspires him and he still has a chance to do it well.
0: जी हाँ, अभी भी मौका है अपनी लय को बरकरार करने का और लय को वापस पाने का, ऐसा कह रहे हैं विश्वनाथन आनंद। आपको खैर ये बता दें कि विश्वनाथन आनंद आप सब जानते ही हैं, वर्ल्ड चैंपियन 5 बार रहे हैं, और वो कहते हैं कि उनकी करियर में भी एक ऐसा दौर आया था जब वो मोटिवेशन की तलाश कर रहे थे और लगातार हार का सामना कर रहे थे, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि क्योंकि वो खुद ऐसे दौर से गुजर चुके हैं, इस दौर से निकलना नामुमकिन नहीं है, और इसलिए उनकी पूरी पूरी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उनकी बेस्ट विशेस हैं, वो डी गुकेश के साथ हैं।
2: It was a longer stretch, right? But yeah, I had moments. I mean, 2011 was a slow year in general. Well, it was a longer stretch, right? But yeah, I had moments.
0: यहां पर क्या होता है उस पर तो हमारी नजर बनी ही रहेगी, लेकिन उसके अलावा एक और सवाल विश्वनाथन आनंद से किया गया, और वो

0: इस बात पर किया गया कि कैसा लगता है आपको जब आप खबर सुनते हैं कि अब भारत के 99 ग्रांड मास्टर हो चुके हैं। जी हाँ, आपने पिछले हफ्ते ही खबर सुनी कि कैसे भारत के VS रत्नावेल ग्रांड मास्टर बने और अब भारत के 99 ग्रांड मास्टर हो चुके हैं। 1988 में विश्वनाथन आनंद ग्रांड मास्टर बने थे और वो भारत की तरफ से पहले ग्रांड मास्टर थे। इनफैक्ट उनसे पूछा गया था 2022 में जब चेस ओलंपिया चेन्नई में हुआ था कि आपको क्या लगता है कि कितने ग्रांड मास्टर भारत कर लेगा तो आपको अच्छा लगेगा, तो उन्होंने कहा था कि ये आजादी का 75वां साल चल रहा है, अगर 75 ग्रांड मास्टर हमारे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अब 4 साल बाद यह आंकड़ा 99 तक पहुंच चुका है और इतनी तेजी से भारत चेस में आगे बढ़ रहा है कि उससे विश्वनाथन आनंद भी चौंके हुए हैं।
1: Some nice coincidences. I remember before the Chennai Olympiad, I mentioned that it would be a nice exclamation point if we reach 75 in the 75th year of independence. And 4 years later, we are almost at 100. So that's another, we have 23, 24 added. It's quite a striking pace, and I think it's a very nice milestone.
0: जी हाँ, तो चेस की दुनिया पर हमारी नजर बनी रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी नजर और खेलों पे भी बनी हुई है। अब आपको ले चलते हैं टेबल टेनिस की दुनिया में, जहां पर UTT अल्टीमेट टेबल टेनिस का 7वां सीजन इस वक्त चल रहा है।

0: तो बात करते हैं गोवा में चल रहे यूटीटी सीजन 7 की, जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। 14 ओलंपियंस खिलाड़ी और कुल मिलाकर के 42 प्रमुख खिलाड़ियों ने यहाँ पे भाग लिया है। कल के मुकाबले की बात करें तो अहमदाबाद एपीएल पाइपर्स वर्सेस दबंग दिल्ली टीटीसी के बीच मुकाबला हुआ, जो 6-9 से दबंग दिल्ली टीटीसी ने अपने नाम किया। पहला मुकाबला एडेरियन कैसेनफोसे वर्सेस
1: जी, बेल्जियम के एड्रिन और इजिप्ट के यूसुफ आमने सामने थे, जिसमें यूसुफ ने जीत हासिल की। तो उसके बाद ऑस्ट्रिया की सोफिया और स्पेन की मारिया शाओ आमने सामने थी, जिसमें सोफिया के हाथ जीत लगी। लेकिन हमारी नजरें जो थी भारतीय दृष्टिकोण से, वो थी साथिन नानासेकरन और पयास जैन के मुकाबले के पर, और उसमें 3-0 से अनुभवी साथियन ने जीत हासिल की। लेकिन उसके बाद पांचवें मुकाबले में भले ही फिक्स्चर का जो रिजल्ट था, जो टाई का रिजल्ट था, वो डिसाइड हो चुका था, लेकिन एक अहम मुकाबला, एक स्टेटमेंट मुकाबला था मणिका बत्रा और सुतीर्था मुखर्जी के बीच। क्योंकि आपको याद दिला दें कि मणिका बत्रा को जगह नहीं मिली एशियन गेम्स 2026 के स्क्वाड में। सुतीर्था, जिन्होंने आइका मुखर्जी के साथ मिलकर ब्रॉन्ज मेडल पिछले एशियन गेम्स में जीता था, वो स्क्वाड का हिस्सा है, और मणिका ने कल उनको 2-1 से हराया। आज का मुकाबला, आपको बता दें, कोलकाता थंडर ब्लेज और यू मुंबा चीटी के बीच खेले जाने वाला है। कोलकाता की टीम में आप जानते हैं अंकुट भट्टाचार्य, जीत चंद्रा और आइका मुखर्जी हैं, तो दूसरी तरफ मानुष शाह और नित्यश्री मणि जैसे बड़े नाम हैं। तो ये तो बात रही टीटी की। अब चलते चलते बात कर लेते हैं वर्ल्ड स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप की भी, जो कि ओंटारियो कैनेडा में इस वक्त खेली जा रही है। और वहां पर भारत के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि अनाहत सिंह, आर्यवीर देवन, अनिका दुबे, गुरवीर सिंह और यूशा नफीस, दोनों ने, इन सभी ने, पांचों ने अपने अपने मुकाबले में जीत हासिल की। और रुद्र सिंह को नाइजीरिया के खिलाड़ी के विरुद्ध वॉक ओवर मिला। तो सभी भारतीय खिलाड़ी अपने पहले पहले मुकाबले जीत चुके हैं। ये अच्छी खबर इसलिए भी है क्योंकि इस प्रतियोगिता के तुरंत बाद होने वाली है वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश टीम चैंपियनशिप। 26 जुलाई से आगाज होगा उस चैंपियनशिप का, और पिछले संस्करण में, यानी जो कायरो इजिप्ट में खेली गई थी पिछले साल, वहां पर भारतीय पुरुष टीम ने खिताब हासिल किया था। तो एक बार फिर उम्मीद के साथ भारतीय टीम इस बार उतरने वाली है, और हम सबकी उम्मीदें और आकांक्षाएं उनसे बनी हुई है। खैर, स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि इस वक्त आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। आप बने रहिए, खेल की दुनिया की खबरें फॉलो करते रहिए, क्योंकि खेल में हर रोज एक नई क्रांति आती है, जो कि हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हौसला देती है।
0: तो समय समाप्त हो रहा है, आप खेल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए खेल खिलाड़ी। फिलहाल प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मुझे अभिनव और मेरे सहयोगी दर्पण टिकिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनैतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पास कर दिया। अब यह विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगा। UCC के मुख्य प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह अब मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी तथा महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया है। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसिडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोडाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
1: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने IT, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। सोशल मीडिया पर JAAC ने 23 जुलाई को महत्वपूर्ण दिन बतलाते हुए लोगों से आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार एजेंसी ने POJK में अशांति पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदर्शनकारियों की मौत की जांच की मांग की थी। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष सिंगल्स में भारत के HS प्रणॉय को मलेशिया के लियोन जून हाउ से हार का सामना करना पड़ा है। महिला सिंगल्स में देविका सिहाग को थाईलैंड की बुसानन ओंगबा मरुंगफान ने हराया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Nishit Kumar. Both houses of parliament were adjourned for the day following repeated disruptions by opposition members over several issues, including the alleged NEET paper leak on the second consecutive day. The Lok Sabha and the Rajya Sabha each witnessed 3 adjournments due to opposition's uproar. When both the houses reassembled at 2 p.m. after the second adjournment, opposition members resumed their protests over the NEET issue.

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है।
1: नमस्कार, माय नेम इज रामवीर तवर एंड पीपल नो मी एज पॉन्डमैन ऑफ इंडिया बिकॉज आई वर्क अक्रॉस द कंट्री टू रिजुवनेट पॉन्ड्स एंड लेक्स। आई ऑल्सो टेल द फैसिनेटिंग टेल्स ऑफ आर एंशिएंट पॉन्ड्स, लेक्स एंड स्टेप वेल्स विच वर बिल्ट बाय आवर एंसेस्टर्स। Water has always been at the heart of our village, towns and cities. Even many places in India are named after

0: शासनस्य दृढः सङ्कल्पः पुनरावर्तितः। विपक्षस्य विरोधकारणात् संसदः उभयोः सदनयोः कार्याचरणम् अद्य स्थगितम्। सिक्किमस्य नामची मण्डले निर्माणाधीनस्य सुरंगस्य निपातेन 11 जनाः मृताः, बहवः सम्प्रति अन्तः निरुद्धाः सन्ति। आपतोद्धारकार्यं द्रुतगत्या प्रवर्तते। भारतोत्तर मैसोडेनिया देशौ व्यापार विस्ताराय तथा प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं दृढीकर्तुं सहमतौ अभवताम्। राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मुः इत्यनया स्कोप्ये नगरे समकक्षैः सह द्विपक्षीय वार्ता च विहिता, अपि च वाणिज्यिक पोतं प्रति संजातेन प्रहारेण चतुर्णां भारतीय नागरिकाणां निधनस्य प्रकरणे भारतेन रूस देशस्य राजदूतः आहूतः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। संसद भवनस्य जीएमसी बालयोगी प्रेक्षागृहे अद्य मंगल मिलन इत्याख्यः एनडीए संसदीय दलस्य उपवेशनम् आयोजितम्। अस्मिन् उपवेशने गठबंधन सहयोगिभिः भारतस्य सुदीर्घकालं यावत् सेवारत निर्वाचित प्रधानमन्त्रित्वस्य पदालंकरणाय प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अभिनन्दन प्रस्तावः पारितः। वार्ताहरैः सह सम्भाषमाणः संसदीय कार्यमन्त्री किरेन रिजिजुः प्रत्यपादयत् यत् उपवेशनावधौ प्रधानमन्त्रिणा मोदिना भविष्ये देशे सर्वासां परीक्षाणां प्रश्नपत्र प्रकटनरोधाय रोधनाय सर्वैः हितधारकैः सह समन्वित प्रयासानां समाह्वानं व्यधायि। सः प्रावोचत् यत् प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणेषु लिप्तानां जनानाम् उपरि दृढ कार्याचरणं सहैव देशस्य यूनां हितरक्षणाय सर्वकारस्य प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्रिणा पुनरावर्तिता। प्रधानमन्त्रिणा न्यगद्यत यत् साम्प्रतिके नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे संलिप्ताः सर्वे अभियुक्ताः गृहीताः।
1: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिलकर के करें।
0: श्री रिजिजुः प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणा मोदिना विभिन्न देशैः सह भारतस्य मुक्त व्यापार सन्धेः विषये अपि भाषितम्। उपवेशने प्रधानमन्त्रिणा मोदिना स्पष्टीकृतं यत् प्रत्येकेषु मुक्तव्यापारसन्धिषु भारतीयकृषकाणां हिताय सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदीयते। संसद्भवनस्य प्रावृट् सत्रस्य कार्याचरणमद्य नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणे विपक्षिसदस्यानां निरन्तर कोलाहलेन आगामि दिनं यावत् स्थगितम्। विपक्षस्य अवरोधत्वात् उभयोः सदनयोः कार्याचरणं यावत् तावत् वारत्रयम् अपवारितम्। प्रातः 11 यदा लोकसभायाः क्रियाकलापाः आरब्धाः तदा अध्यक्षेण ओम बिरलावर्येण प्रश्नकालस्य सञ्चालनाय बहुधा प्रयासाः विहिताः, किन्तु विपक्षिसदस्याः नीट प्रश्नपत्र गोप्यता भंग प्रकरणमादाय विरोधं प्रादर्शयन् अध्यक्षः सदनस्य सञ्चालनाय समेभ्यः सहयोगम् अयाचत्, परञ्च अविरत प्रतिरोधकारणात् लोकसभा मध्याह्नद्वादशवादनं यावत् स्थगितम्। मध्याह्ने पुनः समवेतायां लोकसभायां संसदीय समितीनां निर्वाचन प्रस्तावाः गृहीताः। पीठासीना सन्ध्यारायः अवदत् यत् शून्यकालः सदस्यानां कृते भवति, समग्रः देशः अस्य कार्याचरणस्य साक्षी वर्तते, तथापि पट्टिकाः गृहीत्वा सदस्याः सभामध्ये आगत्य विरोधोद्घोषान् अकुर्वन्, येन कार्याचरणं द्विवादनं यावत् बाधितम्। द्विवादने पीठासीनः दिलीप सैकिया इत्यसावपि सदन सञ्चालनाय पुनः आग्रहम् अकरोत्, किन्तु कोलाहलत्वात् पीठेन लोकसभा श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। सिक्किम राज्यस्य नामची मण्डलस्य समर हुंग क्षेत्रे एनएचपीसी तीस्ता चरण षट् जलविद्युत परियोजनायाः निर्माणाधीने सुरंगे अवरुद्धान् जनान् सुरक्षिततया निष्कासयितुं तीव्रोद्धारकार्यम् अहोरात्रं प्रवर्तते। उद्धारदलेन सम्प्रति यावत् एकादश मृतात्मानां देहाः समुद्धृताः सन्ति। आशंक्यते यत् ह्यः भूस्खलनकारणात् ध्वस्ते सुरंगे न्यूनतमं 25 श्रमिकाः अद्यापि अवरुद्धाः सन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम राज्यस्य मुख्यमंत्रिणा प्रेम सिंह तमांगोले इत्यनेन सह दूरभाषेण वार्तां विधाय सहायतां प्रदातुं उक्तवान्। सम्प्रति नामची मंडल प्रशासनं एनएचपीसी अधिकारिभिः एसडीआरएफ एनडीआरएफ सिक्किम आरक्षिबलेन अग्निशमन आपत्कालीन सेवाभिः तथा स्वास्थ्य विभागेन सह समन्वयं कृत्वा निरन्तरं आपतुद्धार कार्यं संचालयति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य अवोचत् यत् भारत उत्तर मैसेडोनिया देशौ लोकतांत्रिक मूल्यानां परस्परादरस्य आधारेण च स्वकीय प्रगाढ़ मैत्री संबंधं पुनः सुदृढ़ अकुरुताम्। स्कोपिये नगरे उत्तर मैसेडोनिया देशस्य राष्ट्रपतिना गोडोर्ना सिल्यानोवस्का दावाकोवा इत्यनया सह द्विपक्षीय वार्तानन्तरं वार्ताहरैः सह भाषमाणा राष्ट्रपतिः मुर्मू प्रत्यपादयत् यत् उभौ पक्षौ द्विपक्षीय सहयोगस्य समग्र व्याप्तिं समालोकितवन्तौ, सहैव क्षेत्रीय वैश्विक विषयेषु विचार विनिमयं कृतवन्तौ।
2: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: अस्य मासस्य 21 दिनांके एम वी गोल्डन लियो इति वाणिज्यिक पोते दुरापन्नस्य घातकाक्रमणस्य पृष्ठभूमौ भारतेन अद्य रूस देशस्य कूटनीतिकाधिकारी व्लादिमीर लादानोव इत्यसौ वैदेशिक कार्यमन्त्रालयम् आहूतः। अस्मिन् दुःखादाक्रमणे चत्वारः भारतीय नागरिकाः स्वप्राणान् अत्यजन्। अस्य भीषण प्रहारस्य निन्दां कुर्वन् स्वस्य गभीरां चिन्तां च प्रकटयन् वैदेशिक कार्य मन्त्रालयः स्पष्टीकृतवान् यत् एतादृशानि आक्रमणानि अन्ताराष्ट्रिय सामुद्रिक व्यापारस्य सुरक्षां स्थिरतां च क्षतिं नयन्ति। उत्तराखण्डराज्ये अश्रान्तं जलवृष्टेः तथा यात्रामार्गेषु सम्भाव्य भूस्खलन संकटस्य कारणात् अवधानतया ह्यः स्थगिता सुप्रसिद्धा चारधामयात्रा अद्य पुनः समारब्धा। इयं पावनी यात्रा मण्डल प्रशासन आरक्षीयबलेन अथ अन्याधिकारीवर्गैः सह समन्वयं विधाय सुचारुरूपेण सञ्चाल्यते। चीन ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां श्वः महिला एकल वर्गस्य भारतस्य अग्रगण्या क्रीडिका पीवी सिंधुः स्वस्य देशस्यैव उन्नति हुड्डां सम्मुखीकरिष्यति इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: इस समय ग्राम संसार कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और हमारी साथ है आरती।
1: और मेरे साथ है यमुना।
0: क्या बात है, एक दूसरे में इतना प्रेम है कि हम एक
1: एक
0: दूसरे का नाम ले रहे हैं। और
1: बिल्कुल
0: आज कार्यक्रम हमारा विशेष है आरती।
1: बिल्कुल, आज हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम है जिसमें गन्ने की पाठशाला के अंतर्गत आप सुनेंगे हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम। और हमारे कार्यक्रम का विषय है गन्ने के फसल में कीट नियंत्रण।
0: और इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक IPL की पॉलीहेलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद IPL की पॉलीहेलाइट।
1: तो आज के हमारे फोन इन कार्यक्रम का विषय है गन्ने के फसल में कीट नियंत्रण, और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ विशेषज्ञ। इनमें हमारे साथ उपस्थित हैं अभी डॉक्टर विकास कुमार मलिक, जो कि प्रभारी गन्ना उत्कृष्ट केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र बागपत उत्तर प्रदेश से हैं, और हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं ये इंडियन पोटैश लिमिटेड नई दिल्ली से।
2: बिल्कुल, और गन्ना की फसल में कीट नियंत्रण विषय से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो आप विशेषज्ञ से सीधे फोन पर बात कर सकते हैं और समस्या का समाधान पा सकते हैं। और हमारे जो फोन नंबर है पहले की तरह 2342-1081, 2342-1083, मतलब 2342-1081 और 2342-1083। और जो बाहर की श्रोता है वो कोड लगाना ना भूलें, दिल्ली का 011। आपको एक बात और बताना चाहूंगी कि हमेशा जब आप फोन नंबर मिलाते थे तो 2342-1082 और 2342-1083 आप मिलाते थे, लेकिन इस बार 82 की जगह 81 रख दिया गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 2342-1082, 2342-1083 जिस पर आप कॉल करेंगे अपनी समस्या का समाधान पा जाएंगे।
1: बिल्कुल, और चलिए अब देर नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा हम अपने विशेषज्ञों के पास, और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश पराशर।
3: डॉक्टर मल्लिक, डॉक्टर तेवतिया जी, आप दोनों का फोन इन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत।
4: धन्यवाद सर। धन्यवाद।
3: डॉक्टर साहब, मानसून तो लगभग आ ही गया है, वो अपने अगर उत्तरी भारत की बात करें और गन्ने की फसल जो खड़ी है, ये जो बारिश इस समय हो रही है, तो क्या आप देखते हो ये प्रतिकूल है अनुकूल है?
5: ये गन्ने के लिए जो बारिश है, और ये इधर मैं सोचता हूँ दूसरा दौर शुरू हुआ है, एक बार पीछे अच्छी बारिश हो गई
3: जी जी,
5: तो ये बहुत ही, ये समझ लीजिए गन्ने के लिए तो सोना बरस रहा है। और जितना इस तरह की क्लाइमेट रहेगी ये, तो गन्ना बहुत जल्दी ग्रोथ करता है
3: जी।
5: और बहुत दिनों से किसान भाई इसकी आशा कर रहे थे कि कब बारिश होगी। और इस पीछे आपने देखा गर्मी भी बहुत पड़ी थी
3: जी,
5: और गर्मी में आप देखते हो गन्ने की पत्तियां ना सुकड़ जाती हैं, तो इसलिए जो अब बरसात शुरू हुई है, तो एक तरह से समझिए कि गन्ने की फसल एकदम से लहला उठी है
3: जी,
5: और एकदम से उसकी ग्रोथ होने लगी है
3: जी। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब, जो बताया आपने कि ये जो बारिश हुई है ये फायदेमंद है, और पानी भी किसानों का बच गया है इससे। डॉक्टर साहब, आज का जैसे विषय है कि गन्ना फसल में कीट नियंत्रण, अब मीठा गन्ना मीठा है और मीठा सबने पसंद, चाहे इंसान हो या कीट हो।
4: बिल्कुल।
3: तो गन्ने की फसल में कौन कौन से कीट है जो इस समय नुकसान करते हैं?
4: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और वास्तव में किसानों के लिए उपयोगी ये टाइटल रखा गया है ताकि किसान भाइयों को एक अच्छी जानकारी और सही समय पर प्राप्त हो सके।

0: और इस समय जो यहाँ हमारा मानसून सीजन शुरू होता है उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे कीट और बीमारियाँ उसी के साथ साथ आने प्रारंभ हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण और मुख्य कीट है। जैसे हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब की हम बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो कुछ कीट ऐसे हैं जो वेल नोन हैं, जैसे टॉप बोरर है, अगोला बेधक जिसको बोलते हैं,
1: जी
0: गोब में सुंडी लगती है जिससे उसकी बढ़वार गन्ने की प्रभावित हो जाती है। उसका प्रबंधन किसान भाई पहले से ही करते आ रहे हैं, पहली, दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक का प्रबंधन वो उसका कर चुके हैं।
1: जी
0: और इस समय यदि किसी खेतों में उसका प्रभाव नजर आता है तो वो उसका प्रबंधन किसानों को समय रहते ही करना पड़ेगा। और क्योंकि एक और इस समय कंडीशन किसानों के सामने आ रही है कि खेत गन्ने के बड़े हो गए हैं, उनके ऊपर स्प्रे कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा
1: मुश्किल
0: है,
1: है।
0: तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करें ताकि हमारा जो गन्ना है वो भी सुरक्षित रहे और उसको भी हमारा टॉप बोरर जो कीड़ा है उसको हम नियंत्रित कर लें। इसके लिए सबसे अच्छे होते हैं कि आप ट्राइको कार्ड का किसान भाई इस्तेमाल करें, जो आपके नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय है या गन्ना शोध संस्थान है वहाँ पर आपको आसानी से वो उपलब्ध हो जाएंगे, या बायो कंट्रोल लैब जहाँ पर आपके नज़दीकी में उपलब्ध हो, चाहे किसी शुगर इंडस्ट्री के पास उपलब्ध हो, वहाँ से आप ट्राइको कार्ड ले सकते हैं। और ये ट्राइको कार्ड जो है ये टॉप बोरर के अंडों को, क्योंकि अगोला बेधक ने यदि उसकी थर्ड ब्रूड है और अंडा एग लेइंग कर दी है, जो उसमें से लार्वा निकलना यदि शुरू है कुछ जगह पर, वो जो ब्रूड है, जो उसकी पीढ़ी है, वो ओवरलेप कर जाती है,
1: जी
0: तो ऐसी कंडीशन में यदि वहाँ पर अंडे हैं और आपने उस पे वहाँ पर ट्राइको कार्ड लगा दिए हैं, और उसमें से जो वहाँ पर एक किसान की भाषा में बात करूँ कि एक मक्खी निकलेगी और वो मक्खी टॉप बोरर के अंडों को ढूंढकर उसको वहाँ पर समाप्त करने का कार्य करेगी।
1: जी
0: ऐसी अवस्था में किसान को ना तो खेत में स्प्रे करने की आवश्यकता पड़ेगी और वही उसको कंट्रोल कर देगा, बशर्ते सावधानी इसको लगाने में रखनी है किसान भाइयों को कि वो उसको लगाना कैसे है और लाना कैसे है,
1: जी
0: क्योंकि जो जिस भी संस्थान से वो उसको लेकर आ रहे हैं वहाँ से सावधानी पूर्वक लाना है, आइस बॉक्स के अंदर उसको रख के लाना है ताकि वो हीट मिलने के बाद बीच में ही कहीं ऐसा ना हो कि वो पोली पैक होता है पन्नी के अंदर, वे अंडे एक कागज के टुकड़े पर लगे रहते हैं, कि वो रास्ते में ही उसमें से मक्खी निकलनी शुरू हो जाए,
1: जी
0: तो ऐसी अवस्था के लिए वो उसको पोली पैक में लेके आते हैं और आइस बॉक्स में लेके आए ताकि उसको लाकर अपने खेतों पर उसको लगा सके।
1: तो सब लगाने की बात कही आपने, तो लगाएं क्या, सावधानी रखें
0: हाँ
1: लगाते
0: हाँ
1: हुए।
0: बहुत अच्छा प्रश्न है। लगाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जब गन्ने की पत्ती पर उसे लगाएं, पहले एक मैं साधारण सी बताता हूँ, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ पर कार्ड मिलता है उस पर 10 हिस्से बने हुए होते हैं,
1: जी
0: उस कार्ड के 10 टुकड़े कर लें, एक टुकड़े में एक हिस्सा वहाँ पर अंडों का आएगा, ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम के अंडे उस पर लगे रहेंगे,
1: जी
0: उसको आप निकालेंगे और पत्ती की निचली सतह पर, जहां पत्ती कर्व लेती है वहां पर पत्ती की निचली सतह पर कर्व से पहले तने की तरफ और नीचे से स्टेपल कर देंगे, कभी भी पत्ती की ऊपरी सतह पर ना लगाएं,
1: नीचे लगाना है,
0: नीचे लगाना
1: और
0: है,
1: जहां से पत्ती शुरू हो रही है वहां लगाना है,
0: वहां जहां पत्ती शुरू होती है वहां से थोड़ा सा आगे,
1: थोड़ा सा
0: जहां से
1: आगे। हाँ
0: आगे बढ़ने के क्रम में वो चलता है,
1: जी
0: वहां पर आप नीचे की तरफ उसको लगाकर और स्टेपल कर दें, और हमेशा आप उसको कुछ निश्चित दूरी पर लगाएं। जैसे आपका 1 एकड़ का खेत है तो उसमें कम से कम यदि आप अच्छा प्रबंधन चाहते हैं तो 4 कार्ड मिनिमम से मिनिमम उसमें लगाएं, और उस 4 कार्ड के 40 टुकड़े आपके हो जाएंगे जगह जगह पर, आप उनको 10 10 15 15 मीटर की दूरी पर पत्ती की निचली सतह पर स्टेपल कर दें ताकि वो उसके 10 15 मीटर के ज्यूरिडिक्शन में उसमें से वो ट्राइकोग्रामा मक्खी निकलेगी और वो उसके टॉप बोरर के अंडों को वहां पर नियंत्रित करने का कार्य करेगी।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो अगोला बेधक की बताई,
0: जी
1: और कार्यक्रम हमारा चल रहा है गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण, और आज हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हैं वो हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, आप
0: जी
1: प्रभारी हैं गन्ना
0: उत्कृष्ट
1: उत्कृष्टता केंद्र केवीके बागपत में,
0: जी
1: डॉक्टर यूएस तेवतिया मुख्य कृषि वैज्ञानिक हैं आप इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली में। बात आती है कि कैसे बात करें विशेषज्ञों से, तो विशेषज्ञों से बात करने के लिए हमारे फोन नंबर हैं, हमारे फोन नंबर हैं 23 42 10 81 2 3 4 2 1 0 8 1, 23 42 10 83 2 3 4 2 1 0 8 3। दिल्ली के स्टूडियो के नंबर हैं, आप दिल्ली के बाहर से बात कर रहे हैं या आप मोबाइल से बात करना चाह रहे हैं तो इन नंबरों से पहले दिल्ली का जो एसटीडी कोड है 011 वो आप जरूर लगाइए। डॉक्टर तेवतिया, डॉक्टर मलिक इंतजार में है कि आप अपनी समस्या इनके सामने रखें और तुरंत कार्रवाई उस पर हम कर सकें। तो
0: जी
1: डॉक्टर साहब, अगोला बेधक के अलावा और
0: जी
1: कौन सा कीट है?
0: ये अभी तो केवल एक कीट की बात हुई क्योंकि
1: जी
0: गन्ने में बहुत बड़ी क्यू है, बहुत बड़ी लाइन
1: जी
0: है।

0: कीट की। और इस समय क्योंकि जो प्रभावित करने वाली चीजें हैं, जैसे नेक्स्ट आता है मिलीबग,
1: जी
0: हमारे यहाँ पर भी वेस्टर्न यूपी में या पूरे यूपी में इस समय मिलीबग का काफी प्रकोप देखने को मिल रहा है।
1: जी
0: और इसका बहुत अच्छा पहचान करने का किसान स्तर पर तरीका है, जब भी आपके किसान के खेत में मिलीबग लगेगा, वो हमेशा खेत के एक कॉर्नर से शुरू होगा, एक कोने से शुरू होगा, और कोने में भी विशेष कंडीशन होगी तभी कोने से शुरू होगा। विशेष कंडीशन क्या होगी, या तो उसके कोने पे, उस कोने के ऊपर वहां पर कोई पेड़ होगा, या खरपतवार होंगे, या गोबर की खाद, या कोई ना कोई कूड़े का ढेर वहां पर होगा, ताकि वो पैरासाइटिक रूप से वहां पर अपना पहले से जीवन चलाता हुआ रहेगा, और जैसे ही आपकी गन्ने की फसल में पोरियां बननी शुरू होगी, वो तुरंत उस पे से निकल के बरसात के मौसम में आपके गन्ने के खेत में आना प्रारंभ हो जाएगा।
1: जी
0: ऐसी दशा में जब वो, और वो धीरे धीरे बढ़ता है,
1: जी
0: एक दिन में नहीं बढ़ेगा कि आपके खेत में एक दिन में मिलीबग लगा और एक दिन में ही उसने आपका एक
1: नुकसान
0: एकड़
1: करना शुरू कर दिया।
0: नुकसान, बड़े क्षेत्र में
1: हाँ,
0: नुकसान
1: बड़े
0: करना
1: क्षेत्र में।
0: शुरू कर दिया। वो बहुत छोटे क्षेत्र से शुरू करता है,
1: जी
0: पहले 2 क्लंप होंगे, फिर 10 क्लंप होंगे, फिर 20 क्लंप होंगे, तो वो क्लंप के आधार पर होगा।
1: डॉक्टर साहब,
0: जी
1: एक फोन आ गया, पहले फोन ले लेते हैं, उसके बाद इस
0: जी
1: पे चर्चा जारी रखेंगे हम।
0: जी जी
1: हेलो हेलो हेलो,
2: आपको नंबर,
1: नमस्कार
2: हेलो,
1: जी, कौन
2: नमस्कार जी, नरेश
1: सा बोल रहे हैं?
2: अशोक कुमार सर, छोट बुलंद सर।
1: जी अशोक भाई, बताएं क्या सवाल है।
2: सवाल हमारा ये है जी, हमारे चलिए ठीक ठाक
1: आपकी आवाज कट रही है।
2: पेड़ी तो हमारी ठीक सफाई होगी एक बार,
1: हाँ जी,
2: और पौधा हमारी 5 अप्रैल की मिलती है,
1: हाँ
2: लगभग 60 फुट चाहिए, लेकिन उसका कहीं कोट सूख रहा है, कोट
1: गोब गोब टूट रहा है,
2: या सूख रहा है, सूख
1: सूख रहा है, सूख रहा है।
2: जी।
0: जी जो आपके गन्ने की पौधे की बता रहे हैं ना, पेडी आपकी ठीक है, पौधे में गन्ने की गोब सूख रही है।
2: हाँ जी, पौधा जो पौधा, हाँ
0: जी। अच्छा, एक चीज
2: जी,
0: मैं जानना चाहूंगा कि जो गोब सूख रही है, उस गन्ने में पोरियां बन चुकी हैं अभी? एक दो पोरी नीचे बनी है या नहीं बनी है अभी? तो
2: तो बनी है जी, एक दो पौधे बताओ
0: एक दो पोरियां बन चुकी है। अच्छा, उसकी जो,
2: साहब।
0: जी आपने उसकी गोब को डाइसेक्शन चीर के देखा है बीच से, उसके अंदर कोई सुंडी या उस तरीके की कोई संभावना?
2: हाँ, चीर के देखा है जी, कोट निकल रही है यार उसमें, जी
0: सुंडी है उसके अंदर?
2: हाँ जी हाँ, गली हुई कोट,
0: उसके अंदर गली हुई कोब निकल रही है और सुंडी उसके अंदर है। तो वैसे तो वास्तविक डायग्नोस तो उससे होता है कि यदि आप उसका फोटो हमारे पास उपलब्ध होता, क्योंकि दो तीन चीजें एक साथ को रिलेट कर रही है। इस समय आपके गन्ने की गोब में यदि वांटो बोरर का अटैक है, तो वो भी उसके अंदर सुंडी घुस जाती है। और एक इसके पैरेलल टोपरोट भी एक समस्या गन्ने में चल रही है, और यह टोपरोट के कारण भी गोब अंदर से सड़ जाती है। और तीसरा, पोका बोइंग की भी टोपरोट एक फेज होती है, वो फंगस के कारण होता है, उसमें भी गोब सूख जा गल जाती है, गोब अंदर से गलती है। तो तीनों ही कंडीशन में इस प्रकार की संभावना बन जाती है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि उसके अंदर सुंडी आपको मिली है, वहां पर एक सुंडी मिली है या ज्यादा संख्या में सुंडियां हैं?
2: वो भी एक ही, हमने तो मतलब
0: एक
2: पेड़ दो की निकाल कर देखी,
1: एक दो
2: एक
1: का ही
2: निकली है
0: वो
2: और
0: एक सुंडी मिली है उसके अंदर।
1: वो कह रहे हैं हमने एक दो ही निकाल के देखे, उनमें एक एक सुंडी है।
0: एक एक सुंडी है। जी। उसके लिए आप घबराए नहीं, उसमें आप पहले किस प्रकार का केमिकल आपने इस्तेमाल किया है, कितने दिन पहले कीड़े मारने की कीट की दवाई डाली थी?
2: शुरू में तो उसमें 1 महीने की थी, उसमें
0: स्प्रे की थी?
2: कोराजन की,
0: जी जी जी
2: और मील की तरफ से मिली,
0: जी
2: और द्वारा में फिर उसमें हमने क्या फटे लगाया जी, लगभग
1: आवाज शर्मा जी, आवाज आपकी समझ में कम आ रही है थोड़ा सा, या तो बाहर निकलो या डायरेक्शन बदलो आप।
2: मैं बिल्कुल बाहर ही बैठा,
1: हाँ जी, हाँ जी
2: बाहर द्वारा
1: जी बताओ।
2: में फिर उसमें हमने फटेरा फटेरा
0: फटेरा डाली है दूसरी बार में? जी
2: तो बहुत स्वस्थ, लेकिन पौधे में 3-4-5%।

0: आवाज कम समझ में आ रही है
1: उसमें
0: डॉक्टर साहब, पर जो समझ में आया
1: जी
0: उसके हिसाब से
1: जिसमें
0: पूछूंगा।
1: हम आपको समझ पाए हैं कि उसमें आपके यहाँ पर सुंडी उसके अंदर है, आपने पहले उसमें कोराजन का स्प्रे करा, जबकि आग्रह मैं आपसे करूँगा कि कोराजन का स्प्रे ना कराएं, भविष्य में कोराजन की ड्रेंचिंग कराएं, धार बना के पौधे के तने के पास उसको डालें। और यदि आपने पौधे के केस में CTPR कोरिएंटल एरिप्रोल का इस्तेमाल किया है तो उसमें आपको दोबारा से फर्टिरा की आवश्यकता इतनी जल्दी नहीं थी, क्योंकि आपने बताया कि अप्रैल में ही आपने उसका गन्ने की बुआई की थी। ये बड़ा शॉर्ट पीरियड है, इस शॉर्ट पीरियड में, क्योंकि उसका वेटेबल पीरियड ही उस दवाई में खुद ही एफिशिएंसी इतनी है कि वह 2 से 3 महीने तक खुद ही कंट्रोल करती है। लेकिन यदि आपको प्रभाव नज़र आ रहा है तो आप उसमें सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड के साथ भी जा सकते हैं, आप उसमें इमीडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 17.8 का 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप उसमें इस्तेमाल करेंगे तो उसकी जो सुंडी है वो वहाँ पर उसको कंट्रोल करने में मदद होगी। और क्योंकि चीज़ें यहाँ पर आपने पहले से ही फटेरा इस्तेमाल कर दिया है तो अभी उसका संभावित समय, क्योंकि आपने उससे पहले करो CTPR की, फिर दोबारा से फटेरा आपने इस्तेमाल कर दी उसमें, तो उसका मैं समझता हूँ अभी तो उसी का ही समय चल रहा है, वो पौधे में सर्कुलेशन में रही होगी। यदि संभावना आगे सुंडी बढ़ने की लगती है तभी आप स्प्रे करें, अन्यथा इतनी जल्दी जल्दी स्प्रे ना करें, नहीं तो पौधे उस कीट के अंदर रेजिस्टेंसी पैदा हो जाएगी जिससे दवाइयों का प्रभाव कम आना शुरू हो जाएगा।
0: अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। डॉक्टर साहब मिली बग पे आप बता रहे थे किसानों को, तो
1: जी,
0: चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
1: हाँ, तो मिलीबग के लिए मैं बता रहा था कि कॉर्नर से शुरू होता है और धीरे धीरे फैलता है, आपके 2-3 झुंड से शुरू होगा, फिर 5-6 झुंड, फिर उसके बाद वो अपना क्षेत्र बढ़ाता है। लेकिन इसमें किसान भाइयों को लगता है कि दवाइयाँ कारगर सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि वो स्प्रे करते हैं, उसके स्प्रे करने में एक तो किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप उसके साथ में सर्फेक्टेंट जरूर लगाएं, स्टीकर उसके साथ अवश्य लगाएं। उसका लॉजिक बताता हूँ, दोनों चीज़ें हैं, एक तो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड लेना है, जब भी आप इसमें इस्तेमाल करेंगे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें, मिलीबग को कंट्रोल करने के लिए इमीडा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डाइमेथियोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एसीफेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी दवाइयाँ मिलीबग को। लेकिन इनसे ज़्यादा, दवाइयों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिस झुंड के अंदर उसमें मिलीबग लगा है उसकी आपको पत्ती उतारनी है। यदि आपके 5 झुंड में, 10 झुंड में या 8 झुंड में लगा है, सबसे पहले उन सभी गन्नों की नीचे की सारी पत्तियों का, मतलब है लीफ शीथ सहित, लीफ शीथ का मतलब है वो पत्ती जो गन्ने के तने पर चिपकी रहती है वो भी हटानी है, क्योंकि ये मिलीबग गन्ने के तने के ऊपर बैठा रहता है लीफ शीथ के अंदर। तो ऐसी दशा में लीफ शीथ के अंदर तक दवाइयों का जाना, फिर वहां पे प्रॉपर उसकी बॉडी में प्रवेश करना, क्योंकि मिलीबग स्वतः ही, आप देखेंगे किसान की भाषा में बात करूं, क्यों वैक्स कोटेड एक मोम सा उसकी बैक साइड पे होता है, और यदि हम उसमें सर्फेक्टेंट मिला देंगे तो वो दवाई पौधे के शरीर में जल्दी से प्रवेश करेगी, उस कीड़े के शरीर पर जल्दी से प्रवेश करेगी, और पत्तियां हम हटा देंगे तो निश्चित तौर से हम मिलीबग से राहत ले पाएंगे। और यदि पत्तियां आप नहीं हटाते हैं तो किसी भी दवाई का उस पर असर होने की संभावना कम हो जाती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वहां पर आप पत्तियों को रिमूव करें।
0: तो किसान बहनों भाइयों, ये ध्यान आपने रखना है, अगर मिलीबग का प्रकोप दिखाई दे रहा है तो डॉक्टर ने जो सावधानियां बताई है, जो दवाई बताई है, उसको उसी तरीके से लगाना है, पत्तियां भी हटानी है ताकि असर फसल पे ज्यादा से ज्यादा हो और आप नुकसान से बच सकें। जैसा आप जानते ही हैं, आज का जो कार्यक्रम है उसका विषय है गन्ना फसल में कीट नियंत्रण। डॉक्टर विकास कुमार मलिक, डॉक्टर US तेवतिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोई भी समस्या हो आपकी गन्ने से संबंधित, बेझिझक आप फोन कर सकते हैं 23 42 10 81, 23 42 10 83, ये हमारे फोन नंबर हैं। इनसे पहले जब दिल्ली से बाहर से फोन करें या आप मोबाइल से फोन करें तो दिल्ली का जो STD कोड है 0111, ये जरूर लगा लें आप। डॉक्टर साहब तेवतिया जी से पूछना चाहूंगा, जैसे अभी बात आई दवाई की, खाद की, ये बड़ी समस्या रहती है जो किसान है, अक्सर हम, आप भी सुनते हो या फोन भी करते हैं, दवाई नहीं मिलती जी, खाद नहीं मिलती जी। तो IPL यानी आपकी तरफ से किसानों को क्या क्या सुविधा है और कैसे वो वहाँ उस का फायदा उठा सकते हैं?
2: देखो नरेश भाई, आप जब सुनोगे कि IPL क्या कर रही है किसानों के लिए
0: जी
2: तो आपको बड़ी खुशी होगी। देखिए IPL ने अभी अपने मॉलिक्यूल शुरू किए हैं अपनी ब्रांड में
0: जी
2: पेस्टिसाइड के,
0: जी
2: और जो जो गन्ने के लिए अभी पहली प्रथम चरण में वो ही शुरू किए हैं। जैसे ये किसान भाई इसका

0: CTPR है
1: जी
0: जो कोराजन लेते हैं, हमारा वो IPL पॉटजन के नाम से है, तो वो हमने बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट किसानों के लिए उपलब्ध कराया है। जो फटेरा कहते हैं हमारा पोटेरा है, पोटेरा हमारा पोटास की कंपनी, तो उससे
1: जी
0: हमने नाम लिया है। तो वो आप ये देखेंगे, अगर हम मार्केट में देखेंगे, इतनी सस्ते दामों में किसानों को 50% जो मार्केट में उपलब्ध है उससे 50% पे हमारी बहुत अच्छी गुणवत्ता वाले मॉलिक्यूल हमारे किसानों के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। सबसे पहला तो कंट्रीब्यूशन ये है कि किसान भाई जो नकली दवाओं के चक्कर में फंस जाते हैं, तो उससे उन्होंने उनको पूर्ण छुटकारा मिल गया, बिल्कुल बेधड़क होके निश्चिंत होके IPL के पेस्टिसाइड डाल सकते हैं।
1: जी
0: हमने सभी शुगर मिल में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खुलवाए, उस पर एक ही जगह पे उनको सब चीज उपलब्ध है, पूरे फर्टिलाइजर, क्योंकि हमारी कंपनी तो केवल ये तो है नहीं कि भाई शुगर की कंपनी है,
1: जी
0: और जो कंपनी शुगर की मिल है उनके तो फर्टिलाइजर है नहीं, हमारे पूरा रेंज फर्टिलाइजर का है हमारा, उनको सबको उपलब्ध करा रहे हैं, उनको क्रेडिट पे उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी बात,
1: अच्छा
0: हाँ, क्रेडिट पे उनके गन्ने का जब पर्ची पड़ेगी उससे पैसे दे सकते हैं वो, तो अभी उनको जो है बिल्कुल ये लगाइए कि पर्ची उनका चढ़ा लेंगे ना, और बाद में उनसे लेंगे, तो ये सारी सुविधाएं दे रहे हैं। हमारा जो केन विभाग है उनके खेतों पे जा जा के आइडेंटिफाई करता है कि भाई किस कीट की जरूरत है, किसकी ये किस दवाई की
1: कीटनाशक की
0: जरूरत है,
1: जरूरत है।
0: कीटनाशक की जरूरत है, किस क्या बीमारी लगी हुई है, उनको बिल्कुल बढ़िया तरीके से वहीं पे उनको पहुंचाते हैं उनको दवाई। तो ये सुविधाएं सारी वो दे रही हैं। और देखिए, सबसे बड़ी सुविधा तो हम ये दे रहे हैं कि देखिए IPL ने गन्ने की पाठशाला शुरू कर रखी है, उनको यहाँ से हम अच्छे अच्छे वैज्ञानिक बुलाते हैं और उनको जानकारी देते हैं कि
1: घर
0: भाई अपने
1: बैठे
0: अपने फसलों में ये आप करिए, उनको ये देखिए, हम वैज्ञानिक को फोन के द्वारा उनसे मिलवाते हैं और महीने में 2 बार मिलवाते हैं, तो वो अपनी खुल के अपनी समस्या को
1: रख
0: रखें
1: सकते हैं
0: और घर बैठे समाधान पाएं।
1: जी।
0: हाँ
1: और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर तिवती आपसे। अब लौटते हैं अपने जो मेन मुद्दा है, कीट की बात करते हैं। तो डॉक्टर साहब एक बात मेरे कीट और भी पूछूं, उससे पहले मेरे दिमाग में आई एक बात।
0: जी जी
1: बरसात का सीजन है डॉक्टर साहब,
0: जी
1: है
0: जी
1: कीटनाशक आप बता रहे हो भाई ये छिड़को ये छिड़को, और मान लो छिड़क दिया
0: जी
1: और बारिश होगी तो
0: जी
1: बेकार हो गया।
0: हाँ,
1: हाँ
0: देखिए इसमें ये है कि ये ध्यान रखना पड़ेगा किसान को कि जिस दिन बारिश होने का ना हो, संभावना ना
1: संभावना
0: हो,
1: हो गया आज नहीं हो
0: उस
1: रही
0: दिन करे कम से कम 4-5 घंटे उसको रुकना चाहिए कि बारिश ना
1: ना
0: हो।
1: हो।
0: और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो बरसात और जो ह्यूमिडिटी, गर्मी, जो मौसम ये बनता है जो गन्ने के लिए अच्छा है, वो कीटों के लिए
1: ये
0: भी
1: भी
0: अच्छा, उसी समय कीट भी ज्यादा आते
1: अच्छा है।
0: हैं,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: वो उनको भी अच्छा लगता है। तो इस
1: हाँ
0: समय क्या है कि अपनी फसलों से किसानों को बात करनी चाहिए। बात कब करेंगे भाई? बात जब खेत पे
1: खेत
0: जाओगे
1: पे जाओगे।
0: और अंदर तक जाओ, ये नहीं
1: हाँ
0: एक तरफ से ये आधे गन्नों से तो बात कर ली, वो तो
1: हाँ
0: बेचारे देख रहे हैं कि मेरा मालिक मेरे पास भी आएगा भाई,
1: हाँ
0: चारों तरफ चक्कर लगाएं और हो सके तो बीच में भी
1: बीच में भी
0: थोड़ा,
1: देखे। हाँ
0: जहां पे आपकी बंधाई हो गई है अब तो घुस सकते हैं
1: घुस
0: उसमें,
1: सकते हैं।
0: तो बीच में भी उनसे बात करके आए, तो वो बताएगी कि मेरे को भाई ये चाहिए, तो वो सुने। तो देखिए बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि भाई खेती जब ही होती है जब उस पर रोजाना पैर रखा जाता है
1: बिल्कुल सही
0: अपनी जमीन पे अपने खेतों पे,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये चीजें ध्यान रखें किसान भाई, तो बिल्कुल उनकी फसल बढ़िया होगी, सब चीजों का ध्यान रखें। और गन्ना ऐसी फसल है, और हमारे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के तो किसान गन्ना गन्ना ही बोते हैं, 90 से लेकर 95% तक उनका तो गन्ना होता है, तो गन्ना ही उनकी तो रोजी रोटी है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो भाई उनसे तो उनको उसके अलावा कोई काम नहीं, तो उसमें तो जा जाके उनको बात करनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और देखिए अब उन्होंने अपनी फसल वो बड़ी कर रखी है,
1: जी
0: जैसे बच्चे को पालते हैं ना, तो पूरी फसल अब दो
1: बिल्कुल
0: 3 महीने बाद कटने लगेगी, इस समय उसका ज्यादा ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय बंधाई टाइम पे करें, नहीं तो गिर गई तो आपकी मेहनत बेकार गई।
1: बिल्कुल
0: तो ये चीजें ध्यान रखना, और मैं किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अपने खेतों पर बराबर जाएं, उनका ध्यान रखें, कीटों को देखें, पत्तियों को पलट पलट के देखें, कोत को देखें, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे मिलीबग वो कोत में भी अंदर तक जाती है, वो घूमती रहती है, छोटी छोटी चींटियां होती
1: जी जी
0: हैं, तो उनको भी ध्यान रखें, और जितनी जल्दी वाच करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपने नुकसान से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ठीक वैसे ही हमारी फसलों का हमें ध्यान रखना है, और बड़े

0: सादे शब्दों में डॉक्टर साहब ने बता दिया कि भाई बात करो, जाके फसल को देखो, उससे बातचीत करो, क्या समस्या है। बच्चों से भी पूछते ही हम क्यों
1: जी
0: रो
1: जी
0: रहा है भाई,
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल
0: समस्या है। तो वैसे
1: बिल्कुल
0: ही ठीक आपको अपने फसलों का ध्यान रखना है डॉक्टर साहब। अब
1: जी
0: कीट पे आते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं उसमें बल्कि एक मिस कर रहा था, क्योंकि हम
0: जी
1: केमिकल की तरफ रुझान ज़्यादा रखते हैं, हमारे किसान भाई को
0: जी
1: भी
0: जी
1: केमिकल ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसके साथ साथ एक सुझाव और देना चाहूँगा कि जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक विकल्प ज़रूर अपना के देखें। एक नीम ऑयल आता है जो मिलीबग या सकिंग इंसेक्ट, रस चूसने वाले जो कीड़े होते हैं उनके लिए बेहद अच्छा कारगर सिद्ध होता है। तो 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से नीम ऑयल का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो नो डाउट, और वो ऐसा एक तरीके का बायो पेस्टिसाइड है कि आप उसे इस्तेमाल करेंगे उसके एक एक महीने के इंटरवल पे 2 बार आप इस्तेमाल कर देंगे तो हो सकता है आपके खेतों में सकिंग इंसेक्ट का प्रकोप ही कम हो।
0: जी, एक फोन आ गया डॉक्टर साहब, फोन देखते हैं किसका है। हेलो,
1: जी
0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं
1: सर जी, मैं ललित कुमार बात कर रहा हूँ, जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। सर
0: जी? ललित भाई बताइए क्या सवाल है।
1: जी, हमारी जो पौधा की जो गन्ने की फसल है, इसमें ऊपर जो थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है फिलहाल में। हमने इसमें दवाई भी लगा दी है, कीटनाशक भी, लेकिन
0: जी कितने दिन पहले लगाई?
1: ये लगभग सर अभी 15 दिन हो गए लगे हुए।
0: अच्छा, 15 दिन हो गए। और जो कीट लगा है फिलहाल वो किस जगह पर लगा है? उसमें
1: सर ऊपर फुलक में,
0: मतलब में सुंडी है उसकी गोब के अंदर या पत्ती पर कोई काटने का है?
1: सर जैसे आप कोशिश ये कैसे ये है, जैसे आप गन्ने के पूरा पौधा हुआ
0: जी
1: और ऊपर जाकर के वो बिल्कुल शंकुआ सा बन जाता है।
0: देखो, 2-3 चीजें हैं। आर्मी वर्म का भी अटैक हो सकता है, कुछ जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन उसमें उसका काटे हुए का जैसे मलमूत्र टाइप होता है, वहाँ हिस्से कुछ कटे हुए चूण सा टाइप पड़ा रहेगा, एक तो वो कंडीशन होती है। एक टॉप बोरर लगा है तो उसके अंदर गोब के अंदर वो सुंडी उसके अंदर चली जाएगी उसको खाते हुए। तो
1: जी,
0: उसमें किस प्रकार के लक्षण आपके खेत में नजर आ रहे हैं? पौधा है या पेड़ी है?
1: पौधा है सर, पौधा वाले
0: पौधा
1: पौधा है।
0: है। कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं? गोब सूख रही है, गोब
1: गोब,
0: उसके
1: हाँ ये सर सूख रही है।
0: ऊपर से गोब सूख रही है।
1: हाँ,
0: एक वो आपने गन्ना चीर के देखा है, अभी उसकी गोब को चीर के देखा, उसके अंदर सुंडी है या नहीं?
1: सर जी ये नहीं देखा अभी।
0: हाँ, चीर के नहीं देखा
1: है
0: डॉक्टर
1: ना,
0: साहब।
1: देखो बगैर चीर के देखे 2-3 चीजें हैं, क्योंकि इस समय बीमारी भी टॉप रोट एक बीमारी भी चल रही है, उसमें भी गोब ऊपर अगोला सड़ जाता है तो उसकी भी जी
0: संभावना उसमें हो सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले तो कोई भी आप जाते हैं, पर मेरा तो आग्रह आपसे यही रहेगा कि आप दुकान पे भी जाएं दवाई लेने के लिए तो पौधा लेकर जाएं, और इसी प्रकार यदि यहाँ पे आप उसे डायग्नोस कर लेंगे, पहले एक बार डाइसेक्शन कर लेंगे तो निश्चित तौर पर उसका सही इलाज आप ले पाएंगे, अन्यथा दिक्कत उसमें रहेगी कि संभावित तौर पे उसका इलाज बता पाना उतना अच्छा नहीं रहेगा। ललित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, अभी थोड़ा ब्रेक के लिए रुकते हैं।
1: जी
2: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में, इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ। किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद।
3: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें IPL की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री मोदी ने परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ

0: कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश ने सदन के कामकाज को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के सदस्यों ने विरोध जारी रखा। हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। वैश्विक चुनौतियों और भू राजनीतिक उथल पुथल के बावजूद भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता UCC विधेयक पारित कर दिया। अब ये विधेयक राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में UCC लागू हो जाएगी। UCC के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी, महिला और पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DK उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। गीतांजलि ने रविवार को उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने सरकारी अस्पताल में चल रहे उनके इलाज में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लिमिटेड NHPC ने कहा है कि सिक्किम के नामची जिले के स्मरदुंग स्थित NHPC तीस्ता छठा चरण जल विद्युत परियोजना में हुई घटना के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। NHPC ने आज एक बयान में कहा कि सुरंग के अंदर 25 कर्मी फंसे थे, जिसमें से अब तक 11 की मौत हो चुकी है। NHPC ने बताया कि परियोजना दल जिला प्रशासन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, स्थानीय अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर चल रहे बचाव कार्यों में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपिये में राष्ट्रपति गोर्डाना सिलजोनोव्स्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले स्कोपिये में राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास विला वोडने में राष्ट्रपति मुर्मू का औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति को औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति मुर्मू की ये यात्रा किसी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तरी मैसेडोनिया की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर कल से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। वहीं पुरुषों में आर्यवीर दीवान, युषा नफीस और गुरवीर सिंह की तिकड़ी भी पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में पहुंच गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुने फोन इन कार्यक्रम का शेष भाग।
2: तो आपका हमारे फोन इन कार्यक्रम का और हमारे इस कार्यक्रम के प्रायोजक है इंडियन पोटाश लिमिटेड।
3: किसान भाइयों सुन लो मेरी बात, किसान मित्र से ना है बढ़िया खाद, IPL की किसान मित्र जैविक खाद। मुख्य सूक्ष्म तत्वों से मिट्टी को जीवंत बनाए, ठोस हो या तरल रूप में इस खाद से फसलें लहराए। फसलें तुम भरपूर उगाओ, खूब कमाओ, मौज मनाओ किसान भाइयों।

0: आईपीएल की किसान मित्र जैविक खाद।
1: अपने खेतों में हरियाली और जीवन में खुशहाली के लिए हमेशा इस्तेमाल करें आईपीएल की जैविक खाद किसान मित्र, जो कि उपलब्ध है रोहाना कला शुगर मिल पर। शीघ्र बुक करें।
2: आप सुन रहे हैं हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गन्ने की पाठशाला। इसका विषय है गन्ने की फसल में कीट नियंत्रण।
3: और आज के हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर विकास कुमार मलिक, प्रभारी गन्ना उत्कृष्टता केंद्र केवीके बागपत उत्तर प्रदेश से। और दूसरे हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह तेवतिया, मुख्य कृषि वैज्ञानिक इंडियन पोटाश लिमिटेड नई दिल्ली से। और गन्ना की फसल में कीट नियंत्रण से विषय संबंधित जो भी आपकी कोई समस्या हो तो आप सीधे विशेषज्ञ से जुड़िए। और जो हमारा फोन नंबर है,
2: हमारे फोन नंबर है 23 42 10 81, हमारा दूसरा नंबर है 23 42 10 83। तो दिल्ली से बाहर के जो भी श्रोता हमें कॉल कर रहे हैं तो आप 011 अवश्य लगाएं।
3: चलते हैं स्टूडियो की तरफ।
4: डॉक्टर तेवतिया, डॉक्टर मलिक जी, आपका पुनः कार्यक्रम में स्वागत।
5: धन्यवाद जी। धन्यवाद।
4: और आपसे बातचीत का सिलसिला शुरू करूं, एक बार धीरे धीरे फोन नंबर और बता दूं जी, ताकि जो हमारे सुनने वाले बहन भाई हैं, किसान हैं, वो आराम से नोट कर लें। अगर कोई समस्या गन्ने की फसल में उनको आ रही है, दिखाई दे रही है, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा ना कि बातचीत करो फसल से
5: जी,
4: तो बातचीत करते टाइम अगर फसल ने कुछ बता दिया कि ये समस्या है मेरे साथ
5: जी,
4: तो वो हमारे तक जरूर पहुंचाइए। फोन नंबर 23 42 10 81। दूसरा नंबर है 23 42 10 83। स्टूडियो के नंबर हैं, दिल्ली के हैं, तो इससे पहले आप जो दिल्ली का स्टडी कोड है 011 आप जरूर लगाइएगा, ताकि आप सीधे ही विशेषज्ञों से बात कर सकें। डॉक्टर मलिक जी, हम चर्चा कर रहे थे कीट की, क्योंकि कीट जो है वो बहुत नुकसान पहुंचा देता है फसलों को, खासतौर पर गन्ने की बात हमने करी। मिठास
5: जी,
4: है, मिठास पर सब आकर्षित है।
5: बिल्कुल बिल्कुल,
4: तो
5: बिल्कुल,
4: कीट भी होते हैं।
5: बिल्कुल, बिल्कुल।
4: तो और कौन कौन से कीट हैं जो इस समय नुकसान पहुंचा सकते हैं?
5: इसमें जैसे हमने अभी बात कर ली है, मिलीबग के बारे में मैं बताया था, और उसमें हमने सजेस्ट भी किया कि आप नीम ऑयल का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा प्रभावी रहेगा
4: जी।
5: और मैं भी तेवतिया, डॉक्टर तेवतिया जी की ही सलाह आप लोगों से देना चाहूँगा, जब भी आप फ़ोन करें या कहीं भी दवाइयाँ आप लेने के लिए जाते हैं किसान भाई, मेरा आग्रह है कि आप या तो कृषि विशेषज्ञ से पहले सलाह ले लें, उसके बाद दवाइयाँ लाएं
4: जी,
5: या पौधा लेकर ही जाएं। जब तक डायग्नोस नहीं होगा, क्योंकि मेरे केंद्र पर जो मेरे पास किसान भाई आते हैं, या मैं किसी बड़ी गोष्ठी में जाता हूँ, मेले में जाता हूँ, तो मैं किसान से विशेष आग्रह करता हूँ कि कृषि की गोष्ठी है तो गन्ना आपके हाथ में
4: होना चाहिए,
5: और या गन्ने की गोष्ठी है या एग्रीकल्चर की गोष्ठी है तो प्रभावित पौधा, खराब पौधा आपके हाथ में हो, ताकि डायग्नोस करके चीजें वहां बताई जा सके। अदरवाइज ज्योतिष विद्या लगानी पड़ेगी, क्योंकि सिम्टम हमारे किसान भाई वहां पे उस लेवल पे नहीं बता पाते हैं, और तीनों चीजें एक साथ मिक्स हो जाती है। किसान भाई से पूछो किस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं जी, सारा गन्ना पीला पीला हो गया, सारा गन्ना सूख रहा है।
4: तो सब इस पर चर्चा करेंगे। एक फोन ले लेते हैं
5: जी।
4: हेलो।
6: हेलो साहब, नमस्कार।
4: नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
6: सर, मैं करतार सिंह बोल रहा हूँ, अलवर हरियाणा से।
4: जी करतार भाई, बताइए क्या सवाल है?
6: तो हमारा सवाल है जी, मैं गन्ने की खेती करता हूँ।
4: हाँ जी।
6: तो सर, हमारी फसल में ग्रोथ कम है
5: जी।
4: अच्छा।
6: हमने उसमें गाय का गोबर, देसी खाद डाला हुआ गाय के गोबर का।
7: करतार जी, ये बताइए कि आपने अपने मिट्टी की परीक्षण कराए, टेस्ट कराई है मिट्टी?
6: सर, मिट्टी की जांच तो नहीं कराई।
7: हाँ देखिए, ये बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमें भी ज़रूरत पड़ती है मनुष्य को टाइम टाइम पे अपना ब्लड की जांच कराने के लिए, इसलिए मिट्टी की जांच कराई, और मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की जांच कराई है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट की जांच कराई है, NPK की जांच कराई है, और PH और EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और PH की जांच कराई है। जब तक आप जांच नहीं कराओगे, देखो सही से सलाह देना बड़ा मुश्किल है। हम आपको बिना देखो, बिना देखे मरीज को अगर डॉक्टर दवाई देने लगे और गलत दवाई हो जाए, तो आप ये कहेंगे कि भाई इन्होंने गलत सलाह दे दी। तो आप मिट्टी टेस्ट कराइए, और मिट्टी टेस्ट करके कृषि विशेषज्ञ से किसी से सलाह लीजिए, और उसके बाद में कोई भी उपचार कीजिए। देखिए, जो आपकी अगर ग्रोथ कम है तो वो मिट्टी की ही प्रॉब्लम है फिर।

0: आपकी बीज तो आपने, मैं सोचता हूँ कि बीज तो अच्छा ही डाला होगा आपने।
1: वो वैरायटी है 0238।
0: 0238 बहुत बढ़िया वैरायटी है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी है, तो उसकी तो कम ग्रोथ है नहीं, सबसे सबसे पहले चलती है वो, तो सबसे ऊंची चलती है, तो प्रॉब्लम जमीन में हो सकती है। आप मिट्टी टेस्ट कराइए और हम आपको बिल्कुल बढ़िया समाधान बताएंगे।
1: ठीक है सर।
2: करतार भाई
1: अच्छा
2: बहुत
1: सर,
2: बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। हाँ
1: हमने ईंट में अंदर घुसते ही सर्वे किया है जी, तो रोग तो कोई है नहीं जी, कैसा भी बिल्कुल
0: पत्तियां पीली हैं,
1: हरी कलर पत्ती है जी, बिल्कुल तोता जैसा कलर है जी।
0: और ग्रोथ कम है,
1: हाँ जी, बस ग्रोथ कम है,
0: कब बोई थी?
1: ये पेड़ी है जी सर,
0: पेड़ी है। अच्छा,
1: अभी कम गला ज्यादा ज्यादा 4-4 फुट का हुआ है।
0: और मोटाई कैसी है,
1: मोटाई अच्छी है जी बिल्कुल। क्या
0: और टिलरिंग कैसी है, ब्यांत
1: जी, ब्यास
0: ब्यांत ब्यांत?
1: होगा जी करीब 5 इंच के करीब।
0: अच्छा, अभी 6 इंच ही हुआ है ब्यांत। ब्यांत होता है कल्ले जो निकलते हैं नीचे से। अच्छा
1: कल्ले तो बहुत है जी, हाँ जी कल्ले तो मतलब ये समझो जुड़ गए 28 पीस 28 पीस है।
0: अच्छा तो हो सकता है ये भी कारण हो, कि ज़्यादा कर ले हैं तो वो सारे ही न्यूट्रिएंट ले रहे हैं वो, तो एक एक को कम मिल रहे हैं, तो इसलिए भी ग्रोथ कम हो सकती है। दूसरा ये है कि पेड़ी आपकी पौधा करना कटा कब था ये? अप्रैल
1: कटा जी अप्रैल में, हाँ
0: में कटा है। अच्छा, तो उसके बाद में आपने खाद पानी अच्छी तरह दिया, उसमें जुताई वगैरह करवाई इसकी?
1: सर, मैंने इसमें वो पताई हटा के इसको ट्रैक्टर से जोतवाया जी, पहले हल से ट्रैक्टर के हल से ही जोतवा के फिर इसमें 2 ट्राली देसी खाद डाला गाय के गोबर का, आधा एकड़ जमीन है जी मेरे पास, और वो गाय के गोबर की जो डाला था मैंने फसलों से डाला था जी, कूट कूट पे। हाँ
0: अच्छा,
1: जी, तो
0: तो जो गोबर था वो सड़ा हुआ था या कच्चा था?
1: नहीं बिल्कुल सड़ा हुआ जी,
0: अच्छा, तो आपने तो हमारे हिसाब से तो सारे काम सही कर रखे हैं।
1: और फिर उसमें जी फावड़े से 3 खोदी लगाई है पीछे। सर
2: बहुत बढ़िया।
0: बहुत बढ़िया, तो आप एक काम करिए, आप कौन सी शुगर मिल में देते हो?
1: शुगर मिल पलवल है जी, कोऑपरेटिव शुगर मिल
0: आप वहाँ जो गन्ना विशेषज्ञ होगा कोई, उसको एक बार बुला के अपना खेत दिखाइए,
1: ठीक है सर।
0: क्योंकि ये जब जब खेत आपको पूरी तरह देखेगा, जब विशेषज्ञ, तभी बता सकता है। ठीक है, ओके जी, ओके,
2: करतार भाई बहुत
0: ओके,
2: बहुत धन्यवाद फोन करने
1: धन्यवाद
2: के लिए आपका।
1: जी।
2: और डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि भाई जो है आप पौधा जो है गन्ने का, जो इसमें बीमारी हो, कीट लग रहा हो, तो वो लेके आओ,
3: जी
2: ये ठीक वैसे ही हो गया जैसे मरीज को डॉक्टर के पास पहुंचा दिया आपने।
3: बिल्कुल बिल्कुल
2: हाँ,
3: बिल्कुल
2: ये
3: सर,
2: नहीं कि डॉक्टर के पास गए और बताया कि जो हमारे बच्चे का ये हो रहा है, ये
3: जी
2: हो गया
3: जी
2: है, तो
3: जी
2: डॉक्टर साहब ने भी जो बात कही है यही कही है कि
3: बिल्कुल
2: आप
3: बिल्कुल
2: कम से कम डॉक्टर तक तो पहुंचे
3: बिल्कुल
2: जी। डॉक्टर साहब बताइए
3: जी,
2: अपना।
3: नहीं वही चीज,
2: जी जी बोलिए।
3: वही चीज़ें थी कि हम जब डायग्नोस करेंगे तो चीज़ों को अच्छे से तभी देख पाएंगे जब हमारे पास पौधा होगा। वही मैं सुझाव किसान भाइयों को देता हूँ। और दूसरा, जो वर्तमान समय चल रहा है, इस समय में हमारे कुछ क्षेत्रों में माइट भी देखने को मिल रही है, जिसको हम वेब माइट, रेड माइट या अन्य कई प्रकार की माइट्स होती है, जो वह हमारे यहाँ पर देखने को मुख्य रूप से मिल रही है, वो वेब माइट है। पत्ती की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के डॉट डॉट डॉट डॉट डॉट से लगाते हुए वो
2: जी
3: चलती है, और जिसके अंदर वो अपने वहाँ पर शिशु देती है, बच्चे, उसके अंडे बच्चे वहाँ पर उसके उसमें होते हैं, और वे वहाँ पर रस चूसने के कारण पत्तियाँ नीचे की तरफ से, क्योंकि वो क्लोरोफिल का वहाँ पर चीज़ें क्लोरोफिल को खा लेते हैं, तो ऊपर फिर रेड कलर का पिगमेंटेशन बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है, तो पत्तियाँ ऊपर से लाल नज़र आनी शुरू होती है,
2: जी
3: नीचे सफ़ेद रंग के, और लाइनर जो मिडरिप होते हैं, जो मध्य सिरा होती है, उसके बराबर एक सीधी लाइन के रूप में डॉट डॉट डॉट से लगते हुए चले जाते हैं, जिसको हम माइट बोलते हैं। पहला तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि यदि इस प्रकार की समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो उन खेतों की सबसे पहले तो मेड़ को साफ करें, खरपतवार को नियंत्रित करें,
2: जी
3: क्योंकि क्या हो रहा है, एक काफ़ी किसान भाइयों के फ़ोन कॉल भी आते हैं, या मैं क्षेत्र भ्रमण करता हूं, तो उसमें देखने को ये मिलता है कि किसान भाई स्प्रे करते हैं, उसका कंट्रोल होता है माइट का, लेकिन 10 दिन 15 दिन के बाद पुनः उसका असर आना शुरू हो जाता है। एक बड़ी अच्छी कॉमन सी बात हमारे किसान भाइयों के बीच में है
2: जी
3: कि दो खेत हैं उनके बीच में एक मेड़ है।
2: जी
3: मैं अपने खेत पे स्प्रे करता हूँ, पड़ोसी अपने खेत पे स्प्रे करता है, मेड़ पे कोई सा नहीं
2: कोई
3: करता
2: नहीं
3: है।
2: करता।
3: तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि वो मेड़ पे अल्टरनेट होस्ट के रूप में वहां पर रहती है
2: हाँ
3: और आपने स्प्रे किया, 10 दिन तक आपके खेत में असर है, उसके बाद वो माइग्रेट करके फिर वहां पे आ
2: खेत में
3: जाती
2: पहुंच
3: है।
2: जाएगी।
3: और ऐसे ही पड़ोसी का है
2: जी
3: कि हमने मेड़ को छोड़ दिया है। मेरा किसान भाइयों से सबसे पहले आग्रह यही है कि या तो उसकी मैं उस मेड़ को, खरपतवार को वहां से
2: साफ कर दें वहां।
3: साफ कर दें, और या दूसरा विकल्प यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, परिस्थितियां ऐसी नहीं है, तो आपसे आग्रह है कि जब अपने खेत पे स्प्रे करें तो उस मेड़ के ऊपर भी स्प्रे करें, वो अल्टरनेट होस्ट वहां पर ना छोड़ें कि वो उसके ऊपर वो आपकी वो माइट वहां पर रह जाए और उसके बाद वो पुनः आपके खेत पे अटैक कर पाए। तो इसलिए उसके लिए अलग अलग चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पहला तो यही है। दूसरा, यदि पत्तियों पर ज़्यादा प्रभाव आपको नज़र आ रहा है और बॉर्डर पे बाहर की तरफ जहाँ खरपतवार होंगे, चाहे खेत के अंदर हो चाहे बाहर, वहीं पर ज़्यादा असर आएगा, उन पत्तियों को यदि हटा पाना संभव हो तो सबसे अच्छा विकल्प तो वही है कि उन पत्तियों को, पौधे की पत्तियों को हटा दें, उन पत्तियों को ऊपर की 4 पत्तियों तक वो माइट ज़्यादातर नहीं पहुंचती है, हमेशा जो नीचे कर्व लेना
2: नीचे
3: शुरू करती है उन्हीं
2: जी
3: पर ही वो उसका असर ज़्यादा होता है, ऊपर की खड़ी हुई पत्तियों पर कम होता है। इसलिए उन नीचे की पत्तियों को जो प्रभावित है उन्हें हटा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यदि नहीं हटा पाते हैं तो प्रोपोगाइट करके एक दवाई आती है एकेरिसाइट की, आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी लाभ मिलेगा। एक बार उसका इस्तेमाल करें, दूसरी बार में आप सल्फर और इमिडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको माइट में राहत मिलेगी। निश्चित तौर पर 2 बार आपको उसमें कंट्रोल करने के लिए प्रयास करना होगा, लेकिन मेरा किसान भाइयों से पुनः यही आग्रह है कि जब भी स्प्रे करें माइट के लिए विशेष तौर पर मेड़ को जरूर कंसिडर
2: जरूर
3: करें।
2: कंसिडर।
3: यदि मेड़ कंसिडर नहीं की, आप हर 10 दिन पे, हर 1 सप्ताह पे अपने खेत में स्प्रे करेंगे और नो डाउट वो माइट बार बार बार बार अटैक करेगी। उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है, किसान भाइयों को बीच में लगेगा भी कि बारिश हो गई है, वो कुछ डाउन है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने की, उसकी बच्चे आगे अंडे देने की कैपेसिटी बेहद ज़्यादा है, तो वो इसलिए बहुत जल्दी से अपनी नई जनरेशन को भी लेके आती है। इसलिए हमें उसे कंट्रोल बड़े प्रॉपर तरीके से करना होगा, जब भी कंट्रोल होगी, अन्यथा की दशा में दोनों के लिए नुकसानदायक है,
2: हाँ,
3: केवल और केवल
2: पड़ोसियों का दोनों का
3: पड़ोसियों के
2: नुकसान
3: लिए
2: है
3: भी और हमारे लिए
2: हमारे लिए
3: भी,
2: भी।
3: और दूसरा इंडस्ट्री के लिए भी।
2: हाँ
3: मुझे प्रोडक्शन जाएगा, मेरा गन्ना वेट नहीं देगा, शुगर इंडस्ट्री का वहां पर रिकवरी नहीं देगा,
2: जी जी
3: उसको रिकवरी पे इम्प्रेशन, बैड इंप्रेशन जाएगा, गलत प्रभाव जाएगा, हमारा उत्पादन पे जाएगा, हमारे किसान भाइयों को उसमें वजन मिलने की संभावना। गन्ना फोलियज देखने में हो सकता है अच्छा नजर आए, बट
2: जी
3: वो गन्ने में सब सॉलिड, वहां पर उसमें वजन उस लेवल का नहीं बनेगा जिस लेवल का बनना चाहिए था।
2: तो डॉक्टर साहब ये बात अक्सर हम सभी फसलों के लिए करते हैं। आज
3: जी
2: तो क्योंकि विशेष कार्यक्रम है, गन्ने की बात हम कर रहे हैं,
3: जी जी
2: और खरपतवार की जो बात करते हैं हम, जो कि भाई आपके खेत जो है खरपतवार से रहित होने चाहिए,
3: जी जी
2: क्योंकि खरपतवार में कीट पतंगे अपना घर बनाते हैं, बाद में वो फसल पे जाते हैं। जैसे आपने
3: जी
2: बता
3: जी
2: ही दिया क्लियर कट कि
3: बिल्कुल
2: जो
3: बिल्कुल
2: डोल है, जो मेड है,
3: जी
2: उसकी सफाई रखो ना, तो भाई पैसे ज्यादा खर्च करो, दवाई उसमें डालो,
3: जी जी बिल्कुल
2: पैसे बचाने हैं थोड़े से तो मेड़ की
3: बिल्कुल
2: सफाई रखो और
3: भाई
2: साफ करके जितना भी खरपतवार है, या जैसे डॉक्टर साहब ने बताया जो प्रभावित पत्तियां हैं
3: जी जी
2: उनको भी ले जाके कहीं गड्ढे में दबाओ या नष्ट करो।
3: नष्ट करो
2: वही
3: बिल्कुल
2: नहीं कि भाई मेड़ पे ही डाल दिया और फिर वही
3: दोबारा
2: के
3: से।
2: वही
3: हाँ
2: के
3: हाँ
2: वही आ
3: वो
2: जाएंगे,
3: उसका अल्टरनेट होस्ट के रूप में फिर वही स्वतः वहां पे उसको मिल गई है।
2: मिल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी सावधानी बरतो, तो आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वजन अच्छा रहेगा, और जब मिल में ले जाओगे तो बढ़िया पैसे मिलेंगे। डॉक्टर साहब चर्चा बहुत हो गई है,
3: जी
2: एक मनोरंजन आपका करा देते हैं, एक लोकगीत सुनवाते हैं।
0: हाँ, किसानों को सुनवाइए। हाँ
2: जी।

0: रुवैया ठंडी हवा चले, मेरे राजा से मिलना ना होए। तो राज रानी वर्मा की आवाज में डॉक्टर साहब ये लोकगीत
1: तो
0: सुना
1: नरेश
0: है।
1: जी, आपने जो है अभी से सावन डिक्लेयर कर दिया पूरा।
0: अब जो माहौल बन गया डॉक्टर साहब, हमने कहा माहौल बनाओ ताकि सावन तक पहुंचते पहुंचते
1: नहीं, किसान
0: और
1: भाइयों के दिमाग में आ गया होगा भाई, सावन आने
0: जी,
1: वाला है
0: हाँ
1: तुरंत
0: ना, सावन थोड़े दिन बच रहे हैं डॉक्टर साहब, सावन
1: हाँ
0: भी आ
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: बिल्कुल
0: और बरसात में जैसे हवा चलती है ठंडी, तो भाई आनंद तो आ ही है,
1: बिल्कुल
0: और उस पर
1: बिल्कुल
0: अगर सैया तो मिलना ना हो तो कष्ट होएगा ही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अब कष्ट की बात शुरू हो गई है, तो अब कीड़ा का जो कष्ट है,
1: हाँ जी
0: जो गन्ने में आ रहा है,
1: जी
0: आता है या आने की संभावना है,
1: जी जी
0: उससे कैसे हमारे जो किसान है हमारे, उनको कैसे बचाएं, तो और कौन से कीट इस समय दुविधा दे सकते हैं?
1: जी जो महत्वपूर्ण थे इस समय वर्तमान में, यही सारे कीट हमारे महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ साथ एक और कीट महत्वपूर्ण है, व्हाइट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं, सफ़ेद मक्खी।
0: सफेद मक्खी
1: जी, वो
0: जी,
1: भी गन्ने में आती है, और किसान भाई अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं व्हाइट फ्लाई में और आप माइट में, क्योंकि वे दोनों ही पत्ती की निचली सतह पर अपना एग लेइंग करती है, पत्ती की निचली सतह पर अंडे देती है। लेकिन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि यदि व्हाइट फ्लाई है तो वो एक लाइनर नहीं देगी, एक लाइन में अंडे
0: जो
1: नहीं
0: आपने
1: देगी।
0: बताया था
1: जी,
0: जी,
1: जो माइट में एक नेचर होती है उसकी, लाइनर एक लाइन बनाते हुए चलेगी, सफ़ेद उसको कवर करते हुए चलेगी। लेकिन जो व्हाइट फ्लाई होगी वो एक तो उसके लाइनर नहीं होगा, लाइन में नहीं देगी, किसान की भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा, उसके कलर डिफरेंशिएट होगा, वो व्हाइट कलर से के अंडे होंगे, कहीं ब्लैक होगा कहीं व्हाइट होगा, स्पोटी टाइप से वो
0: जी
1: अंडे देगी, वो व्हाइट फ्लाई के अंडे होते हैं। और दोनों ही सकिंग इंसेक्ट है, रस चूसने वाले कीड़े हैं। तो कंट्रोल करने के लिए हम इसमें, क्योंकि ये प्योरता इंसेक्ट

0: वाइट फ्लाई, और इसको कंट्रोल करने के लिए किसान भाई आप इमीडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायफेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ml प्रति लीटर पानी की दर से आप घोल बनाएं और पत्ते को पौधे को अच्छे से तर करें, और प्रयास करें इस समय जो बरसात का सीजन होता है इसमें सरफेस टेंट जरूर इस्तेमाल करें। जैसे अभी तेवतिया जी कह रहे थे कि भाई बरसात का समय होता है, आपने प्रश्न
1: मैंने
0: पूछा
1: भी
0: था,
1: कहा जी
0: तेवतिया जी ने सुझाव दिया था उसमें कि 4-5 घंटे का समय मिलना चाहिए।
1: जी जी
0: तो यदि हम सरफेस टेंट मिला देते हैं, स्टीकर उसमें किसान की भाषा में बात करूँ तो मिला देते हैं, तो वो जो हमारा लीफ है उसको जल्दी से एब्जॉर्व कर लेती है, वो ड्रोपलेट नहीं बनने देती, वो पौधे की पत्ती में जल्दी से उसके अंदर चली
1: और
0: जाती
1: देर
0: है
1: तक रहती है
0: और
1: दवा,
0: देर
1: फिर
0: तक, क्योंकि शरीर
1: चिपक
0: में अच्छे
1: जाती
0: से
1: है।
0: प्रवेश कर जाएगी तो इसलिए वो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी।
1: जी
0: तो निश्चित तौर पर हम उसको आसानी से उसे कंट्रोल कर लेंगे और हमारे किसान भाइयों को उसका नुकसान भी, इन कीटों का उतना नुकसान नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है, जांच और पहचान
1: जी
0: दोनों मस्ट है। यदि
1: समय से
0: हम
1: कर ली, समय से इलाज कर दिया तो नुकसान से
0: कारगर,
1: बचे रहेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: डॉक्टर साहब, अब कीट की बात हो रही है तो रोग की बात भी बता दो, कोई रोग
0: जी
1: इस समय आ रहा हो तो।
0: हाँ, इसी के पैरेलल अभी हमारे यहाँ पे एक महत्वपूर्ण रोग चला हुआ है जिसको हम पोका बोइंग के नाम से जानते हैं। और ये पोका बोइंग जो डिजीज है, ये बेसिकली 3 टाइप की स्टेज इसकी आती है। टॉप रोट फेज, क्लोरोटिक फेज आती है, और टॉप रोट फेज आती है, नाइफ कट फेज आती है, जो प्रारंभिक अवस्था है। किसान आसानी से पहचान सकता है
1: जी
0: उसको कि जहाँ पर आपका गोला शुरू होता है वहाँ पर पत्ती एक तो श्रिंक करेगी, सुखड़ेगी,
1: सुखड़ जाएगी,
0: और वहीं पर येलो कलर का स्पॉट बनाएगी, सफ़ेद और
1: पीला।
0: पीले रंग का धब्बा सा बनाएगी, और वो बाद में फिर वहाँ पर ब्राउनिश कलर, रेडिश कलर में परिवर्तित होना शुरू होगी। तो इस प्रकार के स्पॉट वहाँ पे पोका बोइंग में नज़र आने शुरू होते हैं। और उसके लिए किसान भाइयों से आग्रह है कि वो उसके लिए बहुत अच्छा केमिकल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से। लेकिन सावधानी ये बरतें, उसके साथ अन्य केमिकल का इस्तेमाल न करें तो ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा।
1: डॉक्टर विकास कुमार मलिक जी, डॉक्टर US तेवतिया जी कार्यक्रम में आए, किसानों की समस्याओं का समाधान किया, धन्यवाद आपका।
0: धन्यवाद
1: आपका
0: जी,
1: भी बहुत
0: धन्यवाद।
1: बहुत धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे इंडियन पोटाश लिमिटेड।

0: मिट्टी की उर्वरता एवं फसल उत्पादन में अद्भुत वृद्धि के लिए प्रसिद्ध बहुपोषक प्राकृतिक उर्वरक आईपीएल की पॉलीहैलाइट, समझदार किसानों की पहली पसंद
1: आईपीएल की पॉलीहैलाइट।
2: इसी के साथ हमारा कृषि जगत कार्यक्रम समाप्त होता है।
3: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक है शिव नंदन लाल। तो सभी भाइयों बहनों हमारा राम राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, गजलों के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत में आगाज करते हैं हम चंदन दास साहब की आवाज़ में इस गज़ल के साथ।

जी हाँ जी, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए जिस तरह कार्यक्रम का हमने किया है आगाज़। उसी को बढ़ाते हैं थोड़ा सा और आगे, चंदन दास साहब की आवाज़ में ये गज़ल आपके लिए।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं वैष्णवी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया और दक्षिणी दिल्ली के एक रिहायशी इमारत में आग लगने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए सभी संबंधित पक्षों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी।
1: प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: श्री रिजिजू ने प्रधानमंत्री के हवाले से कहा कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि देश के युवाओं को एक निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली मिलनी चाहिए। श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर बल दिया है कि पेपर लीक रोकना एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने नीट पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की है, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और देश के हर परिवार से जुड़े इस मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। उधर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित हुई। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों का गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा की लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्कालीन स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि श्री वांगचुक को मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार जल्द ही पात्र लोगों के लिए स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करेगी। इसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजस्व विभाग द्वारा आयोजित स्वामित्व योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के दौरान की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत व्यापक सर्वेक्षण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने और स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने का कार्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि योजना के अंतर्गत अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित कर रही है, जिससे भविष्य में रिकॉर्ड अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने बताया कि प्रत्येक कार्ड पर संपत्ति का संपत्ति पहचान संख्या, जारी करने की तिथि, गाँव, उपमंडल, जिला, कब्जाधारी का नाम जैसे महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक कार्ड पर QR कोड भी होंगे। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से पूरे गाँव का हवाई सर्वे भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 48 गांव को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ हुए समझौते के तहत योजना में शामिल किया गया है। इनमें से 30 गांवों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और उनके अंतिम प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अब तक 12,000 से अधिक संपत्तियों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। इसके अलावा दक्षिण और उत्तर पश्चिम जिले में सर्वे की गई सभी संपत्तियां विवाद मुक्त हैं, जबकि अन्य जिलों में भी विवाद के समाधान के साथ आगे की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार तकनीक आधारित सुशासन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक तक बेहतर सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और स्वामित्व योजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
0: दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की है। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: इनमें ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, अटल बिहारी

0: वाजपेयी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा अन्य कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 207 सीटें 5 नॉन टीचिंग अस्पतालों में आवंटित की गई हैं। इनमें दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जयपुर गोल्डन अस्पताल, बीएलके मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और सेंट स्टीफंस अस्पताल शामिल हैं। इस पहल से उन फॉरेन मेडिकल स्नातकों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार युवा चिकित्सा पेशेवरों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ साथ राजधानी की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक मजबूत बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। प्रादेशिक के लिए आदित्य की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने भारत की पहली डेंगू वैक्सीन क्यू डेंगा के विपणन की मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य देश में डेंगू की रोकथाम के प्रयासों को मजबूत करना है। ये देश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वीकृत पहली डेंगू वैक्सीन है। इसका इस्तेमाल 4 से 60 वर्ष की आयु के लोगों के लिए किया जा सकता है। इस वैक्सीन को पहले ही 42 देशों में नियामक स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड शामिल है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश की पहली डेंगू वैक्सीन की मंजूरी मिलना डेंगू के खिलाफ भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने आज कैंसर और संक्रामक रोगों के उपचार संबंधी समाधान विकसित करने के लिए 3 स्वदेशी जैव चिकित्सा तकनीकों को अग्रणी भारतीय दवा और वैक्सीन निर्माताओं को लाइसेंस दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि तकनीक अगली पीढ़ी के स्वदेशी उपचारों, टीकों और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देगी। इस अवसर पर ICMR के महानिदेशक डॉ. राजीव बहल ने कहा कि संस्थान ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सार्वजनिक धन से होने वाला अनुसंधान ऐसे उत्पादों में परिवर्तित हो जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में सुधार करे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने आज सराय कालिखा नमो भारत स्टेशन पर निशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य नेत्र स्वास्थ्य के विषय में जागरूकता बढ़ाना, इससे जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द पता लगाना और नमो भारत यात्रियों के साथ साथ अन्य लोगों को निशुल्क नेत्र जांच की सुविधा प्रदान करना था। इस शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टरों ने लोगों की दृष्टि जांच की और उन्हें इसका विशेष ख्याल रखने संबंधी सलाह दी। हरजीत सिंह ग्रेवाल ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की अधिसूचना इस महीने की 16 तारीख को जारी की थी। पदभार संभालने के बाद श्री ग्रेवाल ने मीडिया से कहा कि आयोग सभी अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए काम करेगा और स्वतंत्र रूप से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। उन्होंने कहा कि आयोग वास्तविक शिकायतों के समाधान और अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर उचित ध्यान देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री ग्रेवाल ने देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में फैलाई जा रही गलत धारणाओं को भी खारिज किया।
2: कुछ लोग देश में बहुत गलत फहमी डाल रहे हैं कि यहाँ मिनोरिटीज के ऊपर जुल्म हो रहा है। यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है सभी कम्युनिटीज की। अगर जुल्म होता हो या उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या डिस्क्रिमिनेशन होती हो तो यहाँ पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी? यहाँ तो सबका साथ, सबका विकास, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अपने अपने फील्ड में सभी हम मिलकर कोशिश करेंगे। अगर कहीं कोई ऐसी बात होगी भी तो उसको भी एड्रेस करेंगे।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद दिल्ली नगर निगम के जोनों के नाम अब दिल्ली के राजस्व जिलों के नामों जैसे कर दिए गए हैं। संशोधित 14वीं अनुसूची में दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के नाम और उनके 12 जोनों की पूरी जानकारी दी गई है। 12 जोन के लिए हम बाहरी उत्तर, उत्तर, उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर, पुरानी दिल्ली, मध्य पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व और उत्तर पूर्व हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक होगा। दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि कैलाश नगर के महावीर स्वामी पार्क में पानी की मुख्य पाइपलाइन पर कुछ बड़े सुधार कार्य के कारण सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से साउथ दिल्ली मेन लाइन में जलापूर्ति बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया कि कल सुबह 10 बजे से अगले शाम 6 बजे तक दक्षिण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने जानकारी दी है कि राजघाट के पास समता स्थल पर स्थित वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलने वाली मौजूदा पाइपलाइन की मरम्मत के कारण कल माटिया महल, बल्ली मारान और चांदनी चौक एसी 20, 21 और 22 के क्षेत्रों में जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। बोर्ड ने बताया कि जलापूर्ति कल सुबह 11 बजे से 18 घंटे तक बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने स्थानीय निवासियों से पर्याप्त मात्रा में पानी के भंडारण का अनुरोध किया है। आपातकाल स्थिति में जल बोर्ड के कंट्रोल नंबर 1916 पर फोन कर पानी के टैंकर मंगाए जा सकते हैं। राजधानी के दक्षिण दिल्ली के लोधी रोड स्थित बीके दत्त कॉलोनी में एक रिहायशी इमारत में सुबह आग लग गई। स्थानीय पुलिस के अनुसार आग इमारत की तीसरी मंजिल पर लगी और इस हादसे में एक महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सुबह करीब 10:20 पर सूचना मिलते ही आग बुझाने के लिए 3 दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गई। सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी संवेदनाएं शोकाकुल परिवारों के साथ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाते हैं, जिनमें स्थलीय साहसिक कार्य, जल साहसिक कार्य, वायु साहसिक कार्य और आजीवन उपलब्धि पुरस्कार शामिल है। इस पुरस्कार का उद्देश्य युवा भारतीयों को साहसिक गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। नामांकन आज से 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर कर सकते हैं। आवेदक संबंधित राज्य सरकार के खेल विभाग या मान्यता प्राप्त साहसिक संस्थानों से अनुशंसा प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सेना, नौसेना और वायुसेना के सेवारत कर्मियों के लिए अनुशंसा अनिवार्य है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा एक दिन के विराम के बाद आज फिर से शुरू हो गई है। लगातार बारिश और यात्रा मार्गों पर भूस्खलन की आशंका को देखते हुए कल यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित की गई थी। राजधानी दिल्ली में आज दिन के समय कई क्षेत्रों में हल्की वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने कल भी बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर हल्की बारिश के साथ हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में परीक्षाओं में पेपर लीक रोकने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रत्येक संपत्ति की स्पष्ट पहचान सुनिश्चित करने के लिए पात्र लोगों को जल्द स्मार्ट प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे। दिल्ली सरकार ने विदेशी मेडिकल स्नातकों के लिए 275 अभ्यर्थियों को 12 अस्पतालों में इंटर्नशिप सीटें आवंटित की। केंद्र ने दिल्ली की प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर और जनता के लिए आसान बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की 14वीं अनुसूची में संशोधन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। हाजिर हूँ मैं लेकर आपका अपना फिल्म संगीत का प्रोग्राम गीत मालिका। और आज की गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड में मैं हूँ आपकी कैप्टन, आपकी साथी, आपकी मित्वा, आपकी अपनी दीप्ति। तो क्या खास है आज इस रोलर कोस्टर राइड में आपके लिए, करेंगे इस बारे में बात। लेकिन करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत इस खुशनुमा गीत के साथ।

ये खूबसूरत शाम और आज 21 जुलाई हिंदी सिनेमा के उस महान गीतकार का जन्मदिन जिन्होंने शब्दों को सिर्फ लिखा नहीं, उन्हें धड़कनों में बसाया। जी हाँ श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं आनंद बख्शी साहब की, जिनके गीत आज भी हर दौर, हर उम्र और हर दिल की जुबान बने हुए हैं। आज का ये पूरा सफर हम समर्पित करेंगे हिंदी फिल्म संगीत के उस जादूगर को जिन्होंने शब्द नहीं जज्बात लिखे। उन्होंने 4 दशकों से भी ज्यादा समय तक हजारों गीत लिखे और कमाल की बात ये रही कि उनके शब्द हमेशा सीधे दिल तक पहुंचे। उनकी कलम की सबसे बड़ी खूबी थी सादगी। मुश्किल एहसासों को भी इतने आसान से अल्फाजों में पिरो देते थे कि हर शख्स को लगता था, अरे ये तो मेरे दिल की बात कह दी। तो आइए आज उनके लिखे उन सदाबहार नगमों के साथ याद करते हैं उस महान गीतकार को, जिनके गीत वक्त के साथ पुराने नहीं बल्कि और भी अपने, और भी दिल के करीब लगने लगते हैं।

पहली मुलाकात जिंदगी का शायद सबसे खूबसूरत लम्हा। उस एक मुलाकात में ना जाने कितने सवाल होते हैं, कितनी धड़कनें होती हैं और

अनकही बातें होती हैं। तो आनंद बख्शी साहब की यही तो खासियत थी कि वो उन एहसासों को भी शब्द दे देते थे जिन्हें लोग अक्सर सिर्फ महसूस कर पाते हैं। पहले नजरें मिलती हैं, फिर मुस्कुराहट अपना काम करती है, और उसके बाद दिल दिल बिना किसी इजाजत के अपनी अलग ही कहानी लिखना शुरू कर देता है। और फिर एक ऐसा मकाम भी आता है जहां अल्फाज की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जब सच्चे एहसास हों तो खामोशी भी बातें करने लगती है। आइए आपको सुनवाते हैं आनंद बख्शी साहब का लिखा एक ऐसा ही सदाबहार नगमा, जिसमें दो दिल मिल तो रहे हैं लेकिन अपनी कहानी दुनिया से छुपाकर।

श्रोताओं, दो दिल जब एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो मुलाकातें हमेशा ज़रूरी नहीं रह जाती हैं, क्योंकि उसके बाद यादें जो होती हैं वही उस सबसे ज़्यादा खूबसूरत साथी बन जाती हैं। और यही आनंद बख्शी साहब की लेखनी का जादू था। उन्होंने मोहब्बत को सिर्फ मिलने की तड़प तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इंतज़ार, याद, तड़प, मुस्कुराहट, हर एहसास को बेहद सादगी से गीतों में पिरो दिया। उनके लिखे हुए गीत इसलिए भी खास लगते हैं क्योंकि उनमें जिंदगी बनावटी नहीं, बल्कि बिल्कुल सच्ची नजर आती है। उनके गीतों में हर श्रोता को कहीं ना कहीं अपना ही किस्सा सुनाई देता है। और जब कोई दिल के इतना करीब आ जाए कि उसका नाम होठों पर आए ना आए, दिल उसे हर धड़कन में याद करता है। तो इसी खूबसूरत एहसास को शब्द देता है आनंद बख्शी साहब का ये अगला सदाबहार नगमा।

अरे हाँ, तो नाम याद रखना भी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ना। लेकिन जब मोहब्बत हो जाए ना, तो ये सारा हिसाब किताब थोड़ा गड़बड़ हो ही जाता है। देखिए ना, अभी तक तो बात थी कि तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, लेकिन अब ये कहानी थोड़ी सी हमने बढ़ा दी है आगे, और अब हालात ये हैं कि अपना नाम याद रहे या ना रहे, उनका ख्याल हमेशा साथ रहता है। दोस्तों, आनंद बख्शी साहब प्यार की ऐसी ही शरारतों को बड़े मजेदार अंदाज में गीतों में पिरो देते थे। उनके शब्द मुस्कुराने पर मजबूर भी करते थे और गुनगुनाने पर भी मजबूर कर देते थे। तो चलिए जरा सा मुस्कुरा दीजिए, क्योंकि अब जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं, उसका मुझे लगता है कि गुनगुनाना शायद प्यार की किसी मेमोरी को छोटा सा सिस्टम अपडेट दे ही देगा। चलिए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है, ट्यून इन किया है आपने, हम आपको बताते चले आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका। बात कर रहे हैं आज हम लोग आनंद बख्शी साहब के लिखे सदाबहार नगमों की, और आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी दीप्ति। और अब जो गीत मैं आपको सुनवाने वाली हूँ, ये निकला है आनंद बख्शी साहब की कलम से, और गीत ऐसा है कि इस गीत के बगैर ये कार्यक्रम तो पूरा हो ही नहीं सकता था।

दोस्तों, आनंद बख्शी साहब की कलम सिर्फ प्यार और मोहब्बत की दास्तान ही नहीं लिखती थी, उन्होंने दोस्ती को भी यादगार बनाया, रिश्तों को भी आवाज़ दी, और जब जब मस्ती का मौका आया तो ऐसे चुलबुले गीत लिखे कि आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हमने अभी आपको सुनवाया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, एक ऐसा गीत जिसने दोस्ती को हमेशा हमेशा के लिए एक नई पहचान दे दी। लेकिन जिंदगी सिर्फ वादों और जज्बातों से तो नहीं चलती ना, इसमें चाहिए थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा कंफ्यूजन और कभी कभी छोटी मोटी गड़बड़ी भी। और सच कहिए, अगर जिंदगी में कभी कुछ गड़बड़ हो ही ना तो जिंदगी तो बड़ी स्मूथ सी चलेगी ना, मज़ा ही कहाँ आएगा। तो चलिए, मोहब्बत के बाद दोस्ती और दोस्ती से निकलकर चलते हैं मस्ती की उसी दुनिया में जहाँ चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ जाती है और पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। सुनिए आनंद बख्शी साहब की कलम से निकला ये बेहद चुलबुला और मस्ती भरा नगमा।

0: जान बचाओ,
1: नौकरी जाओ,
0: इसमें क्या है
1: तुम्हें पता है,
0: पी के मरूं क्या
1: ये बेरी?
0: और करूं क्या, मेरे सर पे ठंडा पानी डालो मैं चला।

श्रोताओं, हर मुलाकात की एक खूबसूरत बात होती है कि वो अगली मुलाकात की उम्मीद भी साथ छोड़ जाती है। आज आनंद बख्शी साहब के गीतों के साथ हमने प्यार के रंग देखे, दोस्ती की गर्माहट महसूस की, शरारतों पर मुस्कुराए और यादों के कुछ बेहद खूबसूरत पल अपने साथ समेट लिए। यही तो था उनकी कलम का जादू। हर गीत जिंदगी का नया एहसास बन जाता था। अब स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि विदा लेने का वक्त हो गया है। रोलर कोस्टर राइड को हमें यहीं एंड करना होगा, लेकिन ये विदाई अलविदा नहीं है, ये एक छोटे से विराम की तरह है। तो चलते चलते आनंद बख्शी साहब के ही लिखे इस प्यारे से गीत के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी।

और इसी गीत के साथ आज की इस रोलर कोस्टर राइड को यहीं पर समाप्त करने की मुझे यानी दीप्ति पाठक को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगी यूं ही किसी संगीतमय सुरीले मोड़ पर। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: अच्छा तो हम चलते हैं।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसेडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया। अमेरिका और ईरान के लगातार 10वें दिन एक दूसरे पर हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ा। और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्य टीम की घोषणा की। हरमनप्रीत सिंह होंगे टीम के कप्तान। और अब समाचार विस्तार से।

0: सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को हिरासत में ले लिया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि हाल ही में हुए नीट पेपर लीक मामले में शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 13 आरोपी अभी जेल में हैं।
3: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने आज कहा कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। संसद भवन परिसर में श्री पासवान ने विपक्ष से रचनात्मक सुझाव देने और सार्थक बातचीत में भाग लेने का आग्रह भी किया।
4: प्राइम मिनिस्टर इज वेरी क्लियर कि हमें रिफॉर्म्स करने होंगे। हर मंत्रालय को कहा जा रहा है, इंक्लूडिंग शिक्षा मंत्रालय, कि आप रिफॉर्म्स लाइए। आज की परिस्थिति के हिसाब से हम लोगों को व्यवस्था निर्माण करने की जरूरत है। आप सुझाव देंगे, हम करेंगे रिफॉर्म। कल से संवाद के दरवाजे खुले हैं।
0: वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा है कि सरकार ने बदलती वैश्विक भू राजनैतिक और आर्थिक स्थितियों के बीच निर्यात बाजारों में विविधता लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री प्रसाद ने कहा कि इनमें मुक्त व्यापार समझौते और व्यापक आर्थिक साझेदारी तथा सहयोग समझौतों का विस्तार करना और प्राथमिकता वाले बाजार पहुंच हासिल करने के लिए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और क्षेत्रों के साथ व्यापार वार्ता करना शामिल है। भारत का वस्त्र और परिधान निर्यात 2025-26 में 3,25,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जिसमें 1.8% की वृद्धि दर्ज की गई। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निर्यात को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।

0: मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच यूसीसी विधेयक पारित हुआ। एक रिपोर्ट।
1: कांग्रेस विधायकों ने बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की, लेकिन सरकार ने ये मांग खारिज कर दी। इसके बाद विपक्षी विधायक सदन के बीच में आकर नारेबाजी करने लगे और कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन सरकार ने बहुमत के बल पर बिल को पास करा लिया। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू हो जाएगा। यूसीसी के प्रमुख प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में एक से अधिक विवाह मान्य नहीं होगा, तलाक की प्रक्रिया कानूनी होगी और महिला पुरुष को समान उत्तराधिकार का अधिकार मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप में एक महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने नामची जिले के समरदुंग में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एनएचपीसी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। घटना स्थल से अब तक 12 शव निकाले जा चुके हैं और 13 अन्य लोग अभी भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात करके हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज दुर्घटना वाली जगह का दौरा किया और हालत का जायजा लिया। श्री गोले ने उम्मीद जताई कि एक उच्च स्तरीय जांच से इस दुखद घटना से जुड़ी सभी बातें सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम सरकार मृतकों के परिवार को मुआवजा देगी। इस बीच सिक्किम के मुख्य सचिव ने भी आज नामची में अलग अलग विभागों के साथ समीक्षा बैठक की ताकि चल रहे बचाव अभियान में तेजी लाई जा सके। इस बीच एनडीआरएफ की और एक टीम नए उपकरणों के साथ बचाव अभियान में लगे हुए है। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में तत्काल स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किया। सरकार ने दिल्ली में नीट पेपर लीक मामले में विरोध कर रहे लोगों पर पुलिस के पैलेट गन का इस्तेमाल करने की सोशल मीडिया की खबरों को गलत बताया है। सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कील लगे डंडों के इस्तेमाल करने के दावों को भी खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के कट्टर माओवादी अजय महतो की पत्नी अनीता किस्कू उर्फ बबीता महतो ने आज गिरिडीह पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि उसे झारखंड सरकार की नई दिशा एक नई पहल पुनर्वास नीति के तहत 3 लाख रुपए की सहायता और अन्य पुनर्वास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जानोवस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों ही देश व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर सहमत हुए हैं।
3: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय अग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।
0: पश्चिम एशिया

0: में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। ईरान की अर्ध सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार बुशहर प्रांत को भी निशाना बनाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया, वहीं अमेरिका ने ईरान के भीतर तक हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठकें शुरू की। ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी है। इससे पहले अमेरिका ने हमलों में दक्षिण पश्चिमी ईरान के हॉर्मुज शहर को निशाना बनाया। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन ने ईरान की ओर से नए हमलों की जानकारी दी है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर POJK में बंद और चक्का जाम जारी है। JAAC ने आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के लिए न्याय और अपनी मांगे मनवाने के लिए 23 जुलाई को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, उत्तराखंड, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में अगले 3 दिनों में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी कल तक आंधी तूफान की संभावना है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने का अनुमान है। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। मोहित एचेस और सूरज करकेरा गोलकीपर के रूप में हैं। हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहित, युवराज सिंह, सुमित मनप्रीत और हार्दिक सिंह भी इस टीम का हिस्सा हैं। उधर कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बना ली है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार नीट पेपर लीक और संबंधित मुद्दों पर संसद में चर्चा को तैयार। विपक्ष के विरोध के बाद संसद दिन भर के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। कहा, सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठा रही है। भारत और उत्तरी मैसिडोनिया स्कोपिये में राष्ट्रपति स्तरीय वार्ता के बाद व्यापार बढ़ाने और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत करने पर सहमत। मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया और भारत ने अगले महीने से शुरू होने वाले पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा की। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Government says it is ready to discuss NEET paper leak issue and other related matters in Parliament. Both houses adjourned for the day amid opposition protests. Prime Minister Narendra Modi vows strict action against those involved in NEET issue, says government taking steps to prevent such incidents. India and North Macedonia agree to enhance trade and cooperation in key sectors after presidential level talks in Skopje. Madhya Pradesh Assembly passes Uniform Civil Code Bill. US and Iran trade strikes for the 10th day in row, mounting tensions over Strait of Hormuz. And in hockey, 20-member Indian squad led by Harmanpreet Singh announced for the Men's World Cup set to begin next month. And now the news in detail. The government today said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi this evening, Union Minister Jitendra Singh accused leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
3: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलव्वस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल मंजूर कर लिया है। आबनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदा महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने आज कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी पर हुकूमत की यकीन दहानी के बावजूद नीट से मुतालिक मामलात पर बहस की अपनी पहले की मांग से इन्हराफ करने का इल्ज़ाम लगाया। इससे कबल दिन में कांग्रेस सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे, कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीगर पार्टी अराकीन के साथ नीट मामले पर बहस का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह और मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन ने लोक कल्याण मार्ग पर एहतजाज के मकाम पर कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात की। जनाब गांधी ने उन्हें बताया कि अगर हुकूमत नीट और दीगर मामलात पर पार्लियामेंट में बहस के लिए रजामंद है तो वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज खत्म कर देंगे। कांग्रेस रहनुमाओं से मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुतल्ला किया कि हुकूमत ने मामले पर बहस की मांग कबूल कर ली है। तहम मरकजी वजीर ने कहा कि जब हुकूमत के मौकफ से कांग्रेस लीडर को आगाह किया गया है तो जनाब गांधी अपनी पहले की मांग से पीछे हट गए और वो मजीद मुतालबात करने लगे। इस दौरान पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई आज नीट पेपर लीक मामले समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से बार बार रखना अंदाजी के पेश नज़र दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई मानसून अजलास के दूसरे दिन बार बार शोरगुल की वजह से मुलतवी करना पड़ी। अपोजिशन के शोर शराबे के पेश नज़र दोनों ऐवानों की कार्रवाई 3 मरतबा मुलतवी की गई। अपोजिशन पार्टियां नीट पेपर लीक मामले और दीगर मामलात पर नारेबाजी कर रही थीं। रखना अंदाजी के सबब दोनों ऐवानों में वक्फाए सवालात और वक्फाए सिफर नहीं हो सका। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला और इसके बाद प्रिजाइडिंग अफसरों ने एहतजाज कर रहे अरकान से बार बार ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने की अपील की, लेकिन शोरगुल जारी रहा तो ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा में भी इसी तरह की सूरत हाल रही। दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हालिया नीट इम्तिहान पेपर लीक मामले में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुल्क के नौजवानों के मफादात का तहफ्फुज़ करने का अहद किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रही है। जनाब मोदी ने आज पार्लियामेंट हाउस के अहाते में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग, जिसे अब मंगल मिलन के नाम से भी जाना जाता है, खिताब करते हुए ये बात कही। मीडिया से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरेन रिजिजू ने कहा कि मीटिंग के दौरान वजीर आजम ने मुल्क भर में आइंदा होने वाले इम्तिहानात में पेपर लीक की रोकथाम के सिलसिले में सभी मुतालिका फरीकों से मरबूत कोशिशों पर जोर दिया है।
2: आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया और ये भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें।
0: सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा आज नई दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल गए और अस्पताल में डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। उन्होंने कल कौमी राजधानी में नीट UG 2026 के मुबैना पेपर लीक मामले पर एहतजाज के दौरान जख्मी हुए लोगों की सूरत हाल का भी जायजा लिया। जनाब नड्डा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी गए اور وہاں داخل زخمی مظاہرین سے ملاقات کی۔ خوراک کو ڈبہ بند کرنے کی صنعتوں کے مرکزی وزیر چراغ پاسوان نے آج کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی خاطر عہد بستہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب پاسوان نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی سبھی شعبوں میں اصلاحات کی ضرورت پر مسلسل زور دیتے رہے ہیں، جس میں تعلیم کا شعبہ بھی شامل ہے۔ وزیر موصف نے کہا کہ سبھی وزارتوں میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ جناب پاسوان نے اپوزیشن پر زور دیا کہ وہ اپنی تعمیری تجاویز پیش کرے اور بامانی بات چیت میں شامل ہو۔
3: پرائم منسٹر از ویری کلیئر کہ ہمیں ریفارمز کرنے ہوں گے۔ ہر منترالے کو کہا جا رہا ہے انکلوڈنگ سکشا منترالے کہ آپ ریفارمز لائیے۔ آج کی پرستھتی کے حساب سے ہم لوگ کو ویوستھا نرمان کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ سجھاؤ دیں گے ہم کریں گے ریفارم۔ کل سے سنواد کے دروازے کھلے ہیں۔
0: دلی ہائی کورٹ نے سونم وانگچک کو قومی راجدھانی کے صفدر جنگ اسپتال سے فوری طور پر گروگرام کے میدانتا اسپتال میں منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی اینگمو کی داخل کردہ درخواست پر سماعت کے دوران یہ حکم دیا۔ مرکز کے لیے پیش ہوئے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے کہا کہ سونم وانگچک کو میدانتا اسپتال منتقل کیے جانے پر حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ بھارت اور شمالی مقدونیا انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، فوڈ پروسیسنگ، فارماسیوٹیکلز، ٹیکسٹائلز، بایو ٹیکنالوجی، سیاحت، ضیافت اور فلم سازی جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے سمیت تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے پر راضی ہو گئے ہیں۔ صدر جمہوریہ آج سکوپیے میں شمالی مقدونیا کی اپنی ہم منصب گوردانا ڈاوکووا سے بات چیت کے بعد میڈیا سے خطاب کر رہی تھیں۔
4: आर्थिक सहयोग हमारे द्विपक्षीय संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम अपने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमत हुए। हमने आईटी, कृषि, फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स तथा टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और फिल्म मेकिंग सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा। हम स्वास्थ्य सेवा में सहयोग पर अपने द्विपक्षीय एग्रीमेंट को भी रिन्यूअल कर रहे हैं।

0: सदर जमहूरिया ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अपनी मुश्तरका जमहूरी इकदार और बाहमी एहतराम पर मबनी गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात की तौसीक की है। सदर जमहूरिया ने कुदरती आफात से निमटने के बुनियादी ढांचे, आलमी हयाती ईंधन इतिहाद और बैनुल अक्वामी शमसी इतिहाद जैसी भारत की क़्यादत वाली आलमी पहल में शामिल होने के शुमाली मकदूनिया के इरादे का खैर मकदम किया। सदर जमहूरिया ने शुमाली मकदूनिया के अजीम तरीन हीरो गॉडसे डेलचेव को भी खराज अकीदत पेश किया। शुमाली मकदूनिया का दौरा ख़त्म करने के बाद सदर जमहूरिया रोमानिया का सफ़र करेंगी। मध्य प्रदेश असम्बली ने आज अपने मानसून इजलास के दूसरे दिन अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया। कांग्रेस सरकार ने बिल को मुंतखबा कमेटी को भेजे जाने की मांग की, लेकिन रियासती सरकार ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन के अराकीन असम्बली ने ऐवान के वस्त में एहतजाज किया, जिसके बाद कार्रवाई दो मरतबा मुलतवी करनी पड़ी। कार्रवाई में रुकावट के बावजूद बिल को अक्सरियत के साथ मंजूर कर लिया गया। अब बिल को गवर्नर की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: यकसा सिविल कोड UCC के अहम इल्तजाम के तहत मध्य प्रदेश में एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत नहीं होगी। मर्द और खवातीन को मसावी मौरूसी हकूक हासिल होंगे। लिव इन रिलेशनशिप का एक महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। वहीं गांव की सतह पर भी शादियों का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। कबायली बिरादरियों को इस बिल के दायरे से बाहर रखा गया है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: सिक्किम के वजीर आला प्रेम सिंह तामांग गोले ने ऐलान किया है कि नामची जिले में समरदुंग में NHPC हादसे के सिलसिले में एक आला सतही तहकीकती कमेटी तश्कील दी जाएगी। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर के साथ आज हादसे के मकाम का दौरा करने के बाद वजीर आला ने सभी फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि यह हादसा चट्टानों के टुकड़े गिरने की वजह से नहीं बल्कि मीथेन गैस के धमाके की वजह से हुआ हो। अब तक जाए हादसे से 12 लाशें बरामद की जा चुकी हैं और ऐसा समझा जाता है कि दीगर अफराद अब भी सुरंग के अंदर फंसे हुए हैं। नामची जिले के समरदुंग में NHPC तीस्ता स्टेज 6 पनबिजली प्रोजेक्ट के तहत जेर तामीर सुरंग में फंसे हुए लोगों को बहिफाजत निकालने के लिए बचाव कार्रवाई जारी है। रियासत की चीफ सेक्रेटरी और DGP ने तलाश कार्रवाई के सिलसिले में सीनियर अहदेदारों के साथ नामची में एक जायजा मीटिंग की। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के वजीर आला से बात की है और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। जनाब प्रेम सिंह तमांग ने सूरत हाल से निमटने के सिलसिले में किए जा रहे इकदाम के लिए वजीर अजम की सताइश की है। दोनों रहनुमाओं ने इस अलमनाक हादसे पर दुख का इजहार किया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिक्किम के गवर्नर ओम प्रकाश माथुर और वजीर आला प्रेम सिंह तमांग गोले ने आज टनल का मुआयना किया और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि मुनासिब जांच इस अफसोसनाक वाकये के सभी हकायक को वाजह करेगी। उन्होंने कहा कि सिक्किम हुकूमत मरने वालों के कुंबों को फौरी मदद फराहम करेगी। सिक्किम के चीफ सेक्रेटरी ने भी नामची में मुख्तलिफ महकमों के साथ जायजा मीटिंग की ताकि बचाव मिशन को तेज किया जा सके। इस दौरान NDRF की एक और टीम नए आलात के साथ आज टनल में दाखिल हो गई। गैंगटॉक से मानस प्रतिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शाहिद अबी।
0: ईरान और अमरीका ने लगातार 10वें दिन भी एक दूसरे पर हमले जारी रखे, जिससे स्ट्रेटेजिक एतबार से अहम आबनाए हुरमुज पर कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया। इस दौरान एक ईरानी अफसर ने पाकिस्तान में सालिसकारों के साथ आज मुलाकातें की, जहां सिफारतकार अमरीका और ईरान के दरमियान टूट चुके आर्जी समझौते को बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। इससे पहले अमरीका ने जुनूब मगरबी ईरान के शहर हुरमुज को निशाना बनाया, जबकि उर्दून, कुवैत और बहरीन से ताज़ा ईरानी हमलों की खबर मिली है। ये हमले अमरीका ईरान तनाज़े पर बढ़ती इलाकाई तकसीम की निशानदेही करते हैं। भारत ने आज रूसी सिफारतखाने के नाजिमुल उमूर व्लादिमिर लादानोव को तलब किया। उन्हें इस महीने की 19 तारीख को एक कमर्शियल बहरी जहाज MV गोल्डन लिव पर हमले के सिलसिले में तलब किया गया। इस हमले में 4 भारतीय अफराद की जानें ज़ाय हो गई थीं। वजारत दाखिला ने हमले पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इसकी मजम्मत की है और कहा कि इस तरह के हमलों से बैनुल अक्वामी बहरी तिजारत की हिफाजत, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचता है। अफगानिस्तान के नूरिस्तान सूबे के परुन शहर में तबाहकुन सैलाब में कम अज कम 20 अफराद हलाक हो गए और दीगर 80 से ज्यादा जख्मी हो गए। तालिबान हुकाम की जानिब से एक बयान के मुताबिक परुन और उसके आसपास के इलाकों में सैलाब के पानी में बहने से 100 से ज्यादा अफराद लापता हैं। कुदरती आफात के बंदोबस्त से मुताल्लिक कौमी अथॉरिटी

0: ने कहा कि नुकसान का जायजा लेने, लापता अफराद को तलाश करने और बचाव इकदामात में मदद की खातिर खसूसी बचाव टीमें तैनात की गई हैं। हुकाम ने ये खबरदार किया कि हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि मुतासर इलाकों में तलाश और बचाव कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने गुजरात खित्ते, मशरक़ी राजस्थान और वस्ती महाराष्ट्र में अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने आसाम, मेघालय, बिहार, गंगाई मगरबी बंगाल, उत्तराखंड, विदर्भ और मगरबी राजस्थान में भी अगले 3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। भारतीय महकमे मौसमियात के मुताबिक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कल गरज चमक और तेज हवाओं के साथ छींटें पड़ सकते हैं। 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में होने वाले FIH आलमी कप के लिए भारतीय हॉकी ने मर्दों के 20 मेंबरों का ऐलान किया है। भारत के सरकर्दा खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह भारतीय टीम की सरबराही करेंगे। दरमियानी खिलाड़ी हरमनप्रीत सिंह ने अपने नए तजुर्बे की बुनियाद पर खेल में दिलचस्प मुजाहरा करेंगे। भारत इंग्लैंड के साथ पूल डी में रहेगा। पाकिस्तान और वेल्स अपने सभी पूल स्टेज के मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टलवीन में खेलेंगे। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में आलमी स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले राउंड में पहुंच गए हैं। चैंपियनशिप में भारतीय खातून खिलाड़ी अनाहत सिंह ने ऑस्ट्रेलिया की लिली विल्सन के खिलाफ 11-2, 11-1, 11-3 से जीत हासिल करके अगले राउंड में दाखिला हासिल कर लिया है। मर्दों के जुमरे में आर्यवीर दीवान, यूशा नफीस और गुरवीर सिंह ने पहला राउंड जीत लिया है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने कहा है कि वो नीट पेपर लीक मामले और दीगर मुतालिका मामलों पर पार्लियामेंट में बहस के लिए तैयार है। अपोजिशन की जानिब से एहतजाज के दरमियान दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस सभी अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अहद किया है। उन्होंने कहा है कि हुकूमत ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए इकदाम कर रही है। भारत और शुमाली मकदूनिया ने स्कोपिये में सदारती सतह की बातचीत के बाद तिजारत में इजाफे और अहम शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मध्य प्रदेश असेंबली ने यकसा सिविल कोड मंजूर कर लिया है। आमनाए हुरमुज में बढ़ती कशीदगी के पेश नज़र अमरीका और ईरान ने मुसलसल 10वें रोज एक दूसरे पर हमले जारी रखे। और हॉकी में आइंदे महीने शुरू होने वाले मर्दों के आलमी कप के लिए हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में 20 रुकनी भारतीय दस्ते का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक। दिस इज आकाशवाणी। इन द प्रोग्राम मनी टॉक नाउ वी ब्रिंग यू अ डिस्कशन ऑन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस कोर इंडस्ट्री ग्रोथ विद इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। द पार्टिसिपेंट्स आर दिलीप चिनॉय, इकोनॉमिक एनालिस्ट एंड सरबजीत कौर, एंकर।
2: Hello listeners, today we bring you an important economic update on the Index of Core Industries ICI based on the new base year 2022-23. This marks a significant step in improving the accuracy and relevance of India's economic indicators. The revised series reflects the latest structure of the economy and provides a more up-to-date measure of the performance of the country's core industries, which play a vital role in industrial growth. To understand this in detail, we are fortunate to connect with Mr. Dilip Chinoy, former Secretary General, FICCI. Mr. Dilip, welcome to the discussion.
3: Thank you for having me.
2: Sir, to begin the discussion and for the benefit of our listeners, we'd like to know from you what exactly is Index of Core Industries and why is it considered one of the most important high-frequency indicators of India's economy?
3: So very simply put, the Index of Core Industries tracks the monthly performance of India's crucial infrastructure industries that are essential for economic activity. With the updated series, which is using this base year 2022-23, it now includes 9 core industries: crude, coal, natural gas, refinery products, fertilizer, steel, which is a new addition, cement, electricity, and iron ore. These sectors actually provide vital inputs for manufacturing, construction, transport, and services. And since these sectors actually make up approximately 41% of the index of industrial production, any changes in their output can signal shifts in industrial activity. And since these data relating to coal, crude oil, natural gas, etc. are available prior to the other items in the index of industrial production, This is kind of an early indicator of

0: Mannheim. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए जैव अर्थव्यवस्था 2035 हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोडमैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अमित गोयल।
1: नमस्कार, बायो इकोनॉमी 2035 के बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैली केडिया। डॉक्टर शैली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते, धन्यवाद।
1: डॉक्टर शैली, जैविक अर्थव्यवस्था बायो इकोनॉमी कुछ नया टर्म है, तो इसको किस तरह से देखते हैं और हमारे श्रोताओं को सरल शब्दों में इसके मायने समझा सके।
2: जब हम बायो इकोनॉमी की बात करते हैं या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो सरल शब्द में कहूँ तो जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें पौधे, पशुओं, सूक्ष्म जीवों, कोशिकाओं और जितनी जो रेन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्सेस होते हैं उसका यूज करके हम अलग अलग चीजों में उसका यूज करते हैं, जैसे कि हम दवाइयां हो, भोजन हो, ईंधन हो, रसायन हो, सामग्री हो, हम उसका उपयोग ये सारे चीजों में करते हैं और हम अर्थव्यवस्था के प्रति उसको कंट्रीब्यूट करते हैं। तीन शब्दों में अगर आप इसको समझना चाहें, जिस तरीके से इंडिया में इसको देखा जा रहा है या ग्लोबली भी देखा जा रहा है, एक तो जैसे उस शब्द में ही है जैव अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत जरूरी है, दूसरा रोजगार और तीसरा पर्यावरण। तो हम जब इंडिया में उसको बोलते हैं तो बायो E3 पॉलिसी बोलते हैं, तो बेसिकली बायो इकोनॉमी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो इसमें ये तीन शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे हमें हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, फूड सिक्योरिटी हो सकता है। अभी हम देखें तो बहुत चर्चा में हॉर्मूज है, उसके कारण हमें कैसे एनर्जी सिक्योरिटी और पेट्रोल नेचुरल गैस इंपोर्ट्स जो हम करते हैं उससे हमें कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उसके

0: एनर्जी सिक्योरिटी में भी बाय इकोनॉमी से हम हमारा लाइक रिड्यूस डिपेंडेंस हो सकता है फ्रॉम पेट्रोलियम एंड इम्पोर्ट्स एंड ऑल्सो लोअर पोल्यूशन और डेफिनेटली जैसे रोजगार की हम बात करते हैं।
1: आपने कहा कि बहुत सारा इसका विस्तृत व्यापक अर्थ है, तो मोटे तौर पर इसमें कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?
0: एकदम मोटा मोटा देखा जाए तो अभी जस्ट 4-5 दिन पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें आप देखा जाए तो 4 क्षेत्र होते हैं। एक होता है आपका जैव औद्योगिक क्षेत्र, बायो इंडस्ट्रियल जिसको बोलते हैं, जिसमें आपका बायो फ्यूल हो जाता है, जो ईंधन के प्रति काम आता है, इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आता है, केमिकल्स होते हैं, बायो प्लास्टिक्स होते हैं, आजकल प्लास्टिक भी बड़ी बड़ी समस्या है। दूसरा एक क्षेत्र है जैव फार्मा, जिसको बायो फार्मा या जो आपके स्वास्थ्य के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू हो, कोविड के टाइम भी इंडिया में पूरे वर्ल्ड एक वैक्सीन रेस में जुट गई थी, बायोसिमिलर डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट, एंटीबॉडीज, जीन थेरेपीज, तो ये सारे बायो फार्मा और हेल्थ क्षेत्र में आते हैं। दूसरा है आपका जैविक कृषि, विच इज बायो एग्रीकल्चर, जिसमें आप देखा जाए तो जैविक कीटनाशक या फिर आपके बायो फर्टिलाइजर, बायो खाद्य जो होते हैं, बायो स्टिम्युलेंट्स और इवन बायो सर्टिफाइड फूड न्यूट्रिशन के लिए, और क्लाइमेट रेजिलियंट क्रॉप देखते हैं, जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उससे निपटने के लिए ड्राउट रेजिलियंट क्रॉप्स हो गया, तो ये आपका जैव कृषि में आता है। और चौथा है आपका जैव सेवाएं और अनुसंधान। अगेन आप देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको आप अगर यूज करके आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स फील्ड में यूज करें, क्लिनिकल रिसर्च में यूज करें, तो उससे बहुत ही बारीक लेवल का रिसर्च हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, और जैसे जिससे आपके नए नए दवाएं की खोज हो सकती है।
1: औद्योगिकरण एक महत्वपूर्ण जरूरत है अगर हम रोजगार की बात करते हैं या हम उत्पादन की बात करते हैं, तो अगर बायो इंडस्ट्री का जिस तरह से आपने जिक्र किया, जिसमें बायो फ्यूल की भी आपने बात करी, बायो प्लास्टिक की भी बात करी, इस बारे में बताएं ये किस तरीके से पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हमारे लिए एक रोजगार का साधन भी उपलब्ध करा सकता है और अर्थव्यवस्था को सहारा भी दे सकता है।
0: तो जैसे कि हम बायो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एग्जांपल बायो फ्यूल का बात कर ले, बायो गैस की बात कर ले, तो हम जो आप समझ लीजिए कोयला या फिर कोई फॉसिल फ्यूल यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके जगह अगर हम बायोफ्यूल यूज करें तो एक तो वो पोल्यूशन कम क्रिएट करता है, दूसरा जो बाहर से फ्यूल आता है उस पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एक दूसरा बड़ा एरिया है आपका प्लास्टिक्स, हम रोज प्लास्टिक्स यूज करते हैं, इंडस्ट्री में भी अलग अलग चीजों को पैक करने के लिए भी प्लास्टिक यूज करता है, अगर उसके जगह हम बायो प्लास्टिक्स यूज करें तो वो थोड़ा एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है, तो खेती भी उसी मात्रा में करनी पड़ेगी, उससे फिर रोजगार का ये लिंकेज है कि किसान को उससे रोजगार मिलेगा और जो उसके जो बीच में जो उसके सप्लाई चेन है उसमें जितने लोग हैं उसमें रोजगार मिलेगा। और थोड़े से और आप थोड़े से हायर लेवल पे जाए तो रिसर्च में या जो आपका जो बायोटेक वाला जो टेक्नोलॉजी सेक्टर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी काफी बढ़त हो सकती है।
1: जी, आपने जैसे औद्योगिकरण की बात करी तो इसमें आपने एक जिक्र किया बायो प्लास्टिक का। प्लास्टिक निश्चित तौर पे पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत बड़ा आज के डेट में चुनौती है, तो ये बायो प्लास्टिक से इस खतरे को कितना कम किया जा सकता है?
0: तो डेफिनेटली जब हम बायो प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो अभी फिलहाल जो भी मटेरियल है, फिलहाल अभी तक एक कोर R&D स्टेज पे है, जिसमें आप मटेरियल्स की बात करें कौन सा मटेरियल, उसमें आपका एल्गे भी आ सकता है, उसमें आपका जो क्रॉप रेसिड्यू होता है खेती करने के बाद जो पौधा बच जाता है उसको जलाने के जगह उसको आप यूज करें बायो पैकेजिंग में, तो क्योंकि प्लास्टिक्स आपके अलग अलग टाइप के पैकेजिंग में यूज होता है, आप जो भी सामान हम लाते हैं किराने की दुकान से ज्यादातर चीजों में वो चाहे वो उसमें वो प्लास्टिक पैकेजिंग में आता है, तो आप देखा जाए तो प्लास्टिक का यूज बहुत सारी चीजों में होता है, और अभी फिलहाल हम देखा जाए तो अगर हम वो सारा पैकेजिंग को ही रिड्यूस कर सके या रिप्लेस कर सके बायो पैकेजिंग से प्लास्टिक्स की जगह, तो आप सोचिए कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है। अब देखा जाए बायो प्लास्टिक अभी भी थोड़ा सा न्यू एरिया है, पर इसमें इसीलिए जो नीति आयोग ने अभी एक रोड मैप बनाया है वो इसमें कह रहा है कि आपको 50,000 करोड़ की एक फंड सेटअप किया जाए, उसमें और रिसर्च एंड डेवलपमेंट वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ये सारी इनोवेशंस को प्रमोट किया जाए जो आपकी एनवायरमेंट प्रॉब्लम, सोसाइटल प्रॉब्लम्स और इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करें।
1: आपने बताया 50,000 करोड़ का एक

0: फंड नीति आयोग ने इसका प्रस्ताव किया है। अगर मोटे तौर पे अर्थव्यवस्था की हम बात करें तो इसका कितना व्यापक बाजार है, और अगर जीडीपी यानी अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी का योगदान रहता है उसमें ये बायो इकोनॉमी का कितना योगदान फिलहाल है?
1: तो अगर हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में काफी तेजी से बढ़ रहा है, और देखा जाए इंडिया में ही अगर हम 10 साल पहले 2014 के करीब हम देखें तो उसमें उस समय उसका बायो इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन $10 बिलियन के करीब, और अभी आज के दिन में करीब करीब 4.8% या समझ लीजिए लगभग 5% ऑफ जीडीपी बायो इकोनॉमी बेस्ड सेक्टर से ऑलरेडी आ रही है। और इसका नीति आयोग ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो रिपोर्ट आया है उसमें ये तक प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2047 तक 2.6 ट्रिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उसको हो सकता है और 2035 तक 6.91 बिलियन। बट हम देखा जाए तो अगर हमें पिछले 10 सालों में लगभग 10 टाइम्स इंक्रीज हुआ है उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी को।
0: जी, मतलब 2014 में जो सिर्फ $10 अरब का बाजार था भारत की अर्थव्यवस्था में जिसका इतना योगदान था, वो अब बढ़ते बढ़ते 2025 तक वो तकरीबन $195 अरब तक पहुंच गया। तो बहुत बड़ा योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में दे रहा है, तकरीबन 5% का अर्थव्यवस्था में इसका योगदान है। अब अगर हम बात करें तो इससे सीधे तौर पे कहीं ना कहीं रोजगार के सृजन में भी हमको काफी मदद मिलती होगी, और अभी आपने जिक्र किया था जो खेती के जो रेसिडुअल्स हैं, मतलब खेती में करने के बाद जो बच जाता है, जिस तरह से पराली जलाने की भी समस्या होती है, क्या खेती में इस बायो इकोनॉमी को या बायो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भी हम उसका कुछ उपाय ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं?
1: डेफिनेटली अभी बहुत सारे प्रयास जारी है और कोशिश किया जा रहा है कि प्राली को यूज करके उससे पैकेजिंग मटेरियल या फिर उससे बायो एनर्जी बनाया जाए, उसको मशरूम ग्रो करने के काम में भी लिया जा रहा है, या उससे ईंट जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है उसके लिए भी यूज किया जा रहा है। पर उसके अलावा भी हम देखा जाए तो बायो इकोनॉमी का एग्रीकल्चर में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। अभी जैसे बताया जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है, तो उसके लिए देखा जाए तो सूखा गर्मी इन सबों को मतलब टॉलरेट करने वाली जो क्रॉप वेराइटीज है वो भी पार्ट है। फिर उसके बाद आप जो बोलते हैं कि जो इनपुट्स होते हैं एग्रीकल्चर में जो जाते हैं, चाहे वो खाद हो चाहे वो कीटनाशक हो, तो वो भी बायोपेस्टिसाइड उसमें यूज करके या बायो फर्टिलाइजर्स यूज करके आप सॉइल हेल्थ भी इंश्योर कर सकते हो और प्लांट प्रोडक्टिविटी भी इंश्योर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें बहुत पोटेंशियल है आज के दिन में, बट ऑल्सो क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी इज ऑल्सो वेरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेक्टर, तो उसमें आप देखा टेक्नोलॉजी हो रिसर्च हो इनोवेशन इसमें भी बहुत सरकार को इन्वेस्ट करने की जरूरत है ताकि कि वो टेक्नोलॉजी को एक लैब से फील्ड में या एक लार्ज स्केल कमर्शियल एप्लीकेशन तक लेके जा सके।
0: आपने जैसे बताया कि बायोटेक्नोलॉजी का क्षेत्र अब उतना नया नहीं रह गया, लोगों की जागरूकता खासतौर पर इसके प्रति काफी हो गई है, तो सरकार ने भी इस पे बहुत विशेष ध्यान देना शुरू किया है, और जिस तरह से अर्थव्यवस्था में भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। क्या पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ जिस तरह से आपने बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं उनसे बचाव करने के लिए ये जो बायो इकोनॉमी है, जैविक अर्थव्यवस्था है, वो सहायक या योगदान कर सकती है?
1: बिल्कुल, सबसे पहले ही जो बात की थी फ्यूल की बात हो रही थी, एनर्जी की बात हो रही थी, अगर हम कोयला या फॉसिल फ्यूल के जगह हम बायो फ्यूल यूज करते हैं या बायो एनर्जी यूज करते हैं एक सही मात्रा में, तो उससे डेफिनेटली आप एक क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन की तो बात हम कर ही रहे हैं, पर एक जो एक क्लाइमेट अडेप्टेशन होता है स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो आप देखिए क्रॉप क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर बोल लीजिए या क्लाइमेट सेंसिटिव एग्रीकल्चर बोल लीजिए, तो वैसे टेक्नोलॉजीज वैसे क्रॉप्स अगर डेवलप हो जो ड्रॉट को सह पाए, तो इससे डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन दोनों में ही बहुत फायदा होगा।
0: जी, वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो ये बायो इकोनॉमी का कितना बड़ा योगदान रहता है फिलहाल? अगर इसका आकार देखा जाए तो वैश्विक तौर पे कौन से देशों में बहुत ज्यादा अभी इसको प्रभावी तौर पे काम ले रहे हैं इसे?
1: वैश्विक तौर पे अगर देखा जाए तो उसमें आपके जो टॉप कंट्रीज हैं उसमें डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स है, वहां पे बहुत बड़ी फार्मा इंडस्ट्री भी है। यूरोपियन यूनियन में देखा जाए उधर भी मतलब काफी बड़ा योगदान है बायो इकोनॉमी का। तो ये सारे जो अभी आप देखें तो पूरे वर्ल्ड में ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है, एक ये नेक्स्ट टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन जैसे देखा जा रहा है, जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन था, तो ये ग्लोबल लेवल पे ये

0: बहुत ही तेजी से ये सेक्टर उभर के आ रहा है, जिसमें आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स हो, यूरोप हो, और आज के दिन में देखा जाए डेफिनेटली चाइना, चीन, वो
1: जी
0: भी बहुत तेजी से उभर के आ रहा है।
1: भारत सरकार ने आम लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए या इसके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए क्या-क्या अक्षर बनाए हैं और क्या इसका टारगेट रखा है, अगर आप संक्षेप में बता पाएं।
0: एक तरीके से देखा जाए आज के दिन में भी आप बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अभी भी मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए कि ये क्या है और उसको कैसे बेनिफिट हो सकता है, थोड़े से और प्रयास की जरूरत है। साइंस लेवल पे या साइंटिफिक कम्युनिटी लेवल पे आप देखें, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हो, तो ये सारे अपने बहुत सारे आउटरीच एक्टिविटीज करते रहते हैं, वेबिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, रिसर्च पब्लिकेशन निकालते हैं, पर जैसे मेरे ख्याल से एक आम आदमी तक पहुंचने के लिए और उसको थोड़ा सा और सरल तरीके से वो मैसेज पहुंचाने के लिए, जैसे आप अपने रेडियो के माध्यम से इसको, आपका ये प्रयास है, बट मुझे लगता है कि इसके बारे में अवेयरनेस, चाहे वो इससे लिंक्ड एजुकेशन रिलेटेड अवेयरनेस हो, कल को क्या क्या, मतलब आज के दिन में हमारे इतने सारे युवाएं स्कूल में हैं, वो आगे सोचेंगे कि उनके पास और क्या करियर ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीजों के बारे में, इसके स्कॉलरशिप के बारे में प्रमोट करने के लिए, इससे रिलेटेड जितने कोर्सेज है उसके बारे में जानकारी थोड़ा सा और एटलीस्ट आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इसमें और प्रयास करने की जरूरत है।
1: जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे जैव अर्थव्यवस्था 2035, हरित अर्थव्यवस्था के लिए भारत के रोड मैप पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान TRI के सतत विकास अनुसंधान केंद्र में वरिष्ठ फेलो और निदेशक डॉक्टर शैली केडिया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अमित गोयल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: मंथन।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। इस बीच लोक कल्याण मार्ग के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और विपक्षी दलों के अन्य सदस्यों को भी हिरासत में ले लिया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा में सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया।

0: लिविंग रिलेशनशिप में 1 महीने के भीतर पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा और विवाह का रजिस्ट्रेशन ग्रामीण स्तर तक जरूरी किया जाएगा। हालांकि आदिवासी समाज को इससे अलग रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि ड्रग तस्करी और इसके दुरुपयोग से निपटने के लिए पिछले महीने नारकोटिक्स कंट्रोल पर विजन डॉक्यूमेंट 2026-2029 जारी किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और उत्तरी मैसेडोनिया ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आपसी सम्मान पर आधारित अपने गहरे और दोस्ताना रिश्तों को फिर से मजबूत किया है। स्कोपियो में राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जवोंस्का दावकोवा के साथ बातचीत के बाद राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि दोनों पक्षों ने आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। पश्चिम एशिया में ईरान और अमरीका के एक दूसरे पर लगातार 10वें दिन हमले जारी रहने से हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजर रहे एक टैंकर पर हमला किया तो वहीं अमरीका ने ईरान के भीतर कई हवाई हमले किए। इस बीच ईरान के एक अधिकारी ने आज पाकिस्तान में मध्यस्थों के साथ बैठक शुरू की। ईरान और अमरीका के बीच अंतरिम समझौते को बचाने के राजनयिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान का सामना करेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं गुलदस्ता कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने आनंद लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। कलाकार रहे शकील अहमद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए राग रंजन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अब सुनते हैं धमार गायन में राग रागेश्वरी। कलाकार है पंडित प्रशांत मलिक और निशांत मलिक, पखावज पर पंडित रविशंकर उपाध्याय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन तीन बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। आज संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। मध्य प्रदेश विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में हंगामे और विपक्ष के कड़े विरोध के बीच ये विधेयक पारित हुआ। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए लागू प्रवर्तन उपायों की समीक्षा की।

0: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी में वक्त ठीक 11:10 और ये लीजिए पूरे हुए 15 सेकंड। आइए आपसे कुछ ही पलों में आनंद लेते हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का।
1: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

भाई खूबसूरत सा ये गीत द ट्रेन से और आवाज़ पुरकशिश वही रफ़ी साहब की। और कार्यक्रम में जुड़े हैं हमारे कुछ साथी जिसमें मेरी जो आवाज़ है उसको लेकर सतीश अनेजा साहब हो गए हैं थोड़े से कंफ्यूज, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला है पूजा बहन। तो ये खुशी की बात भी है मेरे लिए, क्योंकि मेरी बहुत ही अच्छी और परम मित्र है पूजा। तो अगर आपने वंदना को पूजा कह दिया तो भाई मुझे कोई आपत्ति इसमें नहीं है। फिलहाल कार्यक्रम सुन रहे हैं आप, मुकेश कश्यप साहब हैं हमारे साथ और पंजी नभानकर साहब भी हैं, राज क्रिएशन वाले भी हमें सुन रहे हैं, अकरम हुसैन भी हमें सुन रहे हैं, पवन कुमार हैं और साथ है बिट्टू कंगेजा। भाई खूबसूरत से वो गीत उस दौर के लेकर आए हैं हम आज आप सभी के साथ, जो इतने सुंदर इतने कर्णप्रिय रहे हैं कि जब जब वो बजे तभी तब जो कहते हैं ना सबके दिलों में दस्तक देते हैं। और आज भी उन गीतों की कशिश कुछ ऐसी कि जब भी आप सुनेंगे तो झूम जाएंगे। और उन गीतों की अगर हम स्वर की बात करें या फिर कहें आवाज़ों की बात करें, और उसमें अगर रफ़ी साहब के बाद अगर फीमेल वर्जन में लता जी का नाम आ जाए तो फिर कहानी कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही खूबसूरत सा एक और गीत आइए सुनते हैं।

0: भाई आज के गानों की अगर हम बात करें ना, तो ये गीत नहीं, अगर मैं इसे कहूं कि खूबसूरत सी एक यादों की सरगम है ना, तो कहना गलत नहीं होगा। एक से बढ़कर एक ये वो गीत जो पुराने दौर की अनमोल सौगात है, और ये वो सुनहरे दिनों के गीत जो सुने नहीं जाते थे, बल्कि कहें तो सीधा दिल में उतर जाते थे। तो बहुत ही मोहब्बत और शिद्दत से ये गीत हम आप सभी के लिए पिरो कर लेकर आए हैं। और इसी बीच बहुत सारे हमारे और साथी जुड़ गए। अनिल वर्मा साहब हमें सुन रहे हैं, दिग्दर्शन गौर हैं हमारे साथ, और साथ में है हमारे सतीश अनेजा साहब जो करेक्शन करते हुए हमें बता रहे हैं और कहते हैं, बहन वंदना जी प्रोग्राम में आपका अभिनंदन, न्यूज के बाद जब आप बोली तो मुझे पूजा जैसी आवाज लगी। वैसे पूजा और वंदना एक ही अर्थ है। बिल्कुल सही कहा आपने सतीश साहब, साथ में विमला नेजा जी भी हैं। नाम का अर्थ भी एक है और दोस्ती भी हमारी बहुत पुरानी, तकरीबन अगर मैं कहूँ 19-20 साल, तो बहुत ही खूबसूरत। और कहते हैं इतनी पुरानी जब दोस्ती हो जाती है तो आवाज और अंदाज बहुत हद तक हम एक दूसरे का स्वीकार करने लग जाते हैं। दिलावर खान साहब है इसी बीच हमारे साथ, सोमदत्त भी हमें सुन रहे हैं, हाजी मंजर साहब है हमारे साथ, संजय साहू हमें सुन रहे हैं, गुरमीत सिंह है, और साथ में मीता साउथ एक्सटेंशन से हमें सुन रही हैं, मोहम्मद कुमार हैं, किशन वनजानी हैं, राजी शर्मा हैं, जसबीर साहब हैं, नारायण खर्चे जो हैं इस समय हमें सुन रहे हैं, और इतने संदेशी हैं मुकेश कश्यप साहब हैं कि हो सकता है कि कुछ संदेश जो है ना ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर भी हो जाए। तो भाई बुरा मत मानिएगा, कोशिश करूंगी कि सभी को समेट कर जो है ले आऊं। और इसी बीच मोहम्मद कमर साहब भी हमारे साथ हैं जो प्यार भरा आदाब हमें भेज रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि मैंने कहा कि यादों की सरगम हम आप सभी के लिए सजा कर लेकर आए हैं, आइए उसमें से एक और बेशकीमती सा नगीना आप सभी के नाम।
1: मत बोलो।

भाई कहते हैं जो समय है ना, जब वो लौट कर कभी आता नहीं, यानी कि जो चला गया सो चला गया, लेकिन कुछ धुनें ऐसी होती हैं, कुछ गीत ऐसे होते हैं जो जब भी हम सुनते हैं लगता है हमारे सामने

वो वक्त वो दौर फिर से जीवंत हो गया। ऐसी ही खूबसूरती कुछ गीतों की है जो सिर्फ सुर और शब्द नहीं होते बल्कि हमारी जिंदगी के अनगिनत से खूबसूरत लम्हों का हिस्सा बन जाते हैं। कभी ये गीत हमें बचपन की गलियों में ले जाते हैं तो कभी पहली मोहब्बत की मीठी याद भी दिला जाते हैं, तो कभी अपनों के साथ बिताए उन सुनहरे पलों को एक बार फिर से जीने का अवसर दे जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर भाई गानों की एक अपनी ही बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया है। दुनिया तो खैर हमारी भी रौनक से भरी हुई है क्योंकि खूबसूरत से संदेश हमारे सभी लिसनर्स के आते हैं। और इसी बीच देखिए फारूक अली खान साहब ने भी हमें संदेश किया है जो लिखते हैं, आरजे वंदना साहेब, आज मेरे बेटे फैजी खान का जन्मदिन है, इनके बेटे का, और बहुत दूर वो इनसे विदेश में है और मोबाइल ऐप के जरिए आपको सुन रहे हैं। तो ऐसे में एक गीत तो बनता है, बिल्कुल बनता है, और इसी रेडियो के जरिए कह रहे हैं कि बेटे फैजी खान को बहुत मुबारक देते हैं और हमें भी दिल से शुक्रिया दे रहे हैं। तो बिल्कुल फारूक साहब, हम कोशिश करेंगे कि खूबसूरत सा एक गीत हम फैजी के लिए बजाएं, साथ में हमारे फरहीन, फरहान, फारिया और ताहिरा भी हैं, और जहां रहे वो बहुत खुश रहें और प्रसन्न रहें और ऊपर वाला उन्हें बहुत खुश रखे और बहुत अच्छा और स्वस्थ जीवन दे। आइए यह खूबसूरत सा गीत आपके बेटे के नाम।

भाई ये खूबसूरत सा गीत, हालांकि हम पे रिक्वेस्ट आई थी और हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिला, तो हमने सोचा कि निराश हम अपने जो भी लिसनर्स हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करेंगे। और गीतों की अगर मैं बात कहूँ तो ये वो गीत है जिन्हें हमसे पहले भी एक जो पीढ़ी है वो सुन चुकी है। उनकी धुनों जो इनकी जो कहते हैं ना म्यूजिक है या फिर जो उनकी धुनें हैं उसमें कई रिश्ते महकते हैं, जिनकी पंक्तियों में प्रेम भी है, विरह भी है, उम्मीद भी है, विश्वास भी है और जीवन का दर्शन भी मिलता है। आज भी जब ये गीत हमारे कानों में पड़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि जैसे समय ठहर गया या फिर यादों का कारवां एक बार फिर से चल निकला। ऐसी कशिश लिए हैं ये पुराने से बहुत ही खूबसूरत से लगने वाले कर्णप्रिय गीत। और इसी बीच हमारे साथ मोहाली चंडीगढ़ से भी टीडी मल्होत्रा साहब जुड़े हैं, साथ में ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप भी हैं। और कालका से तो वहीं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज भी हमारे साथ जुड़े। नासिर शेख इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। किशन सपकाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अमृत रामगढ़िया भी सुन रहे हैं, तो साथ में बसंत कुमार सिन्हा भी हैं, गुरप्रीत सिंह हमें सुन रहे हैं, अक्रम हुसैन का भी हमने जैसे जिक्र किया था वो भी हमें सुन रहे हैं, अश्विनी चुग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, और साथ है प्रकाश वर्मा साहब। चलिए एक और खूबसूरत सा गीत बिना किसी देरी के आप सबको सुनवाते हैं।

भाई ये खूबसूरत सी आवाज़ थी आशा जी के साथ साथ महेंद्र कपूर साहब की, और उम्मीद करते हैं ये भी गीत जो है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी बीच इंद्रभान सिंह देखिए हमारे साथ जुड़ गए, नबी हसन साहब जुड़ गए, और फारूक अली साहब हमें शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तो आपका कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और वो कहते हैं कि पूरा खान परिवार जो है बन्ना साहिबा आपको दिल से शुक्रिया अदा कर रहा है, और प्रोग्राम और जो गीत है वो पसंद आ रहे हैं। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान साहब और उनका पूरा परिवार हमें सुन रहा है, बहुत शुक्रिया। आपने एक बार पहले भी बताया था कि फैजी वहाँ दूर कहीं किसी काम के सिलसिले में गया है, और ये एक माध्यम बनता है रेडियो का कि आप एक दूसरे को जो है सुन पाते हैं, और जो पसंद है जो गीत है उन्हें शेयर कर पाते हैं। तो ये हमें भी बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानिए कि आप दोनों के बीच हम भी एक कहते हैं ना प्यारे से पुल का काम करते हैं, एक ब्रिज का काम करते हैं, और कुछ बात इधर से उधर संदेशों के माध्यम से या फिर खूबसूरत गीतों के माध्यम से पहुंचानी हो तो हम जरिया बनते हैं। इसी बीच मोहम्मद कमर साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और लिख रहे हैं, बन्ना साहिबा आपकी जानिब से फारूक अली खान साहब के साहबजादे को आज़ाद आज जो है वो सालगिरह की मुबारकबाद ये पेश कर रहे हैं आदिल कमर साहब गुन्नौर से, और शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और उम्मीद करते हैं कि फारूक अली खान साहब ने सुन लिया होगा कि मोहम्मद कमर साहब भी फैजी को जो है बधाई दे रहे हैं। आइए एक और खूबसूरत सा गीत जो लता जी की आवाज़ में है, और गीत भी कुछ ऐसा कि हम और आप कोई भी कहते हैं ना यहाँ पर सदा सदा के लिए नहीं आया, लेकिन कुछ बातें कुछ एहसास इतने खूबसूरत होते हैं या फिर कहें ऐसे होते हैं जिन्हें महसूस करें और हम लफ्ज़ों में बयां करने की कोशिश भी करें ना तो वो संभव नहीं है।

आइए इसके बाद एक और खूबसूरत सी पेशकश की ओर ले जाऊं। इसी बीच सुदर्शन मुखी साहब हमारे साथ हैं और फारूक अली खान साहब जो हैं मोहम्मद आदिल कमर साहब को दिल से उनके बेटे के जन्मदिन के अवसर पर जो बधाई भेजी है उसके लिए शुक्रिया कहते हैं। बोधराज खोरवाल भी इसी बीच हमारे साथ हैं, तो किशन वरजानी साहब भी हैं और जो कहते हैं कि रात की तन्हाई में प्रोग्राम्स जो है के जो सभी गीत हैं वो इन्हें बहुत पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और लता जी की आवाज़ में अभी एक ऐसी पेशकश जिसमें बात होती है कुछ ऐसे एहसासों की, कुछ ऐसे रिश्तों की जिन्हें नाम देना संभव नहीं है। कभी कभी सिर्फ हम उन्हें महसूस कर पाते हैं और इतने खास वो बन जाते हैं।

बताते हैं कि लगता है ना कि अगर दुनिया हमसे पूछेगी तो हम क्या बताएंगे कि ये हमारे कौन है, ये हमारे क्या है। लेकिन अगर दिल से कोई हमसे पूछे या हमारे दिल में उसकी कद्र पूछे तो ऐसा लगता है कि वो बस हमारे क्या है, ये मैं जानती हूँ या मेरा अपना दिल।

खूबसूरत सा ये गीत भी उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा। और आज हमने कोशिश ये करी कि सदाबहार नगमों का जो एक खूबसूरत सा सफर है आप सभी के साथ साझा करें, क्योंकि कहते हैं संगीत ऐसा है जो कभी भी ढलता नहीं है, गीत कभी भी पुराने नहीं होते, और इन गीतों के साथ जुड़ी हुई हमारी यादें भी कभी धुंधली नहीं होती।

0: और भाई देखिए, इन खूबसूरत से नगमों को सुनते सुनते हम भी चल पड़े हैं बिल्कुल हमारे समाप्ति की ओर। और कहते हैं कि संगीत की खूबसूरती ही यही होती है कि भाषा उम्र और समय की सीमाओं से परे सीधे ये दिल से संवाद करती है, जैसे कि हमारे श्रोता। और इसी बीच फारूक अली खान साहब लिखते हैं कि ये गीत सुनकर गुजरे हुए जमाने के बेशुमार पल, जो खूबसूरत पल है, वो याद आ गए। और उम्दा गीत सुनवाने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और लिखा है, जमाने की खुशियाँ आपके कदम चूमे, ऐसी हमारी दुआ है। फारूक अली खान साहब, आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी कोशिश यही रहती है कि इन खूबसूरत से गीतों के माध्यम से आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएं जहाँ पुरसुकून हो और कानों और साथ साथ दिल को ठंडक मिले। ऐसी ही एक और खूबसूरत सी पेशकश के साथ आइए, आपको अब छोड़े जा रहे हूँ।
1: ये रातें, ये मौसम।

0: श्रोताओं, अभी आप फिल्म संगीत के कार्यक्रम का आनंद ले रहे थे और इसी बीच हमें मोहम्मद कमर साहब ने भी बहुत बहुत शुक्रिया भेजा है और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ये आकाशवाणी दिल्ली का आप सुन रहे हैं इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 12 बजने को है, इन मीटरों पर हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर एक बार पुनः हम आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे, परंतु AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। आपसे कुछ ही पलों में होंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीतिक बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज का पायलट फेज शुरू किया है। ये देश भर में जमीनी स्तर के डिजिटल क्रिएटर्स को पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने और बढ़ावा देने की एक पहल है। वेब्स OTT के अंतर्गत माई वेब्स प्लेटफॉर्म पर आधारित इस चैलेंज में लोगों को अपने जिलों की अनोखी कहानियों और सांस्कृतिक विरासत को दिखाने वाले छोटे वीडियो बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। प्रतिभागी 1 से 31 अगस्त के बीच वेब्स OTT प्लेटफॉर्म पर माई वेब्स सेक्शन पर 1 से 3 मिनट के वीडियो अपलोड कर सकते हैं। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इसे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्र

नमस्कार दोस्तों, आप है आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल पर, जिसमें इस घंटे के प्रोग्राम का नाम है सुरों का सफ़रनामा। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों, जो सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, सीधे दिल में उतर जाती हैं, जिनकी मिठास समय के साथ और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है। एक ऐसी ही आवाज़ है जिसने रोमांस को एहसास दिया, दर्द को सुकून दिया और इश्क को एक नई जबान दी। आज सुरों के सफ़र में हम बात करेंगे भारत के उन चुनिंदा गायिकाओं में से एक की, जिनकी आवाज़ पिछले 2 दशकों से करोड़ों दिलों की धड़कन बनी हुई है। जी हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो भी हम आपको उनका नाम बताएंगे। वो हैं श्रेया घोषाल जी। तो आइए शुरुआत करते हैं उनके उस गीत से जिसने उन्हें पूरे देश की एक नई आवाज़ बना दिया।

और आज हम बात कर रहे हैं स्वरों की साम्राज्ञी श्रेया घोषाल जी की। 12 मार्च को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बोहरामपुर में जन्मी श्रेया जी का बचपन राजस्थान के रावत भाटा में बीता। उनके पिता विश्वजीत घोषाल जी परमाणु ऊर्जा निगम में इंजीनियर थे, जबकि उनकी माँ शर्मिष्ठा घोषाल जी साहित्य और संगीत से गहरा लगाव रखती थी। घर का माहौल संगीतमय था, शायद यही वजह रही कि मात्र 4 साल की उम्र में ही श्रेया जी ने सुरों से दोस्ती कर ली। माँ उनकी पहली गुरु बनी और बाद में उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा ली। कम उम्र में ही ये साफ हो गया था कि ये छोटी सी बच्ची सिर्फ गायिका नहीं बनेगी, सिर्फ गाएगी नहीं, इतिहास रचेगी, जो उन्होंने रच दिया।

साल 2000 में टीवी के एक लोकप्रिय संगीत प्रतियोगिता में देश भर से आए प्रतिभागियों के बीच एक मासूम सी लड़की अपनी सादगी और अद्भुत गायकी से सबका ध्यान खींच रही थी। वो थी श्रेया घोषाल जी। उन्होंने वो संगीत प्रतियोगिता जीत ली और उन्हीं से और यहीं से उनके जीवन में एक नई दिशा ने अपनी राह पकड़ ली। कार्यक्रम के जज संजय लीला भंसाली जी की मां ने श्रेया जी की प्रतिभा को पहचाना और भंसाली साहब से उन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए चुनने का आग्रह किया और इसके बाद फिल्म आई देवदास और इस फिल्म ने श्रेया घोषाल जी को रातों रात पूरे देश की नई आवाज बना दिया।

दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सुरों का सफ़रनामा में श्रेया घोषाल जी की। और दोस्तों, ये उपलब्धि बहुत कम लोगों को मिलती है कि अपनी पहली ही फिल्म से उन्हें सीधे राष्ट्रीय सम्मान तक पहुंचा दिया। देवदास फिल्म के लिए श्रेया जी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड भी उन्हीं के नाम रहा। आने वाले वर्षों में उन्होंने सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि मराठी, बंगाली, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, गुजराती, भोजपुरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया और नेपाली सहित 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में हजारों गाने गाए।

दोस्तों, श्रेया घोषाल जी सिर्फ एक सफल गायिका ही नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा की सबसे सम्मानित पार्श्व गायिकाओं में भी शामिल हैं। अपने अब तक के शानदार करियर में उन्होंने 5 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 7 फिल्म फेयर अवार्ड और 10 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और अनगिनत सम्मान अपने नाम किए हैं। उनकी गायकी को देश में ही नहीं विदेश में भी काफ़ी पसंद किया गया है। वो हर गीत को अपनी आवाज़ में इस तरह ढाल लेती हैं कि श्रोता खुद को उस गीत का हिस्सा महसूस करने लगते हैं।

दोस्त, अगर पिछले 2 दशकों की सबसे ज़्यादा यादगार प्रेम गीतों की सूची बनाई जाए तो श्रेया घोषाल जी की आवाज़ कई कई बार सुनाई देगी। हर अंदाज़ में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। संगीतकार अक्सर कहते हैं कि श्रेया जी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सुरों पर अद्भुत पकड़, स्पष्ट उच्चारण और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। आप क्या कहते हैं?

श्रेया जी ने 2015 में अपने बचपन की मित्र शीला दीक्षित मुखोपाध्याय से शादी की, और शीला आदित्य मुखोपाध्याय से शादी करने के बाद वर्षों की दोस्ती उनकी जीवन साथी के रिश्ते में बदल गई। वर्ष 2021 में उनके घर में बेटे देवयान का जन्म हुआ। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बाद भी श्रेया जी हमेशा परिवार को ही प्राथमिकता देती हैं। यही सादगी और संतुलन उन्हें लाखों लोगों को लिए उनको प्रिय बना देता है।

दोस्तों, श्रेया घोषाल सिर्फ फिल्मी गायिका ही नहीं है, बल्कि दुनिया भर में लाइव कंसर्ट के जरिए भारतीय संगीत की खूबसूरती को भी नई पहचान देती रही हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व

और दुनिया के कई कई सारे देशों में उनके कार्यक्रम हमेशा हाउसफुल रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के ओहियो राज्य ने 26 जून को श्रेया घोषाल डे घोषित करके उनके योगदान का जो सम्मान किया है, ये किसी भी भारतीय कलाकार के साथ ही भारतवासियों के लिए भी गर्व की बात है ना। और श्रेया जी की गायकी में शास्त्रीय संगीत की गहराई भी है और आधुनिक संगीत की ताजगी भी, इसीलिए वो लगभग हर बड़े संगीतकार या रहमान, प्रीतम, विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय, अजय अतुल, मिथुन, सचिन जिगर और अमित त्रिवेदी की पहली पसंद रही हैं। श्रेया जी ने रोमांस, भजन, गजल, सूफी, लोकगीत और आधुनिक पॉप हर शैली में अपनी अलग जगह बनाई है। और दोस्तों, जो दिल से निकले वो ही सुर बन जाते हैं, जो रूह को छू लें वही सफ़र ख़ास कहलाते हैं। कुछ आवाज़ें वक्त के साथ खो जाती हैं और कुछ श्रेया घोषाल बन जाती हैं। उम्मीद है सुरों का सफ़रनामा की ये प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। हम कल फिर साथ होंगे एक नए कलाकार के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल से।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। मंत्रालय ने बताया कि ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाता है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुप्पुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुप्पुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की

नमस्कार दोस्तों, समाचारों के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम गीत सुनहरे में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल। इस कार्यक्रम में सुनते हैं सुनहरे दौर के वो सुनहरे गीत जब जिंदगी में ना इतनी भाग दौड़ थी और ना ही सब अपने में इतने व्यस्त थे कि किसी के सुख दुख में शामिल भी ना हो सके। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं इस बेहद प्यारे से नगमे के साथ।

0: यूं तो कुदरत ने हम इंसानों को हजारों हजारों हजार ऐसे तोहफे दिए हैं जिनके लिए हम उनका चाहे जितनी बार शुक्रिया अदा करें वो कम ही है। उन्हीं तोहफों में से एक प्यारा सा तोहफा है याद। मोबाइल चार्ज ना हो, नेटवर्क ना हो, लेकिन फिर भी हम किसी इंसान से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो बस अपनी आंखें बंद करनी है और तसव्वुर में बिताए उन लम्हों में आप दोबारा जी सकते हैं, जा सकते हैं बिना किसी नेट के, बिना किसी रिचार्ज के। है ना, ये कुदरत की बेमिसाल ताकत।
1: रोमियो जूलियट, लैला मजनू, शिरी और फरहान, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद याद मुझे आया है एक ऐसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

दोस्तों, मोहब्बत दो दिलों को जोड़ने का एक ऐसा जज्बा है जिसमें जब मोहब्बत दोनों तरफ बराबर हो तभी वो उसे अपने मकाम तक पहुंचाने के काबिल हो पाते हैं। अगर मोहब्बत की तासीर किसी भी तरफ ज़र्रा बराबर कम हुई तो ऐसी मोहब्बत को मंजिल हासिल ही नहीं हो सकती। ऐसे में

जिंदगी जैसी खूबसूरत शय इस पूरी दुनिया में दूसरी है ही नहीं, और अगर वो जिंदगी इंसान की हो तो फिर बात में और खूबसूरती आ ही जाती है। एक छोटे से बच्चे का बड़ा होना, पढ़ाई, रोज़गार, शादी और ज़िंदगी की तमाम उलझनों से लड़ते हुए, कभी हंसते हुए कभी रोते हुए, ज़िंदगी को यूं सिलसिलेवार तरीक़े से जीते चले जाना और इंसानी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तारीफ है कभी कभी भी हार ना मानना और अपने से जुड़े हर शख्स के दिल में अपनी कुछ ऐसी यादें छोड़ते जाना जो उनके दिल में हमेशा हमेशा आपको जिंदा रखें।

दोस्तों, ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमें बताती है कि हमें चलते ही चले जाना है। और अगर ज़िंदगी की राह में जो लोग मिले, उनसे मुस्कुरा के उनका दिल अपने साथ दिल से मिलाकर चलते चले जाना है। और दोस्तों, वक्त चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लोग चाहे कितना ही क्यों ना बदल जाए, लेकिन हम लाख कोशिश कर लें, लेकिन कुछ चीज़ें हम बदल ही नहीं सकते। जैसे पहली मोहब्बत का वो एहसास, जिसे कोई इंसान चाह कर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो ज़िंदगी का पहला ऐसा अनोखा तजुर्बा होता है जो बस यूं ही अचानक हो जाता है, कभी कभी इत्तेफाक से।

और दोस्तों, किसी की यादों में बने रहने के लिए बस थोड़ी सी कोशिश ये करनी पड़ती है कि आप हमेशा अपनी वो बात कहें जो आपके दिल से निकलती है। और दोस्तों, इस दुनिया में हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन हम ना तो हर किसी से मिल सकते हैं, ना ही हर किसी को जान सकते हैं, लेकिन कुदरत भी हमारा रابطہ सिर्फ उन्हीं लोगों से करवाती है जिनसे मिलना या जिनसे बिछड़ना, और बिछड़ने से ही तय होता है, और ये बिछड़ना पहले से ही तय होता है।

दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी ज़िंदगी में गाने नहीं होते तो ज़िंदगी कैसी फीकी सी होती है ना? क्योंकि आप खुद ही सोचिए, शादी हो, ब्याह हो, सालगिरह हो, तो और कोई दिल मिल गया हो या दिल टूट गया हो, फिल्मी गाने किसी राह में हमें अकेला नहीं छोड़ते, हमेशा हमेशा हमारे साथ चलते रहते हैं, हर रूप में, बचपन से लेकर ज़िंदगी की हर सांस तक, आखिरी सांस तक।

दोस्तों, किसी भी रिश्ते को अगर आप बचा के रखना चाहते हैं तो उसके लिए जानते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन, यानी वार्तालाप। आपकी बातें आपके साथी को और आपके साथी की बातें आपको पता होंगी तो ना तो कभी गलत फहमियाँ होंगी और ना ही आपके रिश्ते कभी उनसे ख़राब होंगे।

दोस्तों वक्त ये कह रहा है कि गीत सुनहरे से अब हमें जाना होगा, क्योंकि आगे के सफ़र पर जो चलना है, उम्मीद है आपका ये वक्त बेहद खूबसूरत रहा होगा गीत सुनहरे के साथ। कल हम फिर आएंगे कुछ और नगमात के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल के साथ।

0: दोस्तों, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे। आपसे कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिनभर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खरीफ की बुआई की प्रगति, मानसून की स्थिति, उर्वरक और बीज की उपलब्धता तथा अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा की। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री चौहान ने अधिकारियों को कम वर्षा वाले जिलों की निगरानी करने और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। युवा कार्य विभाग ने माई भारत पोर्टल पर राष्ट्रीय ध्वज प्रश्नोत्तरी 2026 का शुभारंभ किया है। ये प्रश्नोत्तरी 15 अगस्त तक खुली रहेगी। इससे देश भर के युवाओं को भारत के राष्ट्रीय ध्वज तथा उसके महत्व के बारे में अपनी समझ को बढ़ाने का अवसर मिलेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति तिरुपुर के अविनाशी लिंगेश्वर शिव मंदिर भी जाएंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। आसियान से जुड़ी बैठकों के साथ साथ विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्रियों के साथ क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी शामिल होंगे। भारत ने जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन WTO की 8वीं व्यापार नीति समीक्षा बैठक में पारदर्शी, नियम आधारित और विकासोन्मुख बहुपक्षीय व्यापार व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार। अब से कुछ ही देर में समाचार होंगे, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर

0: चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मार्ग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल हैं। इन नेताओं को लोक कल्याण मार्ग के पास प्रदर्शन स्थल से हिरासत में लिया गया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर जनता को परेशान किया और सुरक्षा नियमों की अनदेखी की। उन्होंने कहा कि सरकार नीट मामले पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस ने लोकतांत्रिक चर्चा के बजाय प्रदर्शन का रास्ता चुना। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार विद्यार्थियों की हर वास्तविक चिंता पर चर्चा करने और समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के विरोध के बाद कल दिन भर के लिए स्थगित रही। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार स्थगित हुई। दोनों सदन 3 बार स्थगित हुए। विपक्षी दल नीट पेपर लीक मामले और अन्य मुद्दों पर नारेबाजी करते रहे। हंगामे के कारण दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल भी नहीं हो सका। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और बाद में पीठासीन अधिकारियों ने विरोध कर रहे सदस्यों से बार बार सदन की मर्यादा बनाए रखने और तय कामकाज को आगे बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन हंगामा जारी रहने के कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन और डिप्टी चेयरमैन हरिवंश की बार बार अपील के बावजूद विरोध कर रहे सदस्य नारेबाजी करते रहे, जिसके कारण सदन को स्थगित करना पड़ा। सुपर्णा सेकिया और आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2025 के लिए ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। नामांकन 20 अगस्त तक गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर किए जा सकते हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि इस दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में GKNM नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज से फिलीपींस के मनीला की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। वे आसियान रूपरेखा के अंतर्गत विदेश मंत्री स्तर की बैठकों में शामिल होंगे। इनमें आसियान भारत, ईस्ट एशिया समिट और आसियान रीजनल फोरम की बैठकें शामिल हैं। हॉकी इंडिया ने बेल्जियम और नीदरलैंड्स में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। टीम की कमान हरमनप्रीत सिंह संभालेंगे। भारत अपने अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ करेगा। इसके बाद 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा। कनाडा के नियाग्रा ऑन द लेक में विश्व स्क्वॉश जूनियर चैंपियनशिप में 7 भारतीय खिलाड़ी अगले दौर में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में अनाहत सिंह, सानवी कलंकी, अनिका दुबे और रुद्र सिंह ने अगले दौर में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Akhila. The government has said it is ready to hold discussion in Parliament on NEET paper.

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। श्रोताओं, समय हुआ है 3:10 और 20 सेकंड। ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत गजल। तो आज सबसे पहले एक बेहतरीन लाजवाब गीत गजल सुनवाना चाहेंगे। आज मैं हूँ आपके साथ इस कार्यक्रम में, आपका दोस्त ललित कुमार। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत गजल कार्यक्रम के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार बेहतरीन गजल।

जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। साथियों, एक और बेहतरीन गज़ल आ रही है हवा के झोंकों में। बहुत ही शानदार बेहतरीन एल्बम है रेड रिबन्स द्वारा। हवा के झोंकों में गज़ल उस्ताद सुजात हुसैन खान। जी हाँ, उस्ताद सुजात हुसैन खान साहब लिरिसिस्ट हैं, कमलेश सोनावाला, और संगीत से सजाया है उस्ताद सुजात हुसैन खान साहब ने। तो आइए एक और बेहतरीन खूबसूरत गजल।

ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है, माफ़ कीजिएगा, ये आकाशवाणी का AIR लाइव 24x7 चैनल है। साथियों, कार्यक्रम चल रहा है गीत और गज़ल। तो साथियों, एक और बेहतरीन रचना आ रही है आपके पास, तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत रचना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत गजल। इसी के अंतर्गत एक बहुत ही शानदार खूबसूरत गजल और आ रही है, तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन खूबसूरत गजल। गजल यानी कि किसको कातिल मैं कहूँ, एक बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत गजल है। और किसको कातिल मैं कहूँ, सजदा एक एल्बम है, बहुत ही सुंदर जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में शानदार बेहतरीन गज़ल है। और गीत अहमद नदीम कासमी के हैं और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गज़ल को जगजीत सिंह जी ने। तो आइए सुनते हैं ये बेहतरीन लाजवाब गज़ल।

जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में। एक और खूबसूरत गज़ल आ रही है, तो कुछ तो दुनिया की इनायत ने बहुत ही खूबसूरत लाजवाब गज़ल है, मल्लिकाए गज़ल बेगम अख्तर, लिरिक्स सुदर्शन फ़ाकिर के। तो ये सुनते हैं एक और आज के कार्यक्रम गीत गज़ल की अंतिम रचना।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत और गज़ल। जी हाँ, गीत गज़ल कार्यक्रम अब संपन्न हुआ और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।

कृषि व पुरेश सुप्रभातम सुनिए। रचना ज्ञानानंद सरस्वती की है। स्वर दिया है पारसाला पुन्नमाल ने।

0: इसी के साथ अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नाद ब्रह्म।
0: प्रस्तुत है भक्ति संगीत। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 31वीं तिथि। तदनुसार 22 जुलाई 2026। सुबह के 4:53 और 5 सेकंड हुए हैं। इन मीटरों पर हमारे कार्यक्रम अब आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 5 बजने को हैं और अब कुछ आने वाले प्रोग्राम के बारे में कुछ रूपरेखाएं बता रहे हैं, विवरण दे रहे हैं। और 5 बजने को हैं पांच बजे कार्यक्रम होगा, माफ कीजिएगा, अभी 5 बजने को हैं और 5 बजने से पहले कुछ जानकारियां। सुबह 5 बजे हिंदी में समाचार होंगे और 5:05 पर अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे। 5:10 पर कार्यक्रम होगा आओ योग करें, जिसमें आप सुनेंगे योग, उज्जयी, प्राणायाम और वृक्षासन। 5:20 में देशभक्ति गीत फिल्मों से। 5:30 बजे कार्यक्रम होगा स्वर रंजनी। सुबह के 6 बजे होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, माफ कीजिएगा, हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। छः बजकर दस मिनट का समय रहेगा वंदना कार्यक्रम का। 6:40 पर होगा कार्यक्रम चिंतन। 6:45 पर कार्यक्रम रामचरितमानस बालकांड 124। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 5 बजने को हैं, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और उत्तर मैसेडोनिया के आर्थिक संबंधों में विस्तार का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों देशों के व्यवसायियों से व्यापार से आगे बढ़कर निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर आधारित दीर्घावधि साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। स्कोप्जे में भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार फोरम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया की पहली यात्रा द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मौजूदा व्यापार वास्तविक क्षमता से बहुत कम है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो सकेगा। राष्ट्रपति मुर्मू ने दोनों देशों के व्यवसायियों, निवेश एजेंसियों और उद्योग जगत से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम और स्थानीय मूल्य संवर्धन के माध्यम से साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज स्कोप्जे में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे। उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति गोर्डाना सिल्जाजोन्स्का दावाकोवा भी उनके साथ होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू स्कोप्जे संग्रहालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का अनावरण करेंगी। वे विश्व विरासत स्थल होरिड लेक भी जाएंगे। सरकार संसद में नीट और उससे जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी

0: सरकार के आश्वासन के बावजूद नीट मुद्दे पर चर्चा की अपनी पुरानी मांग से पीछे हट गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने अन्य सदस्यों के साथ मिलकर नीट मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर लोक कल्याण मांग पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने प्रदर्शनकारी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की। मुलाकात के बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने इस मामले पर चर्चा की मांग मान ली है।
1: सरकार संसद में न केवल इस विषय को लेकर बल्कि इस विषय के साथ संबंधित अन्य सभी विषयों को विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कहा है कि नीट और पेपर लीक इत्यादि विषयों को लेकर के जो लोग भी जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और हम अपने बच्चों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।
0: नीट पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी समेत सभी विपक्षी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट मुद्दे को लेकर विद्यार्थियों का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीट परीक्षा पेपर लीक में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और देश के युवाओं के हितों की रक्षा करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। संसद भवन में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने ये जानकारी दी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर और तिरुपुर के दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति सचिवालय ने जानकारी दी है कि दौरे के दौरान श्री राधाकृष्णन कोयम्बटूर में जीकेएनएम नर्सिंग कॉलेज के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे तिरुपुर के ओजाशी में लिंगवेश्वर शिव मंदिर का भी दर्शन करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी को विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करेंगे। सरकार ने कहा है कि इस महीने की पहली तारीख तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 58,63,00,000 से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों में 3,08,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि जमा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग को चालू वित्त वर्ष के अंत तक लागू किए जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 18 मई को कैबिनेट के फैसले के बाद गठित आयोग को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। कोलकाता के विद्युत भवन में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार सिफारिशों को लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्रवाई करेगा। व्हाइट हाउस में लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन के साथ बातचीत के दौरान श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान बातचीत करना चाहता है, लेकिन उसने परमाणु गतिविधियां दोबारा अगर शुरू करी या फिर होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमला किया तो अमरीका इसका कड़ा जवाब देगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में गुजरात, पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली में बादल छाए रह सकते हैं। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। The government has said it is ready to hold discussions in Parliament on NEET paper leak case and other related issues. Talking to media in New Delhi yesterday, Union Minister Jitendra Singh accused Leader of Opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, of deviating from his earlier demand of having the discussion over NEET related issues despite government assurance.
1: It was conveyed that on behalf of the government, I could assure Rahul Gandhi ji that government is ready to have a detailed discussion on NEET related agitation, protest, also on all the other issues related to NEET. When I went back to Rahul ji with this message, he said no, but I also want the resignation of the education minister. Then I politely tried to submit before him. I said, look here, this is not done, because just a few minutes back you told me that if I got the assurance from the government, you would call off your dharna immediately, but now you are saying no.
2: Earlier in the day, Congress President Mallikarjun Kharge, Congress leaders Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra, along with other party members, staged a protest demanding discussion on the NEET issue. Union Minister Jitendra Singh and Union Home Secretary Govind Mohan met the Congress leaders at the protest site Lok Kalyan Marg. Meanwhile, in the parliament, both Lok Sabha and Rajya Sabha were adjourned for the day yesterday following repeated disruptions by

नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। दोस्तों, तनाव ग्रस्त जीवन शैली से थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है। आधुनिक जीवन में व्यक्ति अनेक चिंताओं से ग्रस्त है, जैसे परिवार की चिंताएं, पर्सनल प्रॉब्लम्स या ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो आज हम किस सेशन में हम देखेंगे कि थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे आप कैसे निजात पा सकते हैं। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, जिसका काम होता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रण करना, और साथ ही साथ यह ग्रंथि हमारे हृदय,

और कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रण करती है। परंतु जब ये ग्रंथि सही रूप से काम नहीं कर पाती तो हमारे शरीर में हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने लगती हैं और उससे उत्पन्न होने वाली कॉन्सिक्वेंसेस को हमें फेस करना पड़ता है। देखा गया है कि योग अभ्यास में उज्जयी प्राणायाम थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ठीक करने में काफी सहायक है। तो आज हम सीखेंगे कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार किया जाता है। तो इसकी अभ्यास विधि के लिए आप सबसे पहले किसी भी सुखद पूर्वक आसन में बैठ जाएं, अपने मुंह को बंद कर लें, पूरे क्षेत्र को गले के पिछले हिस्से पर संकुचित कर लें, दोनों नासिकाओं से धीरे धीरे एक ही लय में तब तक श्वास भरते रहें जब तक आप गले से लेकर हृदय तक उसको महसूस ना करें। श्वास लेने के क्रम में कंठ द्वार यानी थ्रोट रीजन के आंशिक रूप से बंद होने के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती है। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए, साथ ही साथ इसे लगातार करते रहना चाहिए। श्वास लेते समय सीने को फुलाएं। कुछ समय पश्चात धीरे धीरे दोनों नासिका छिद्र से श्वास को बाहर निकालें। यह इस अभ्यास का एक चक्र है। इसी प्रकार एक सेशन में आप कम से कम 4 से 5 बार उज्जयी प्राणायाम अवश्य करें, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। उज्जयी प्राणायाम आपके थायराइड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, उससे काफी निजात पा सकते हैं। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांगासन को भी कर सकते हैं, यह भी थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए काफी हद तक लाभकारी है। तो इस सेशन में आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए उज्जयी प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप योग अभ्यास करें तो कुछ बातों का अवश्य ध्यान दें। कोई भी आप योग अभ्यास करें, उसे सहज पूर्वक करें, पूरी एकाग्रता के साथ करें, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे और अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

आप सभी को सादर प्रणाम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखन, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग अभ्यास बताऊंगी जो बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। केवल बच्चों के लिए ही नहीं, परंतु हर वर्ग के लोगों के लिए यह आसन जरूरी है। आज हम करेंगे वृक्षासन। वृक्ष शब्द का अर्थ है पेड़। इस आसन के अभ्यास की अंतिम अवस्था में हमारा शरीर एक पेड़ का आकार ले लेता है, यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। इसीलिए इस आसन को वृक्षासन कहते हैं। आजकल लैक ऑफ कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बहुत कॉमन होती जा रही है, यानी किसी भी कार्य में ध्यान ना लगना। इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी काम लगन से तो करना चाहते हैं, पर लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी से उस कार्य को परिपूर्ण रूप से नहीं कर पाते और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हमें आगे फेस करना पड़ता है। वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखकर खड़े हो जाएं। आंखों के सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें।

श्वास को शरीर के अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर दोनों हथेलियों को जोड़ें। इस स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक रुकने का प्रयास करें और सामान्य रूप से श्वास लेते रहें। श्वास को शरीर के बाहर छोड़ते हुए हाथों और दाएं पैर को मूल अवस्था में वापस ले आएं। शरीर को शिथिल करें और इसी आसन का अभ्यास पुनः बाएं पैर से भी दोहराएं। दोस्तों, यह आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यदि आप इस आसन को 3 से 4 बार एक सेशन में दोहराते हैं तो यह धीरे धीरे आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है और शरीर को संतुलित बनाता है, सहनशीलता और जागरूकता भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि किस प्रकार आप अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वृक्षासन का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु ध्यान रहे, यदि आपको कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या मोटापा बहुत ज्यादा है, चक्कर आते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। धन्यवाद।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, 5:20 होने को हैं और ये समय होता है देशभक्ति गीत का। तो आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत, देशगान, हयात ढूंढते हैं, हयात ढूंढते चलो, सतीश भाटिया की आवाज में सुंदर देशगान।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, एक और देशभक्ति गीत सुनवा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशगान सतीश भाटिया की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे सारंगी वादन में गुलाम मोहम्मद और तबले पर अजय कुमार, राग नट भैरव में सुनेंगे।